जीवन का हर पल अनमोल है, इसे अच्छे कार्यों और मधुर व्यवहार से सार्थक बनाना चाहिए। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। छोड़ के जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, तो मैं लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। प्रातः 7:10 का समय रहेगा गोल्ड सुप्रभात का।

11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम तस्वीर। दोपहर 12 बजे का समय होगा कार्यक्रम घर आंगन का।

3:25 का समय रहेगा प्रोग्राम मन भावन का। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते।

शाम 7:25 का समय रहेगा कार्यक्रम सांझ ढलेगा। 8:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मधुरी माँ। दस बजकर 30 का समय होगा कार्यक्रम हार श्रृंगार का। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की

में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये सुबह के 6:11 और 53 सेकंड भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण लेकर मैं हूं सुनीता। नमस्कार, सुप्रभात।

कबीर कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। अर्थात चिंता की दवा किसी वैद के पास नहीं, चिंता कलेजा काट देती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 मेगाहर्ट्ज, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। 6:30 और 52 सेकंड ईश वंदन की मधुर वेला, भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण के साथ मैं हूँ आज आपके साथ सुनीता।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। और अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, बालकांड से अभी सुना आपने एक अंश। और अब समय हो चला है कि हम सुने समाचार, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में। समाचार के बाद एक बार फिर सुनीता होगी आपके साथ, यही एफएम गोल्ड पर प्रोग्राम रहेगा गोल्ड सुप्रभात। तो फिलहाल जानना जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, खबरों में क्या खास है, तो इसके लिए हमें जुड़ना होगा समाचारों के साथ। तो आइए सुनते हैं समाचार।

0: अवसर उपलब्ध कराना और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: पूर्वाह्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति। अथ 91 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेश मंत्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार निवेश अंकिकीय परिवर्तन साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढ़ीकरण विषये विचार विमर्श कृतः। अनन्तरं साक्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मंत्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मंचम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिम बंगाल राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुड़ी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुड़ी नगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र वीएसएफ इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
0: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे।

0: फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय संजय मट्टू। Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting the local culture, heritage and architecture. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है।
1: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged the passenger service from Jind railway station in Haryana. The train will run between Jind and Sonipat railway stations and cover the 89-kilometre distance in 2 hours. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Jumagach in West Bengal, located near the India-Bangladesh border. Mr. Shah will interact with BSF personnel, address a Prahari Sammelan, participate in a plantation drive and inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. The Union Home Minister reached Baghdogra Airport in Siliguri last night on a 3-day visit to West Bengal. Mr. Shah was received by West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari on his arrival at the airport. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Estonia's Foreign Affairs Minister Margus Tsahkna in Tallinn. The two leaders yesterday discussed ways to further strengthen India-Estonia cooperation in trade, investment, digital transformation, cybersecurity and emerging technologies. They also exchanged views on creating new opportunities following the successful conclusion of the India-EU Free Trade Agreement negotiations. Addressing the India-Estonia Business Forum in the presence of Mr. Tsahkna, Mr. Goyal said combining India's digital capabilities and scale with world-class manufacturing, supported by the India-EU FTA framework, can further boost bilateral ties

फिर आ गया शनिवार और वादे के मुताबिक फिर आ गई हूँ मैं सुनीता आपसे मिलने आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। हम जानते हैं कि आप जब रेडियो ट्यून करते हैं तो 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ही रुकते हैं और इसीलिए हम भी चुन चुन कर एवरग्रीन सॉन्ग्स प्ले करते हैं आपके लिए। ये है गोल्ड सुप्रभात।

0: लता मंगेशकर और आशा भोसले जी की आवाज में बहुत ही प्यारा सा ये सॉन्ग फिल्म प्रोफेसर से था, जो रिलीज हुई 1962 में। हसरत जयपुरी के लिरिक्स और शंकर जयकिशन का संगीत। स्क्रीन पर फिल्म की हीरोइन कल्पना, जिनका असली नाम था अर्चना मोहन। 1946 में 18 जुलाई को हुआ इनका जन्म, और 60 के दशक की हिंदी फिल्मों में हमने इनकी अदाकारी को देखा। नेक्स्ट सॉन्ग फिल्म तीन दीवियां से। स्क्रीन पर कल्पना और देवानंद, किशोर कुमार आशा भोंसले का ये डुएट।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी FM गोल्ड। 7:20 हो चुके हैं और रेट्रो म्यूजिक आप इसी चैनल पर एंजॉय करते हैं। फिलहाल आपको बता दें मौसम का हाल, मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा आज तापमान। और सुनीता है आपके साथ और यह है गोल्ड सुप्रभात।

1971 की फिल्म अंदाज का ये सॉन्ग किशोर दा की आवाज में अभी आपने सुना। स्क्रीन पर डैशिंग सुपरस्टार राजेश खन्ना यानी काका। दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज राजेश खन्ना जी की ही बातें होंगी। आज है उनकी डेथ एनिवर्सरी। काका का एक और सुपरहिट सॉन्ग ये वाला आपके लिए।

0: आपकी चेहरे की रंगत बता रही है कि आपको गाने पसंद आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही हमारा सफर खत्म नहीं होता है, क्योंकि अभी म्यूजिकल दिल्ली बाकी है और उसमें भी बहुत ही जोशीले गाने हैं मेरे पास। फिलहाल समाचार सेवा प्रभाग के प्रोग्राम आज सवेरे का वक्त हो चला है, आइए मिलकर सुनते हैं।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
1: नमस्कार फरहत, एंड अ वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम टू ऑल अ लवली लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। लिसनर्स स्टे ट्यून्ड विद अस बिकॉज योर नेक्स्ट 30 मिनट्स आर गोइंग टू बी पैक्ड विद नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, and we'll also briefly talk about famous personalities who are associated with today's day, that is 18th of July.
0: जी बिल्कुल सरबजीत, आपने पर्सनालिटीज की बात की तो हम कार्यक्रम की शुरुआत नेल्सन मंडेला के विचार से ही कर लेते हैं
1: जी।
0: उनका कहना था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, और सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी बेड़ियों को उतारना नहीं बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी है।
1: टू बी फ्री इज नॉट मेयरली टू कास्ट ऑफ वन्स चेन्स बट टू लिव इन अ वे दैट रिस्पेक्ट्स एंड एनहांसेस द फ्रीडम ऑफ अदर्स। This is the great saying by Nelson Mandela. And today, the world celebrates Nelson Mandela International Day, a day that reminds us that each one of us has the power to make a positive difference. Nelson Mandela devoted 67 years of his life to the service of humanity. He was a human rights lawyer, a peacemaker, and the first democratically elected president of a free South Africa.
0: जी बिल्कुल सरबजीत, ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना जीवन रंग भेद विरोधी संघर्ष, लोकतंत्र और समानता के लिए समर्पित कर दिया।
1: Nelson Mandela's courage, determination and commitment to justice continue to inspire millions around the world.
2: The time to build is upon us. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We succeeded to take our last steps to freedom in conditions of relative peace. We commit ourselves to the construction of a complete, just and lasting peace. We have triumphed in the effort to implant hope in the breasts of the millions of our people. We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall without any fear in their hearts.
0: और सरबजीत, मेरा मानना है कि अगर हम अपने जीवन में उन्हीं के विचारों को अपनाते हैं तो यकीनन कामयाबी तय है।
1: Absolutely, very well said. And Farhat, let's move ahead in the program and let's share with our listeners what's the big stories of today.
0: जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुड़ी खबर से। पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लोकार्पण अवसर पर क्या कहा।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है, और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: The three-day international seminar, Shrotam 2026, organized by the All India Institute of Ayurveda, AIIA, in New Delhi, successfully concluded yesterday. The seminar brought together eminent academicians, surgeons and healthcare experts from countries including Thailand, Israel, Austria, the United Kingdom, Sri Lanka, Indonesia, Nepal, Greece and India. The Ministry of Ayush said participants shared their expertise and experiences in various fields of surgery and healthcare. Experts and faculty members from leading institutions including AIIA, Banaras Hindu University, the National Institute of Ayurveda, Jaipur, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, also took part in the event. During the seminar, AIIA renewed its memorandum of understanding with IIT Delhi for another 5 years to strengthen collaboration in research and innovation. The ministry said Shrotam 2026 marks another important step towards integrating traditional knowledge with modern scientific advancements and promoting a holistic एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम।
0: और सर्वजीत मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईए प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि चुनाव संविधान, चुनावी कानूनों और समय समय पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों द्वारा समवर्ती परीक्षण किया जाता है। श्री ज्ञानेश कुमार ने बताया कि लगभग 95 करोड़ भारतीयों वाली मतदाता सूची एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ गतिशील रूप से विकसित हो रही है, और इसके अलावा बीएलओ और 15 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट इस कार्य में लगे हुए हैं, तो ऐसे में लोगों की भागीदारी भी अहम हो जाती है। इस सम्मेलन में देश भर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 300 से अधिक मीडिया पेशेवरों ने भाग लिया।
1: एब्सोल्युटली वेरी राइटली स्टेटेड फरत, एंड दिस इंडीड इज अ स्टेप टुवर्ड्स सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एंड वी ऑल एज मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस डेफिनेटली शुड डू आवर बिट। Meanwhile, moving on to the next news item, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mueni, who is on a 4-day official visit to India, will arrive in New Delhi this evening. Yesterday, President Mueni attended the 63rd convocation ceremony of the Indian Institute of Technology in Chennai as the chief guest.
0: And now we are going to talk about PIB fact check. The government has told the government on social media that the government has said that the government has said प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निवेश प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दावों में कहा गया है कि 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर नागरिकों को हर महीने 25 लाख रुपए की कमाई की गारंटी दी जा रही है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने यह भी बताया कि यह वीडियो फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है। यूनिट ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है।
1: द डिजिटल फोरेंसिक्स लेबोरेटरी एट द नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गोवा कैंपस हैज रिसीव्ड सेंट्रल गवर्नमेंट recognition as an examiner of electronic evidence under the Information Technology Act. The recognition strengthens Goa's cyber forensic capabilities and will support law enforcement and the judiciary. Our correspondent brings us this report.
4: The Digital Forensics Laboratory at the National Forensic Sciences University, Goa campus, has been officially notified as an examiner of electronic evidence under Section 79A of the Information Technology Act 2000 for

0: खुश हो तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे महानगरों की खबरों का, जिसमें होंगी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरें। तो सरबजीत से सबसे पहले जान लेते हैं चेन्नई में क्या है खास।
1: जी फरद, जांजिबार प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन ऑफ रेवोल्यूशनरी काउंसिल हुसैन अली मुइनी हैज सेड दैट आईआईटी मद्रास जांजिबार कैंपस विल बी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ईस्ट अफ्रीका एंड इट विल बी अ प्लेस वेयर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप come together to solve challenges and create new opportunities. Delivering his speech at the 63rd convocation of the institute, Hussain Ali Moini said that the knowledge created through an institution such as IIT Madras will help understand, protect and sustainably harness the immense potential for future generations in Africa. He hoped that the young people will build solutions that emerge from Africa, serve Africa and contribute to the progress of the world. A total of 3,518 degrees were awarded to 3,106 students. The Higher Education Department has appointed district-level facilitation officers to help students access education loans from banks. Higher Education Minister P. Vishwanathan said that these officers will guide the students and help them get collateral-free education loans to enroll in engineering, polytechnic, arts and science colleges. Facilitation centers are trained by banks and will act as a bridge between banks and students. They will work with a small team, coordinating with nodal banks in every district. He also added that last year, 1,02,000 students from the state had obtained education loans. And Farhat, what's the news from Mumbai today?
0: जी, मुंबई से पहले हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बहुत ही अच्छी खबर है किसानों के लिए। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष तेज बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत प्रभावित किसानों को 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी और ये राशि अगले महीने से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।
1: And there's some interesting news from Bengaluru, Farhat, for especially for the sports lovers. The Bengaluru City Police have extended the operating hours of hotels and restaurants to facilitate public viewing of the FIFA World Cup 2026 third place playoff and final. According to the order, hotels and restaurants will be permitted to serve food till 5 a.m. on July 19th during the third place playoff between France and England, which is scheduled to kick off at 2:30 a.m. Indian Standard Time. For the World Cup final between Argentina and Spain on July 20th, beginning at 12:30 a.m., food service will be allowed till 3:30 a.m. Deputy Chief Minister and Revenue Minister Dr. G. Parmeshwara has directed officials to ensure there is no shortage of drinking water or fodder in drought-affected areas and warned of strict action against those who fail to address public grievances. Chairing a District Disaster Management Authority meeting in Tumakuru, he instructed officials to drill borewells wherever necessary, provide electricity connections without delay, distribute fodder seeds to farmers within a week, and hold regular drought task force meetings. And are we telling our listeners about Mumbai now, Farhat?
0: जी बिल्कुल, वेव्स 2027 की बात कर लेते हैं अब। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कल मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव 2027 के दूसरे संस्करण की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 का संस्करण अधिक व्यापक, सुव्यवस्थित और प्रभावशाली होना चाहिए। उन्होंने मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिखर सम्मेलन को फरवरी या मार्च में आयोजित करने का सुझाव भी दिया।
1: Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states under the Amrit Bharat Station Scheme from Jalandhar, Punjab. Simultaneously, a ceremony at the newly upgraded high-tech city railway station in Hyderabad saw the participation of MLC AVN Reddy, Telangana BJP President एन रामचंद्र राव, साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव एंड सिकंदराबाद डीआरएम डॉ आर गोपालकृष्णन. स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, एमएलसी रेड्डी हाईलाइटेड द नेशन्स रैपिड प्रोग्रेस ओवर द लास्ट 12 इयर्स, नोटिंग अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन रेल ट्रैवल. ही रिवील्ड दैट रेलवे वर्क्स वर्थ ओवर 40,000 crore rupees आर अंडर वे इन तेलंगाना, emphasizing the central government's focus on middle class needs and multi-modal connectivity. GM Srivastav stated that the high-tech city station has been upgraded with a new building, modern waiting halls, lifts, escalators and Divyangjan friendly amenities.
0: और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं. गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं. श्री शाह राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे. वृक्षारोपण अभियान में भी वो भाग लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है. गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कनिया में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे और इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों की बातचीत की जाएगी. इसके अलावा पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की भी चर्चा होगी और शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे.
1: Listeners, you are tuned to the program Aaj Savere and time now to share the weather update to help you plan your day just a little better.
0: जी, सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की ही कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को अब बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी. बारिश का इंतजार है कि कब बारिश होगी और थोड़ी सी राहत हम लोगों को मिलेगी. तो आज आपका इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि आज है बारिश की संभावना. न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में हल्की बारिश रहेगी. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं कोलकाता में भी बारिश का दौर रहेगा. न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
1: सो ऑलमोस्ट एवरीवेयर फॉर अ टाइम नाउ टू पुल आउट आवर अम्ब्रेलास. चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स. द मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 39 डिग्रीज. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम अराउंड 29 डिग्रीज. हैदराबाद is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of around 33 degrees Celsius.
0: और श्रोताओं, चलिए आज की तारीख याद कर लेते हैं. आज है 18 जुलाई 2026 और अब वक्त हुआ है इतिहास के पन्नों को पलटने का. तो आज ही के दिन 18 जुलाई का ये दिन था जब भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ. 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को मंजूरी प्रदान की गई.
1: 1944, on this day, Japan's Prime Minister Hideki Tojo resigned as World War II turned against Japan. And 1968, on this day,

0: इंटेल वॉज फाउंडेड इन कैलिफोर्निया।
1: और बात की जाए 1925 की, तो हिटलर की आत्मकथा माइक कॉम्फ का पहला संस्करण छपानाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने आज ही के दिन अपनी आत्मकथा में लिखा था। इस पहले साल इस किताब की कुल 9473 प्रतियां बिक्री हुई थी और हिटलर ने ये किताब जेल में सजा काटने के दौरान लिखी थी।
0: वीडियो ऑफ टाइटैनिक रिकेज वॉज रिलीज ऑन दिस डे इन द ईयर 1986।
1: और 1976 में ओलंपिक खेलों में पहली बार किसी जिमनास्ट को परफेक्ट 10 स्कोर मिला। रोमानिया की जिमनास्ट नादिया कोमनेसी को 10 में से 10 अंक मिले।
0: एंड 2013 ऑन दिस डे डेट्रॉइट फाइल्ड द लार्जेस्ट म्युनिसिपल बैंकरप्सी इन यूएस हिस्ट्री।
1: और सन 1980 में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी एक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया आज ही के दिन। और श्रोताओं, अब हम आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद कर लेते हैं। तो सरबजीत, सबसे पहले हम किन्हें याद कर रहे हैं?
0: लिसनर्स, टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेट पंडित जगदीश प्रसाद। टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी। अ डिस्टिंग्विश्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, इनिशियली ट्रेन्ड बाय हिज फादर, पंडित जगदीश प्रसाद लेटर रिफाइंड हिज क्राफ्ट अंडर द मेंटरशिप ऑफ द ग्रेट उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। एंड वी हैव दिस सोलफुल ब्यूटिफुल रेनेडिशन फॉर यू।

गायक जगदीश प्रसाद अपने अनुनादी स्वर के लिए पहचाने जाते थे। उनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ की तत्कालीन रियासत रायगढ़ के शाही परिवार की सेवा में लगे दरबारी संगीतकारों के परिवार में। उन्हें साल 1966 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। जगदीश प्रसाद की ठुमरी प्रस्तुतियां पटियाला गायकी परंपरा का अनुसरण करती हैं।

0: Listeners, we are paying our great tributes to the great legendary Bhupender Singh, the great ghazal singer, playback vocalist. Bhupender was known for his rich, deep and soulful voice, and he gave audiences unforgettable classics like Dil Dhoondta Hai, Karoge Yaad. Farat, what are you adding to this list?
1: जी बिल्कुल, फिल्म मौसम के गीत के लिए उन्हें कौन भूल सकता है। अपनी जवादारी या गंभीर आवाज से मखमली एहसास पैदा करने वाले महान गायक भूपेंद्र सिंह का जादू हमेशा सिर चढ़कर बोला। तो आइए सुन लेते हैं इसी फिल्म

0: And Farhat, you know, the words of this beautiful song are so much the need of today's fast-paced world. Bhupinder Singh's contributions to both film soundtracks and independent ghazal albums left a lasting legacy in Indian music.
1: जी बिल्कुल, और देखा जाए तो फिल्मकार गुलजार साहब का भी उनकी आवाज़ के वो मुरीद थे, और उनका ये कहना था कि भूपिंदर की आवाज़ किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदों की तरह है, उनकी मखमली आवाज़ आत्मा तक सीधे पहुंचती है।

के दशक के दौरान इन्होंने एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन और खयाम जैसे सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों के साथ काम किया था। मुबारक बेगम ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की थी। फिल्मों में उन्हें पहला ब्रेक महज 13 साल की उम्र में संगीतकार नौशाद ने दिया। उन्होंने फिल्म आइए के लिए मोहे आने लगी अंगड़ाई को अपनी आवाज दी। उन्होंने अपने 3 दशकों के लंबे करियर में एस डी बर्मन के साथ बहुत सारे गीत गाए, लेकिन जल्द ही वो फिल्मों में गाने लगी थी और तब लता मंगेशकर भी अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, लेकिन उनके गीत इस कदर आगे बढ़ चढ़ कर बोलेंगे कोई नहीं कह सकता था।

0: Listeners, we would also like to make mention here of the great Kadambini Bose Ganguly. She was the first Indian female doctor of Western medicine along with Anandibai Joshi. Dr. Ganguly was a trailblazer in Indian history, celebrated as the country's first practicing female doctor of Western medicine.
1: और अब श्रोताओं, हम याद कर रहे हैं आरती मुखर्जी को। 1955 से सिंगिंग करियर में एक्टिव रही और कई भाषाओं में वो गाने गा चुकी हैं। इन्होंने हिंदी फिल्में गीत गाता चल, तपस्या और मासूम के लिए शानदार गाने गाए, लेकिन इनके साथ हुए एक हादसे ने उनके सिंगिंग करियर को थोड़ा सा नीचे ला दिया। आरती मुखर्जी ठुमरी से भजन, ठप्पा, तराना और गजल तक हर तरह के सॉन्ग गाने में माहिर रहीं। शेखर कपूर की फिल्म मासूम में उनका जो सॉन्ग था दो नैना, वो काफी लोकप्रिय रहा, जिसके लिए उन्हें सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।
0: सो हैव यू ब्रॉट दैट नंबर फॉर आवर डियर लिसनर्स टुडे फरहत?
1: जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं।

0: और अब हम बात कर रहे हैं भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने आज के दिन हमें अलविदा कहा, राजेश खन्ना की। अपने रोमानी अंदाज, स्वाभाविक अभिनय और कामयाब फिल्मों के लंबे सिलसिले के बल पर करीब डेढ़ दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया।
1: यस, वी आर रिमेम्बरिंग टुडे द ग्रेट राजेश खन्ना, द रिसिपिएंट ऑफ 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स। ही वॉज ऑल्सो पॉस्थमसली अवार्डेड द पद्म भूषण इन द ईयर 2013।
0: 1969 में आई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना के करियर को उड़ान दी और देखते ही देखते वो युवा दिलों की धड़कन बन गए। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म से ये प्यारा सा गीत।
2: आपकी उम्र क्या? 30। 30, 100 में से 30 गए कितने रह गए दोस्त?
3: 70।
2: आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आपको मालूम आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मुछाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मुछाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं दोस्त? बाबू मुछाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं तो फिर डर किस बात का?
4: मैं

0: And listeners, you know, the great blockbuster movies like The Train, Sacha Jhoota, Safar, Aan Milo Sajna, Kati Patang, Mehboob Ki Mehndi, these are some of the films where Rajesh Khanna left an indelible mark.
1: जी बिल्कुल सरबजीत, और अभी हम जिस फिल्म से गीत सुन रहे हैं, आनंद फिल्म ये रही, और अमिताभ बच्चन के साथ बहुत ही अच्छा किरदार इन्होंने निभाया. एक दोस्ती की जो मिसाल है वो देखने को इस चीज में मिल जाती है, और सशक्त अभिनय का एक उदाहरण भी इसमें देखने को मिलता है. एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के किरदार को राजेश खन्ना ने जिंदा दिल इंसान के रूप में जीकर कालजयी बना दिया. तो बहुत ही अच्छी फिल्म इन्होंने दी. और इसके अलावा आराधना फिल्म की हम बात कर रहे थे, तो इस फिल्म के जो गीत थे वो भी काफी लोकप्रिय रहे. कोरा कागज था मन मेरा, तो आइए सुन लेते हैं.

0: और श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम आज के कार्यक्रम के बारे में भी आपको बता देते हैं। अगर आप राजधानी दिल्ली में हैं तो इंडिया हैबिटेट सेंटर शाम 7:30 बजे से रंगसाज थिएटर ग्रुप की ओर से नाटक बुनकर का मंचन किया जाएगा, तो आप जरूर जाइए इंडिया हैबिटेट सेंटर।
1: Yes, listeners, time to wind up today's show. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, followed by Morning News in English. Thank you for tuning in. Have a great day. Namaskar.

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाए

0: कैसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार

0: का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।
1: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
2: वर्किंग टू स्ट्रेंथन ईच अदर्स,
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
4: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब मैं लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
6: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
7: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का

0: प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देशभर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में PV सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the 4-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
3: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
2: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged the passenger service from Jind Railway Station in Haryana. The train will run between Jind and Sonipat Railway Stations and cover the 89-kilometre distance in 2 hours. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Jumagach in West Bengal, located near the India-Bangladesh border, to inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects.

0: The Times of India reports, in step towards plastic notes, RBI floats expression of interest for polymer substrates. And finally, the passing away of legendary cricketer Sir Garfield Sobers is widely noticed in the press. The Indian Express writes in its obituary, legendary all-rounder with many firsts. He didn't know how special he was. And with that, it's back to you, Sanjay.
1: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. PV Sindhu enters into final of Japan Open badminton tournament. And in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में BSF की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अकवाम मुत्तहदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है। टोक्यो में जापान बैडमिंटन ओपन में PV सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम पंजाब के शहर जालंधर से 20 रियासतों के 75 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS के तहत जदीद बनाया गया है। ये प्रोग्राम स्टेशनों को जदीद बनाए जाने के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामों में शामिल है। मुसाफिरों की सहूलतों के लिए की गई इन स्टेशनों की जदीदकारी पर तकरीबन 1,570 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इन स्टेशनों को विरासत भी विकास भी के जज्बे के साथ नए सिरे से तैयार किया गया है और इस अमल में मकामी सकाफत, विरासत और फन तामीर का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। इस मौके पर जनाब मोदी ने करतौली अम्बाला ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के रबते में इजाफा होगा। वजीर आजम ने अमृतसर और वाराणसी के दरमियान संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसकी वजह से भारत के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम रूहानी और सकाफती दो मराकज के दरमियान बराह रास्त रेल खिदमात शुरू हो गई हैं। वजीर आजम ने चार लेन वाले ग्रीनफील्ड दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के 30.9 किलोमीटर के छठे पैकेज का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि इन 75 तजदीद शुदा रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवे के जरिए पिछले कुछ बरसों में की गई अक्सर तब्दीली की अक्कासी होती है।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
2: इससे पहले दिन में वजीर आजम मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जिंद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के दरमियान चलेगी और 79 किलोमीटर का फासला महज 2 घंटे में तय कर लेगी। जनाब मोदी ने जिंद में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए के बहुत से कौमी तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें मुल्क के लिए वक्फ किया। वजीर आजम ने चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के तरक्याती काम

0: राजी हुए थे जिसका मकसद 2 साल तवील जंग को रोकना था। इंतहाई शिद्दत की लड़ाई अब कम हो गई है, ताहम जंग मंदी के निफाज के बाद से गजा में कम अज कम 1,130 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन समझौते के नाकाम होने के बाद अमरीकी फौजों ने कल लगातार 7वीं रात ईरान पर हमले जारी रखे। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान की फौजी सलाहियतों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी फौज के फिजाई हमलों की शुरुआत के कुछ ही देर बाद कल रात जुनूबी बंदरगाही शहरों बंदर अब्बास और सिरिक में कई धमाके सुने गए। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि उसके ड्रोन्स ने खित्ते में मौजूद अमरीकी मोर्चों के खिलाफ अपने ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर उर्दुन और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज को निशाना बनाया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 16,700 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के 3 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का मुश्तरका तौर पर संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से पुणे खित्ते में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, सफर के वक्त और ट्रैफिक में कमी आएगी, नीज सनती व इकतसादी तरक्की को फरोग हासिल होगा। इन प्रोजेक्टों पर डिजाइन, रकूम की फराहम, तामीरात, कामकाज और मुंतकली DFBOT की तर्ज पर अमल दरामद किया जाएगा, जिन्हें 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमालय के ज़ैली मगरबी बंगाल इलाके और सिक्किम में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश और अलग अलग जगहों पर इंतहाई दर्जे की बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने साहली आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाओं की पेशगोई की है। इस दौरान आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में गर्मी और नमी का इम्कान है। मैक्सिको के जनूबी साहिल पर कल 7.4 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया। मैक्सिको के सदर क्लॉडिया शेनबॉर्न ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलजले के बाद किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम उन्होंने कहा कि हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। जंजबार के सदर और इनकलाबी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मोइनवी, जो भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले सदर मोइनवी ने कल चेन्नई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 63वें तकसीम असनाद में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि IIT मद्रास के पहले बैनुल अक्वामी कैंपस IIT मद्रास जंजबार का क्याम तालीमी संगमील से कहीं ज़्यादा की नुमाइंदगी करता है। मारूफ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु जापान ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने दुनिया की 4थे नंबर की खिलाड़ी चीन की शेन यूफी को शिकस्त दी। सिंधु कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के दस्तबरदार होने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थी। फीफा आलमी कप में आज रात मायामी स्टेडियम में यूरोपीय हरीफ फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा मुकाम हासिल करने के लिए प्लेऑफ मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मुकाम के लिए प्लेऑफ मैच को आलमी कप के हिस्से के तौर पर साल 1934 में टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में शामिल किया गया था। इसके बाद से सिर्फ साल 1950 के एडिशन में ये मैच नहीं हो सका था। इस दौरान कल रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप का फाइनल मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। हॉकी इंडिया आज से मुल्क भर में मुल्कगीर सतह पर कोचिंग और इंतजामी उमूर के तौर तरीकों से मुतालिक वर्कशॉप का आगाज करेगा, ताकि मुल्की सतह पर हॉकी के फरोग के लिए इको निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सके। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। फॉरेस्ट सर्विस के अफसरान महज जंगलात के मुंतजिम नहीं है बल्कि कुदरती वरसे के भी मुहाफिज हैं। इस बात का इजहार ख्याल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसरान से मुलाकात के दौरान किया। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है। सतीश गोलछा की जगह अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाये किया है। खबरों के मुताबिक वजारत दाखिला का हुक्म जारी होते ही उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, जबकि रोजनामा इनकलाब ने अमरीका और ईरान की तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमले जारी रहने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वजीर आजम ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में बीएसएफ की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे, वो हिफाजत इंतजामात का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदामात का आगाज करेंगे। अकवामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तश्वीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज उठाई है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 8:45 और 57 सेकंड, यानी टाइम थोड़ी सी दिल लगी, थोड़ी सी शरारत का और बहुत सारे म्यूजिक के साथ आपसे जुड़ने का। सुनीता है आपके साथ, ये है म्यूजिकल दिल लगी।

ये फिल्म थी स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसमें संगीत दिया था एआर रहमान ने और गाया दमदार आवाज वाले सुखविंदर सिंह ने, जिनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। 1971 18 जुलाई को जन्म हुआ। फिल्म दिल से का जो गाना अब मैं प्ले करने वाली हूँ, उसके लिए सुखविंदर को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर से नवाजा गया था।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जोशीली आवाज के साथ थिरकते हुए हम आ पहुंचे उस पड़ाव पर जब सुनीता को लेनी होगी आपसे इजाजत नेक्स्ट सैटरडे तक। एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग एंजॉय कीजिए 100.1 MHz AIR FM गोल्ड पर। मैं मिलूंगी अगले शनिवार यहीं आपसे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। स्काई रूट एरोस्पेस आज भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला प्रक्षेपण करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह रॉकेट तेज और आवश्यकता के अनुसार उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं देने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा और नवाचार को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले उन्होंने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने

0: Final after her opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired during the second set of the match. Sindhu won the first set 21-19 and was leading in the second set 15-10 when her Chinese rival got retired. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
3: जल ही जीवन है, ये कहावत तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे सही मायने में समझकर और इसके लिए काफी अच्छा काम किया है आज की हमारी इस शख्सियत ने, जिनसे कि हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैं हूँ आरजे नीति और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है। और यहां तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद
3: रामवीर जी। आपको पॉन्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि अब तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
4: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन ये है, मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है, और उसके लिए जिम्मेदार होती है कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th के लास्ट तक अपने गांव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में, और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय पे एक नहर पड़ती है बहुत छोटी सी, और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो बीच नहर में जाके लेट जाते थे, तो हमें भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है, और वो ऑफिशियली नाला है। वहां पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट वहां से बह के जाता है। आप वहां किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था। मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हों। वही नहर मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूं, तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूं, दुख होता है। जब मैं 11वीं क्लास में गांव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में, डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था, तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था कि जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं, क्योंकि आदत होती है कि जब भी हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिली तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गांव में देखिए तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गांव से और मैंने देखा कि ये मेरे गांव की समस्या नहीं है, ये तो सब जगह सेम इश्यू होता जा रहा है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन में था, कॉलेज डेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास 2 स्टूडेंट थे और दोनों भाई थे, उसके पिताजी ने कहा पूरे दिन इधर उधर कंचा खेलते हैं, सारे दिन उधर जाते हैं, तो तुम अगर इनको पास करवा दो 33% से तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगा। मैंने उनको पढ़ाया और उनके 70% आ गए, तो उन्होंने इतना प्रचार किया कि मेरे पास 40-50 बच्चे आ गए। वो ऐसे प्रचार करते थे, किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा हो तो रामवीर के पास भेजते पास हो जाता है, क्योंकि मुझे मैथ फिजिक्स से बहुत प्यार था। तो मेरे पास इतने सारे बच्चे हुए, वीकेंड पे हमने एक्टिविटी करना शुरू किया। एक्टिविटी क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे, पंप सबके घर में समर सर्विल पंप है, एक गिलास पानी की जरूरत है तो वो 1000 लीटर पानी निकालेंगे। छोटे बच्चे को नहाना है तो उसको बाल्टी में नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है, सोचिए जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10000 लीटर में नहा रहा है, और वो ड्रिंकिंग वाटर, उसकी कॉस्ट जोड़ जोड़ेंगे 20 रुपए के हिसाब से तो लाखों रुपए में बैठ रही है वो। पूरे परिवार की इनकम 10,000 रुपए महीना है और पानी बहा रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो 1 महीना किया 2 महीना किया बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए, हमने

0: सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम, तो इनको ऐब करना सिखा रहे हो लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ। तो कुछ बच्चे हट गए, कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे, गांव की जो चौपाल बनी हुई है चौपाल पे किया हमने, उसका नाम रखा जल चौपाल, और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके मीडिया में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ, हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा।
1: अच्छा।
0: वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए तो 500 लोग इकट्ठा हो गए। देन आई रियलाइज कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई छोटी चीज नहीं है, जिस काम के लिए खुद डीएम साहब कलेक्टर साहब आपके गाँव में आ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक गाँव देखा ही नहीं हमारा, और उनको पता चला। देन आई रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। और वहां से ये फिर मैंने कॉलेज किया, 2 साल जॉब के साथ भी मैंने यही किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा बड़ा हो गया टाइम के साथ, और फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम अभी मैं ये करूँ। वहां से निकल के धीरे धीरे यहाँ तक पॉन्डमैन की जर्नी शुरू हुई।
1: तो पॉन्डमैन की जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो किस तरह की मुश्किलें सामने आई?
0: शुरुआती दौर में क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसको आप ये बोल सके कि मैंने वो काम किया है जी, आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। इंडिया में क्या है, वाटर इज स्टेट सब्जेक्ट, कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप उसको बिना परमिशन के गंदा तो कर सकते हैं लेकिन बिना परमिशन के साफ नहीं कर सकते हो। साफ करना है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी, तो एनओसी के लिए हम चक्कर काटते थे। हमसे हर पूछता था एनओसी तब देंगे, पहले बताओ एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा, अब एक्सपीरियंस हो तो बताए, हमने तो जीरो एक्सपीरियंस, हमने कभी तालाब ही साफ नहीं किया। गांव वालों से बात करें वो कहते थे कि यार तुमने कभी किया ही नहीं कुछ, तो ये कैसे करोगे। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिसको हम उदाहरण के तौर पे बता सके कि हमने वहां पे किया है उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे, लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए, आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं, तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए कोई नहीं आया, हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन। अच्छा। ना हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती लेकिन हम तो दो ही लोग थे, और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे कोई भी हमसे निकल रहा था क्यों कर रहे हो, कहां से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हमें कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा वो उधर भी करके जाना। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
1: अच्छा, तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
0: देखिए हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है, तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है, हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है, आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आपके रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है बस उसमें डाल दो जाके, चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब 2 चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने तालाब को खाली किया तो 1 से 1.5 मीटर की हमें लेयर मिली, और उस लेयर में सिर्फ बोतल नहीं है, उसमें सब कुछ है, उसमें जूते हैं, उसमें चप्पल है, उसमें कांच है, घर का बचा हुआ सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है, उस कचरा डलते वहीं फंस जाता है। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले जो नीचे फंस गए रहे थे, पानी में डूब गए थे वापस, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है। भैंस चोरी नहीं हुई थी, भैंस डूब के मर गई थी तालाब में।
1: जब आप कचरा

0: उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से
1: देखिए, उसके लिए तो सेफ्टी टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं
0: जी
1: जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर
0: अच्छा
1: जो पूरा पहन
0: बूट्स
1: लेते हैं तो
0: वगैरह
1: यहाँ तक आती है वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है, सेफ्टी
0: पहनकर
1: किट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ है, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है, और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते,
0: जी
1: क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा,
0: सही
1: बात
0: बात
1: तो
0: है
1: एक ही हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राई पार्ट एग्रीमेंट होता है, एक होता है कॉरपोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहां पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहां तक
0: सही
1: उसको
0: जगह तक
1: लेके जाए।
0: पहुंचाए।
1: जी जी लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ दो तीन तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर चला जाता है, स्लज ले लेता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट जूते चप्पल प्लास्टिक ये सारे, हमने क्या है कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलाबरेट किया हुआ है, वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच, ट्री गार्ड, मेज, उसको मोल्ड करके वापस से पिंगला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस से लाके,
0: अच्छा,
1: ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
0: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट
1: यस
0: कर दिया
1: यस
0: है,
1: यस
0: तो
1: यस
0: ऑटोमेटिकली वो
1: बिल्कुल
0: अच्छे तरह
1: बिल्कुल
0: से वो जो कचरा है वो जा रहा है और स्टार्टअप
1: यस यस
0: उसे
1: यस
0: किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस
1: बिल्कुल
0: कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन
1: देखो,
0: होता है?
1: लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे। उनका जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब जाने की फिराक में रहते हैं, और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए, तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं, उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं भाई, पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है।
0: जी
1: डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे, तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा है, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा, जो अलग अलग टाइप के लोग मिले, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले ये बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो, वो सारे लोग हैं। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा, तालाब को मरने में 30, 40, 50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पे रह रहे हैं, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते हैं, और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
0: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
1: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है, या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है, या जो ऑनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इशू क्या है, तालाबों का कोई ऑनर नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले,
0: वो कैसे?
1: तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है? तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है? तालाबों से। मछली कहाँ से आती है? तालाबों से। और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाला के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी, और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करें।

0: तो इसीलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी ना किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पे खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए भाई, अगर हम ये उम्मीद करके चले कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए, मैं कितनी बार जाता हूँ, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं। तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
1: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहां पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते
0: हैं? बहुत अच्छा लगता है।
1: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
0: हम क्या है, हमारे एक USP है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आईलैंड बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आईलैंड बनाने का, वो ये है क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है? इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान भी उतना ही डिपेंड था उस तालाब पे और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था। इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, RO से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना ही रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ? नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है। वो तो आज भी तालाबों पर उतने डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया, पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल, आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए। आप इस साल बनाइए आईलैंड और अगली साल देखिए, कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर आप वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सकती, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी 1 महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था दुजाना गांव में। मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे और पूरा तालाब एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। अब सोचिए अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को?
0: क्या है, 5 भाई बहन है, अभी मैं सबसे छोटा हूँ और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे, तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया और मैं कॉलेज गया पहली बार और जिसने पहली बार MNC में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज
1: जा पढ़ा लिखा और MNC में जॉब करे।
0: जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहाँ के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहाँ दरोगा थे और मैं वहाँ पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ पे मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुंच गए चांद पे। प्राउड फील कर रहे थे, घर वालों को उम्मीद थी। और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूँ। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 2018 जॉब किया था, तो 2018 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था और मैं जॉब छोड़ने के 1 महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था।
1: अच्छा।
0: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था।
1: तो क्या बताया,
0: ताकि घर वालों को रियलाइज

0: और मैं करता क्या था उस बीच कि कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, एक दो भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है। और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक सीपी में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था। तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहां जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं कैसा होता है स्कूल, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा वहां नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो।
1: अच्छा
0: तो मैंने कहा ठीक है कल छोड़ दूंगा।
1: तो पहले आपने पूरा वो भूमिका तैयार की, उसके बाद
0: क्योंकि जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना, मैं बोलूंगा क्या, हाल तो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे। हमारे लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो, कुछ ही है, घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है। तो
1: ऑब्वियसली लगता है कि बेटा इंडिपेंडेंट हुआ,
0: बेटा जो है
1: कर रहा है, तो
0: हाँ छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ। तो कई बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देखा है तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, वो पेज फाड़ लेता था और बोलता था हाँ तुम ले जाओ इसको। तो पिताजी तक नहीं पहुंचता था, लेकिन भाई गांव में आया तो गांव वाले खुद ही आ जाते थे, आता तुम्हारे लड़के का।
1: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था, आपने सुना था वो?
0: नहीं मैं तो सुन नहीं पाया था, उस दिन मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया, और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो, अरे नहीं अंकल अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था।
1: अच्छा।
0: और बार बार बज रहा था, मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे। तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे यकीन आया कि हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो ये करते हो,
1: वही लोग,
0: तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया कि जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो मजाक उड़ाने वाले।
1: और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
0: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है, उनको मनी मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा सिर्फ हम टीवियों में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके।
1: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
0: मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी तो हमारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए, तो मैं इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं जब भी तालाबों के बारे में वो पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए।
1: अच्छा,
0: इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रुपए कमाऊंगा। तो उस बात से खुश हो जाते थे, अच्छा मछली पालन का काम करना है। मैंने कहा हाँ जी मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, एक साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए, तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो ही सैड की ठीक है भाई मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
1: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं मेरे साथ के करते है ना, मैंने मछली पालन कराया, अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी ना किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है, अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही भर जाएगा। आप एक साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंडसेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं, जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है धीरे धीरे, धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे। दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी, आगे झोपड़ी, एक छोटा सा पॉन्ड, सूरज निकल रहा है, कहाँ से आया ये, है ना? क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब वो सब झूठ है, अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं। अब तालाबों की असली पिक्चर बनाइए ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
1: अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है?
0: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं।
1: अच्छा।
0: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है, कोई छोटा है, है ना? कोई 50-50 एकड़ के भी है जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं, छोटे छोटे है। क्या जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे। वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए, उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ, भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होके देखिए, आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुंदर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है? बड़ा तालाब। उससे थोड़ा छोटा होता तो छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ अपने झील भी रिवाइव करिए तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ।
1: अच्छा।
0: हमने गांव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पांडिचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
1: आने वाले समय में किस किस जगह को, कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करना?
0: नहीं, टारगेट हम नहीं करते हैं। हम क्या है, अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो लिस्ट बनती है लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गांव से निकले हैं और आप US में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गांव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूं अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूं।
1: अच्छा।
0: तो हमारी टीम जाती है, उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं।
1: अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है और
0: फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉर्पोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूँ और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक ही बना रहा हूँ, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गांव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है। क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो वो उसी प्लॉट का पानी नहीं निकल के आता है, वो वहां से 1 किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं है, आपने तो सिर्फ वो प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सिस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था, यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गांव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सिस को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉर्पोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहाँ पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉर्पोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहाँ पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी है, सब मदद करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारी मदद करते हैं और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग क्षेत्र।
1: जैसे मेरे जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहें सफाई के या रिवाइव करने के लिए तो वो क्या कर सकते हैं?
0: देखो, शुरुआत तो घर से होती है। अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहाँ पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ कर लिया।
1: बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए।
0: हाँ, तो तालाब को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं, एक आप जाके तालाब से कचरा निकाले, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है, इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे, इसके अलावा और कोई। क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते। छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
1: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast@airnews.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं आपके साथ भावना।

प्यार देना जानता है पर देना एक तरफा नहीं होता। बहुत कुछ हम प्यार में लुटाते हैं, देते हैं। देना लेना दोनों तरफ से होता है, कभी आप लेते हैं कभी कुछ देना भी पड़ता है। लेकिन पर्यावरण प्रेम ये एकदम अलग है। इसमें पर्यावरण हमें सब कुछ देता है, कभी कुछ नहीं मांगता, परंतु फिर भी हम कुछ देते ही रहते हैं। जैसे कि कचरा, जैसे कि प्लास्टिक की पॉलिथीन्स। कितनी बार खबरें आईं कि अब बाजार में एक भी पॉलिथीन दिखाई नहीं देगी, लेकिन न जाने कहां से दबे पांव ये पॉलिथीन्स बाजार में और बाजारों से फिर हमारे घरों में आ ही जाती हैं। ये पॉलिथीन्स हमारे देश को, समाज को गंदा कर रही हैं। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए, क्लीन इंडिया मिशन से जुड़ने के लिए पॉलिथीन्स को ना कहिए, जूट बैग्स को, कागज के थैलों को हां कहिए और अपना उत्तरदायित्व निभाइए देश को, समाज को स्वच्छ रखने के लिए।

लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर

0: प्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: समय मिला लीजिए 9:50 और 45 सेकंड। 100.1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्लगी और मैं आपके साथ भावना।

0: यूं तो दुनिया में लोग आते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा आता है कि सबके दिलों में बस जाता है। ऐसी ही पर्सनालिटी हैं नेल्सन मंडेला। आज ही के दिन 18 जुलाई सन 1918 को इनका जन्म हुआ था दक्षिण अफ्रीका के केप में। रंग भेद के खिलाफ उनकी लंबी लड़ाई के लिए दुनिया भर में इन्हें जाना जाता है। इनके पिता हेनरी मंडेला थेम्बू जनजाति की मदीबा कबीले के प्रमुख थे और आज के दिन इनके जन्मदिन के दिन 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

इसी के साथ म्यूजिकल दिल लगी से मैं भावना आपसे लेती हूँ विदा, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे। 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स ये प्रोग्राम लेकर हम आपके साथ ही रहेंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं, हम आपके संदेश को शामिल करेंगे और आपकी पसंद के गीत भी सुनवाएंगे। fmgold@delhi.com ये हमारा ईमेल आईडी है और 9868868753 ये हमारा नंबर है। अभी भावना का स्वीकार कीजिए नमस्कार, क्योंकि अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, उसके बाद 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों, खासकर युवाओं से इस ऐतिहासिक मिशन को देखने और टीम स्काई रूट की सफलता की कामना करने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडार्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चार चेन यू की खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। वहीं दूसरे गेम में वो 15-10 से आगे थी, तभी चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति पर चिंता व्यक्त की, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। अमरीकी सेना ने ईरान पर लगातार सातवीं रात हमले किए, ईरान ने जॉर्डन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। मैक्सिको के दक्षिणी तट के निकट 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील भी की। संयुक्त राष्ट्रों के अनुसार पिछले महीने चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत लगाए गए प्रतिबंध और उसके नेताओं की गिरफ्तारी पर भी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। चाबहार पर कथित हमले के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि बंदरगाह के टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
1: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत सहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, डिजिटल बदलाव, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत एस्टोनिया सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत की डिजिटल क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया जा रहा है।
2: Working to strengthen each other's...
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
4: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा तीन दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने चेन्नई में कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईआईटी मद्रास के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर आईआईटी मद्रास जांजीबार की स्थापना शैक्षिक उपलब्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये इस साझा विश्वास को दर्शाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और उत्कृष्टता को कभी भी भौगोलिक सीमाओं में बांधा नहीं जाना चाहिए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी सेना के ईरान पर हमले जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के टूटने के बाद लगातार 7वीं रात ईरान पर अमरीकी सेना ने हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले कमांडर इन चीफ के निर्देश पर ईरानी सैन्य क्षमताओं को लगातार कमजोर करने के उद्देश्य से किए गए थे। ईरानी मीडिया ने बताया कि अमरीकी सेना के हवाई हमले के कुछ ही समय बाद कल रात बंदर अब्बास और सिरिक दक्षिणी बंदरगाह शहरों में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई। ईरान ने कहा कि उसने ड्रोन हमले में जॉर्डन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। मेक्सिको के दक्षिणी तट के निकट 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। इसे देखते हुए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भूकंप के बाद किसी नुकसान की खबर नहीं है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
5: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चेन यू फी के खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। दूसरे गेम में वो 15-10 से आगे थी, तभी चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। इससे पहले सिंधु को क्वार्टर फाइनल में भी वॉकओवर मिला था, जब जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा मुकाबले से हट गई थी। अब पीवी सिंधु जापान ओपन के महिला सिंगल्स खिताब के लिए फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: आज नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती पर मानवता, शांति और समानता के लिए उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति पर चिंता व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। अमरीकी सेना ने ईरान पर लगातार 7वीं रात हमले किए। ईरान ने जॉर्डन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। मेक्सिको के दक्षिणी तट के निकट 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। सुनामी की चेतावनी जारी की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपके दिल की बात हम तक पहुंचती है। ईमेल आईडी हमारा fmgoldairdelhi@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर हमारा 9868867 5 3। तो फिर जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने मन की बात हम तक पहुंचाइए। दिल में मेरे आज क्या है, ये लफ्जों में कहां बयां होगा, जिसने आंखों को पढ़ लिया वही मेरा राजे दिल होगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार जी का संदेश हमें मिला, और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा जी का, और गाना सुनना चाहते हैं ये।

बहुत खूबसूरत तराने, दिल को छूने वाले तराने ये शशि ने हमें लिखकर भेजा है कांति चौक से। कांति चौक आए जी, ये नहीं लिखा आपने कौन से कांति चौक से, कोई बात नहीं। प्रवीण सोनी है, पूजा पायल है, जगदीश जौहरी है, इन्होंने लिखा है नमस्कार, कार्यक्रम रोज सुनते हैं, पसंद आते हैं, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा फर्रुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया या सरोज चौरसिया का संदेश हमें मिला है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: फिर स्वागत आप सभी का। ईमेल आईडी फिर से एक बार बता देती हूँ, दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम है जिसमें आपको हमें ईमेल करना है या व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेजना है। तो दोनों नंबर fmgoldairdelhi@gmail.com ईमेल आईडी हमारा, और 9868686753 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। मैं हूँ आपके साथ भावना, और हमारे साथ हैं TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी जुड़े हैं ईमेल के द्वारा। अफरोज शेख ने भी हमें ईमेल किया है नेमुआ सुपौल बिहार से, और कहते हैं कि एक गाना है फिल्म दिल ही तो है का मुकेश जी की आवाज में, जो बहुत कम रेडियो पर सुनाई देता है। बात तो सही कही है, गाना भी अच्छा है। चलिए ये रहा आपकी पसंद का गीत अफरोज साहब।

प्रसारक जी के सेवा में नमस्कार। अरे बंधुअर, आपकी सेवा में मेरा डबल नमस्कार। ये है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर डाबकी रोड अकोला से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके नमस्कार के लिए। बबलू कश्यप है, अशरफ अली है, महेश अग्रवाल है, सिराज मिथुन है, नवाब अहमद भारती है, दिल्ली से इनका संदेश हमें मिला है और ये गाना सुनना चाहते हैं। ये वाला

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, ये प्रोग्राम है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपके दिल की बातें हो रही हैं। नमस्कार जी मेरी प्यारी बहन, हम भी अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। लीजिए आपका नंबर आ गया। और ये कौन है? ये कला नौर से नरेंद्र शर्मा है, किरण शर्मा है, नितिन और मयंक शर्मा है। और इसके अलावा बोधराज खोरवाल जी का संदेश हमें मिला है। इनके साथ कौन कौन है? कमला रानी है, भानु प्रकाश है, गीतिका खोरवाल भी है, उत्तम नगर दिल्ली से संदेश है।

सुनील मोहन है, उषा मोहन है, टिल्लू नायक है, मधु नायक है, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से इनका संदेश हमें मिला है। सोहेल शेख हैं, शेख वजीर हैं, शेख शगिर हैं, बबलू ठेकेदार हैं, मोताला बाजार से इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा कौन है, संदीप मक्कड़ हैं और मन्नत मक्कड़ हैं, ज्योति मक्कड़ हैं, इनके साथ भारत मक्कड़ भी हैं, कमल सानी है, पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से संदेश हमें मिला है। इसके अलावा ये कौन है, ये है जय राम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु, ये सब हमें उत्तम नगर से, दिल्ली से अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो संदेश आया है, राशिद हुसैन अंसारी साहब हैं, ईमेल इनका हमें मिला है, एड्रेस नहीं मिला है, केवल ईमेल इन्होंने हमें लिखकर भेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। और सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग है जो हमारे साथ जुड़ी हैं और गाना सुनना चाहते हैं, ये फिल्म रजनीगंधा से।

इसी के साथ प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स से भावना को दीजिए इजाजत। मैं कहीं नहीं जा रही। 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: उड़ान के लिए तैयार है। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत आज दिन में 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट स्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाज सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज अचा वास्क्वेज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचू को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने कहा कि श्री वांगचू को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अस्पताल ले जाया गया। श्री वांगचू पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर थे। फीफा विश्व कप में 3रे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चार चेन यूफी के खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। दूसरे गेम में वे 15-10 से आगे थी, लेकिन चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sanjay Mattu. India's first private orbital rocket Vikram 1

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार कहीं घूमने जाते हैं। आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम चलेंगे मदुरई। मैं हूँ आपके साथ भावना।

दिल के पास है मदुरई, दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर। वैगई नदी के किनारे मंदिरों का ये शहर पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। मदुरई के उत्तर में सिरुमलाई पहाड़ियां हैं और दक्षिण में नागमलाई पहाड़ियां हैं। मदुरई का नाम मधुरा शब्द से पड़ा है, मधुर, मधुरा यानी मिठास। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये मिठास दिव्य अमृत से उत्पन्न हुई और भगवान शिव ने इस अमृत की वर्षा मदुरई शहर पर की थी। मदुरई को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि चार जंक्शंस का शहर, पूर्व का एथेंस, लोटस सिटी और स्लीपलेस ब्यूटी। इस शहर को लोटस सिटी जो है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शहर जो है ना वो कमल के आकार में बना हुआ है। अगर आप ऊपर से देखेंगे हेलीकॉप्टर में, एरोप्लेन में बैठ के, तो बिल्कुल आपको कमल जैसी जो शेप है वो नज़र आएगी इस शहर की। स्लीपलेस ब्यूटी ये इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि इस शहर में 24/7 पूरा टाइम काम करने की संस्कृति है। यहाँ के लोग थकते नहीं हैं, काम भी करते हैं और पूरा आनंद भी उठाते हैं।

0: दिल के करीब हों जो ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जगह हैं मदुरई में। मदुरई को विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर यहाँ की जान है, यहाँ की खास पहचान है। गोरी पलायम दरगाह और सेंट मैरीज कैथेड्रल इस शहर का गौरव है। ये सब जगह गांधी जी के जीवन का चित्रण करता है। यहाँ का गांधी म्यूजियम, कजीमार मस्जिद और वंदेयूर मरियम्मन तप्पाकुलम मंदिर, मीनाक्षी मंदिर है ना जो वहां से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस मंदिर में, वंदेयूर मंदिर में इसी नाम का तालाब भी है। थिरुपरम कुंदरम मंदिर, पझामुदिर सुलाय मंदिर, वैगई बांध, अथि सायम थीम पार्क, यहां लोग जरूर आते हैं। मतलब पूरा एक पैकेज है मदुरई, बहुत सारी जगहें घूमने के लिए समय अच्छा खासा लेकर आना चाहिए जब भी आप यहाँ आ रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ की खास शान की, यहाँ के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर की, जिसे मीनाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है, स्थापत्य और वास्तुकला की दृष्टि से आधुनिक विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है इसे। जी हाँ, आधुनिक विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। यहाँ के प्रांगण में बहुत से मंडप बने हुए हैं जिनमें सहस्त्र स्तंभ मंडपम बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन द्रविड़ शिल्पकला के सौंदर्य की मिसाल हैं ये स्तंभ, और कुछ स्तंभ तो ऐसे हैं कि जिन पर आप थाप देना, थाप ऐसे हाथ मार के, तो विभिन्न वाद्यों के स्वर सुनाई देते हैं। और इसके पास ही है स्वर्ण पुष्करणी नाम का सुंदर सरोवर, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। मदुरई
1: न झटका जुल्फ

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम

0: मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

शानदार तिरुमलाई नायकर महल मीनाक्षी मंदिर के पास ही है मदुरई में, और इस महल में तिरुमलाई नायकर महल में द्रविड़ियन और राजपूत शैलियों का मिश्रण दिखाया गया है। आजादी के बाद इस महल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और इस भव्य महल में आप लाइट एंड साउंड शो का भी आनंद ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ जरूर आइए जब भी आप मदुरई आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु को समर्पित कुडल अजगर मंदिर, ये पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को बहुत आकर्षित करता है। बहुत ही खास जगह है, खास स्थल है। बहुत ही खूबसूरती के साथ साथ मंदिर को अलग अलग रंगों से जो सजाया गया है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ऐतिहासिक महत्व का प्रसिद्ध मंदिर है ये कुडल अजगर। मदुरई के पास समनार हिल्स या फिर समनार मलाई एक सुंदर पहाड़ी रॉक कॉम्प्लेक्स है। पहाड़ी गुफाएं, केव्स, ये

पर्यटन का लोकप्रिय स्थान है। लोग इन केव्स में घूमना, उन्हें देखना पसंद करते हैं और रॉक पर भी जाते हैं। यहाँ अंदर दीवारों पर ना, इन केव्स में जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भिक्षुकों की नक्काशी बनी हुई है और जो भिक्षु हैं उनकी आकृतियाँ बनी हुई हैं। इस परिसर में एक सुंदर कमल मंदिर भी है, बहुत बहुत खूबसूरत लगता है वो मंदिर भी।

मदुरई का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो है ना चिथिराई त्यौहार है। अप्रैल और मई में इसे मनाया जाता है और मीनाक्षी मंदिर में इसको मनाया जाता है, इस त्यौहार को, मतलब बहुत धूमधाम से ये मनाया जाता है। भगवान शिव और माँ पार्वती का राज्याभिषेक होता है, रथ उत्सव होता है, देवताओं का विवाह होता है इस त्यौहार में, और उत्सव की जो समाप्ति होती है भगवान विष्णु के अवतार की प्रतिमा को मंदिर में वापस लाने से होती है। बहुत बहुत आनंद आता है इस त्यौहार में। थेप्पो रंचव या थेप्पोस्तवम, ये त्यौहार जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, और सितंबर में मनाया जाता है अवनी मूलम, ये त्यौहार भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ जल्लीकट्टू ऐतिहासिक खेल है जो मदुरई में मनाए जाने वाले पोंगल त्यौहार का एक भाग होता है, और हजारों पर्यटक जल्लीकट्टू देखने और खेलने मदुरई आते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें आज हम रेडियो तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं मदुरई की। मदुरई में अगर आपने केले का बाजार नहीं देखा, नहीं घूमा तो कुछ नहीं घूमा। मदुरई में केले का बाजार है रुक्मणी पल्लयम। यहाँ पर लगभग 16 किस्म का केला मिलता है और सुबह जल्दी ही ताज़े केले कारखाने के आउटलेट से यहाँ लाए जाते हैं।

0: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
1: अच्छा जी
0: एक बहाना बन गया अच्छा
1: अच्छा

मेघमलाई ये जगह 1500 मीटर की ऊंचाई पर है मदुरई में, और गर्मी को मात देने के लिए, प्रकृति के बीच कुछ शांत समय बिताने के लिए बहुत ही खास जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और पता है, जंगल के बीच में ये जगह काली मिर्च, इलायची, दालचीनी की ताज़ा सुगंध से भरी रहती है। सोचिए, आप खड़े हैं इतने खुशनुमा माहौल में, इतने खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण में, हवा चल रही है, आपकी जुल्फ़ें आपके चेहरे पर आ रही हैं, और ये इलायची दालचीनी की खुशबू जो है आपको अपनी ओर बुला रही है, कितनी फ्रेश फीलिंग होगी ना, सोच के देखिए।

बहुत ही खूबसूरत है मदुरई और बहुत ही खूबसूरत है यहाँ की हर चीज़। अगर यहाँ पर आकर आपने सिल्क की साड़ियाँ, लकड़ी की नक्काशी का काम ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा। यहाँ पर खादी, कॉटन की चीज़ें, कपड़े, मूर्तियों की शॉपिंग, इन सब के बिना मदुरई की सैर जो है वो अधूरी है। और एक और ख़ास बात, यहाँ विलाचेरी पॉटरी विलेज है जिसे बर्तन बनाने के गांव के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो बिल्कुल सिंपल गांव जैसा है जैसे दूसरे गांव होते हैं ठेठ एकदम, लेकिन यहाँ पर ख़ास ये है कि बहुत ही खूबसूरत से बर्तनों को बनते हुए पूरे गाँव में जब आप अपने सामने देखेंगे अपनी आंखों से तो एक अलग तरह की फीलिंग होगी। गाइड्स भी मिलते हैं जो आपको इस गांव में लेकर जाते हैं और दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। कीला, कोयलकुड़ी और समनार की पहाड़ियाँ ये भी देख सकते हैं आप और बहुत कुछ खरीद कर ला सकते हैं। तो ये बताइए कि अब आप कब आ रहे हैं मदुरई।

इसी के साथ अब स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। प्रोग्राम घर आंगन 12:10 पर आप सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर सुनेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। भावना चलती, आप सुनिए समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरोट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

0: पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये चार चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आंगन।
1: श्रोताओं नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ जुड़ चुके हैं आप आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में। आज आपके स्वागत सत्कार में हैं हम, तो स्वीकारें मेरा यानी प्रतिभा का और
2: मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल के 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर और साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी आप सुन रहे हैं। तो अब वक्त है हमारे सेगमेंट आज के प्रश्न का। तो आज आपको बताना है उन प्यारी यादों के बारे में जब आपकी किसी ने मदद की हो।
1: बिल्कुल, आज का जो हमारा प्रश्न है, देखो मनीषा तुमने बता ही दिया है, हमारे श्रोता सुन रहे हैं और वो मेल करने के लिए तैयार भी हो गए होंगे। तो एक बार प्रश्न फिर से दोहरा देती हूँ कि जब आपकी किसी ने मदद की हो, क्योंकि ये मूवमेंट हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी आया ही होगा, है ना। ये क्षण हमारी जिंदगियों में आता ही है। तो आपके दिल से किसी का शुक्रिया कब किया, कैसे किया, इससे जुड़ी यादें आपको हमारे साथ साझा करनी है, किससे बताने हैं और अपनी यादों को भी आपने ताजा ही करना है।
2: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, यादों के गलियारे में जाकर खंगालिए, टटोलिए अपने उन पलों को, बांटिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी कहानी बन सकती है हमारे शो की मुस्कान। अपने जवाब हमें भेजिए fmgoldga@gmail.com पर और दूसरों को भी ऐसे खूबसूरत लम्हों के लिए सहभागी बनाइए।

0: जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे अभी तो जीलें फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। और देखिए, जीवन को जीने की जो उमंग है उसका इस गीत में कितना सुंदर जिक्र था। और साथियों, हमारा कार्यक्रम है आपका अपना घर आंगन, जिसमें हम हर बार आपको देते हैं एक प्रश्न जो जिंदगी के उन तमाम फलसफों से जुड़ा होता है जिसमें हम जिंदगी को और अच्छे से जीना सीखते हैं। तो उन्हीं फलसफों में आज एक फलसफा है उस बात का, जो हमारा प्रश्न है कि आपको ये बताना है कि आपकी मदद किसी ने कब की थी और उससे जुड़ी हुई आपकी खूबसूरत यादें बांटनी है। पहला संदेश भी आया है प्रतिभा, और ये नवीन भाटिया जी का आ चुका है, और ये अपनी यादों में 1999 के गलियारे में पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन दिनों डीटीसी की बस में वो आते जाते थे और उस समय कुछ पैसे उनके पॉकेट में थे और वो पॉकेट से बाहर निकल रहे थे जब वो बस में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान किसी सज्जन ने उन्हें बताया कि पैसे अंदर कर लीजिए आपकी जेब से। और जानते हो, नवीन जी को उस सज्जन का चेहरा आज तक याद है।
1: और बिल्कुल, देखो मनीषा, जब कोई किसी का भला करता है या उसकी मदद करता है तो हम उसके चेहरे को, उस शख्स को कभी भूल ही नहीं पाते। और देखो कितनी पुरानी बात इन्होंने याद की है, आज 1999 की बात ये बता रहे हैं। और देखिए, अच्छा कर्म आपको यादों में, दूसरों की यादों में संजो कर ही रखता है, जिंदा रखता है। बिल्कुल, है ना?
0: बिल्कुल। और उसी तरह प्रतिभा, आज का दिन भी ना एक अच्छी याद को संजोया हुआ है, और वो अच्छी याद है आज के दिन में एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसको पूरी दुनिया सेवा, संकल्प, क्षमा और साहस के साथ मानवतावाद के आयाम से जोड़कर देखती है, और पूरी दुनिया उन्हें नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है।
1: बिल्कुल,
0: समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिभा आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेल्सन मंडेला के नाम पे मनाते हैं।
1: और देखो, जो आज का हमारा सुविचार भी है वो भी उन्हीं के ही मानवतावादी विचारों से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे दुनिया को बदला जा सकता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज के दिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम याद कर रहे हैं दोस्तों। तो इस खास दिन के साथ आपको फिर से याद दिला दूं हमारे आज की प्रश्नोत्तरी के बारे में, और वो प्रश्न है इंसानियत से जुड़ा हुआ कि जब आपकी किसी ने मदद की तो आपको अपने अनुभव बताना है FM Gold GA@gmail.com पर।

0: मन मंदिर। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। और देखो मनीषा, मेल हमारे पास आ रही है, यानी कि हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि उनकी जो ये उत्सुकता है, जो उनके मेल भेजने का जो ये
1: जुड़ाव जो हमारे
0: दिखा रहा है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखो मेल आया है हिसार से, जिसमें राजू अग्रवाल, चरण दास, रेखा चौधरी वास ये लिख रहे हैं। चरण दास जी कहते हैं कि वो एक समय था कि वो बीमार थे और उनके खुद के पास पैसे थोड़े कम थे।
1: अच्छा।
0: लेकिन ऐसे में भी उन्होंने किसी जरूरतमंद बीमार को 50 रुपए देकर उसकी मदद की थी। और फिर 5 साल के बाद उन्होंने ये बताया कि उनका जो बेटा है वो सड़क हादसे में कहीं पर वो घायल हुआ, लेकिन सड़क हादसे का शिकार हुआ, लेकिन उसे जरा सी भी खरोच नहीं आई। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उस मदद का फल आपको कहीं ना कहीं मिलता है।
1: वो कहते हैं ना कि कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। मुश्किलें खुद ब खुद आसान इंसान की होती हैं। तो ये खूबसूरत जो संदेश हैं, इन बातों का ही हमें फलसफा बता रहे हैं। और देखिए एक और संदेश हमारे पास आया है महेश अग्रवाल जी का, प्रतिभा। उन्होंने नमस्कार कहा है। नमस्कार आपको महेश जी। वैसे तो बहुत से लोग कई बार मदद करते हैं और मैंने उनकी मदद की है, लेकिन 2 बार की बातें उन्हें याद हैं जिन्हें वो भूल नहीं सकते और

0: उन्होंने कहा है, पहली बार बहादुरगढ़ आया था 1993 की बात है। मैंने पढ़ाई करने के बाद नहीं, मैं पैदल दुकान दुकान जाकर सप्लाई का काम करता था, और तब एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि मेरे पास एक साइकिल नहीं है, एक रखी है साइकिल, और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तुम दे देना ये साइकिल, ले जाओ। याद है वो दिन उनको आज भी, कि इस तरीके से किसी ने उनकी मदद की थी। और उसी तरह 2002 में अचानक से उनकी जॉब छूट गई थी और उनके पास कोई भी काम नहीं था और पैसे भी नहीं थे। ऐसे में उनके एक दोस्त ने उन्हें 1,000 रुपये दिए थे दुकान के काम के लिए, और बस वो मदद उन्हें याद है आज तक। और देखिए, ऐसी बातें ही जो होती हैं जीवन में ना, वो याद रह जाती हैं प्रतिभा, और
1: और
0: अच्छा
1: देखो,
0: लगता है इन्हें याद
1: बिल्कुल
0: करके।
1: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि ऐसी जो मदद होती है और वो जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं वो कभी भुलाए नहीं भूलते। और देखो, ऐसे ही एक और मैसेज आया है कबीर कश्यप जी का। वो कह रहे हैं कि मेरा नाम ललित है ना, वो किसी उससे किया होगा उन्होंने, कि वो पठानकोट पंजाब से हैं। और उन्होंने लिखा है कि जब एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उनका पर्स चोरी हो गया बस में, और उनके पास किराए के भी पैसे नहीं थे। तो उस मुसीबत की घड़ी में कोई मिस्टर पवन शर्मा जी आए उनकी मदद करने के लिए। उन्होंने उनकी मदद की और तब से ही वो कहते हैं कि मतलब कि दुनिया में नहीं, आज वो दुनिया में नहीं है जिन्होंने उनकी मदद की थी। कि मैं उनके अपने पैसे कह रहे हैं कि कैसे वापस करूं। देखिए, कभी कभी हम चाहते हैं कि हम जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है हम वापस उन तक पहुंचाएं, लेकिन अगर आपके मन में आज ये इच्छा है कि आप उस उपकार का बदला चुकाना चाहते हैं तो आप भी किसी की मदद कर सकते हैं, क्यों?
0: बिल्कुल सही उपाय बताया तुमने प्रतिभा। और देखिए, जो प्रकृति है ना, आप प्रकृति के कण कण में अपने भाव बिखेर सकते हैं, अपनी सद्भावनाएं बिखेर सकते हैं दोस्तों। और आपको कभी मन में ये मलाल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मन में जो सुंदर भावनाएं हैं वो अपने आप प्रकृति में प्रेषित होती हैं और आपकी खुशियों को बरकरार रखती हैं।

0: जी हाँ, जीने के बहाने देने वाले ये छोटे छोटे पल और इन्हीं में बसा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे दहलीज फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। और आपको याद दिला दें कि आज हमारा जो प्रश्न है वो आपके लिए है, जब आपकी किसी ने मदद की तो आपको अपनी भावनाएं अपनी कहानी साझा करनी है हमारे साथ fmgoldga@gmail.com पर। और दोस्तों, चूंकि बात है ख्यालों की और ऐसी यादों की जहाँ पे किसी ने आपकी मदद की, आपके मन में कैसे भाव उपजे, तो अभी हम भाव और भावनाओं की बात करते हैं कवि की उन कल्पनाओं के बारे में जहाँ सभी के ख्याल नहीं पहुँच पाते। तभी तो कहा जाता है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।
1: बिल्कुल ठीक कहा मनीषा तुमने। देखो, कवि अपनी कल्पनाओं और अपने भावों को कविता की शक्ल में संजोता है और जब वो कविता सुनी जाती है और पढ़ी जाती है तो वो अमर हो जाती है, है ना?
0: और इसी दिशा में ना प्रतिभा शिक्षा मंत्रालय की एक वो है जो मैं बताना चाहती हूँ, एक कवायद है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कदम उठाकर राष्ट्रीय कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया है।
1: और देखो, इसका जो उद्देश्य है, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में साहित्य, कविता और प्रभावी वाचन के प्रति उनमें रुचि विकसित करना है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय काव्य उत्सव 2026 का आयोजन ना 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए किया गया है। और जानते हैं 31 जुलाई तक आप इसमें अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
1: और आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय पर उपलब्ध चयनित सूची में से किसी एक कविता का चयन करना होगा और इसके बाद 60 से 90 सेकंड का स्पष्ट ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर उसे अपने अथवा अभिभावकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करना होगा।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है प्रतिभा। और देखो, छात्रों को जो उनकी कविताएं चुनी जाएंगी उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपना मतलब ऐसा रिकॉर्ड करना जिसमें उनका चेहरा दिखाई दे और उनका जो बैकग्राउंड है उस पे किसी भी तरीके का किसी म्यूजिक का वो प्रयोग ना करें ताकि उनका वो वीडियो निरस्त ना हो जाए। और प्रतिभागियों को वीडियो साझा करते समय राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के आधिकारिक हैंडल को टैग करने के साथ हैशटैग राष्ट्रीय काव्य उत्सव हैशटैग का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
1: और अंत में प्रतियोगिता की वेबसाइट पर वीडियो का लिंक अपलोड कर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करना होगा। इस तरीके से पंजीकरण हो जाएगा पूरा और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रेष्ठ 10 प्रतिभागियों को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। प्रतियोगिता में चयनित जो सर्वश्रेष्ठ 10 विजेताओं को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के मंच पर सम्मानित किया जाएगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी प्रतिभागियों को शिक्षा मंत्रालय की ओर से भागीदारी प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।
0: और राष्ट्रीय काव्य उत्सव का जो उद्देश्य है दोस्तों वो बहुत ज़रूरी है आज के समय को देखते हुए कि विद्यार्थियों में कविताओं के प्रति, मौलिकता के प्रति रुचि हो, पढ़ने की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले, उनकी अभिव्यक्ति, उनका आत्मविश्वास और उनकी रचना

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी चालाक।
1: जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं और प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि हमारी आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तर

0: तर्क में जो उन्होंने उत्तर दिया है उसे शामिल किया जाए। और इसी संबंध में हमारे पास जो एक मेल है बहुत प्यारा सा, ये है गौरी शंकर वर्मा जी का। इन्होंने हम दोनों को राम राम कहा है जी, आपको भी राम राम। और अपनी एक याद बताते हुए वो हमें लिखते हैं कि 2003 सितंबर के समय में जब वो घर में घर वाली मतलब अपनी वाइफ के साथ स्कूटर पर कहीं जा रहे थे, ऐसे में गाड़ी चलाते वक्त किसी ने उन्हें टक्कर मार दी और दोनों के सिर में गहरी चोट लगी। उनकी वाइफ को होश तो आ गया था लेकिन वो कोमा में चले गए थे और 1.5 महीने के बाद उन्हें होश आया। वहाँ पर उन्हें जब इस तरीके की स्थिति से उबारते हुए पकड़कर जो लोग लाए थे उसमें एक पति पत्नी और उनका बच्चा साथ में था, उन्होंने अपनी गाड़ी में उन्हें डाला, अस्पताल ले गए और उन्हें पता भी नहीं था गौरी शंकर जी को क्योंकि वो तो बेहोश थे। तो वो आज भी याद करते हैं उन अच्छे इंसानों को कि वो कौन थे। उन्हें पछतावा है इस बात का कि मुझे उनकी जानकारी नहीं मिली, मैं उन्हें ढूंढा, मुझे पता नहीं चला, जिन्होंने मेरी मदद की थी मैं उनको धन्यवाद कह सकूं। और वो कहते हैं कि परमात्मा उन लोगों की मदद करें, उन्हें शक्ति दें और उनकी सुरक्षा करें। कितनी खूबसूरत भावना है प्रतिभा।
1: बिल्कुल ठीक कहा मनीषा। देखो कुछ लोग फरिश्ते की तरह आते हैं और वो मदद करके चले जाते हैं, और गौरी शंकर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और देखो एक और मेल हमारे पास है जो आई है शांति नगर सोनीपत से, और लिखने वाले हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी। वो कहते हैं कि जीवन में माता पिता से अधिक और निस्वार्थ मदद और कोई नहीं कर सकता। देखो कितनी सही बात कही है। वाकई जो हमारे माता पिता होते हैं वो दिन रात हर समय हमारी मदद के लिए, हमारे साथ के लिए, हमारे साथ में खड़े रहते हैं। और वो आगे ये कहते हैं कि लोग अक्सर सुंदर चेहरे भूल जाते हैं पर किसी के द्वारा दिया गया साथ कभी नहीं भूलते। वाकई हम किसी की मदद को कभी नहीं भुला सकते। और वो साथ ही साथ मनीषा देखो वो हमें आज के दिन की और जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, सुखद हो। तो आपका भी दिन, हमारे सभी श्रोताओं का दिन, जीवन खुशियों से भरा हो, सुखद हो, शुभ हो।
0: बिल्कुल। और इसी भावना के साथ हम हमेशा याद करते हैं या याद रह जाते हैं वो लोग जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है। और इसी फलसफे को याद करते हुए हमने आज का प्रश्न आपके लिए रखा है कि जब आपकी किसी ने मदद की, आपको बताना है fmgoldga@gmail.com पर अपनी कहानी, अपनी यादें, अपनी स्मृतियां हमारे साथ साझा करते हुए। और अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव में बात करते हैं मदद करने वाले उन साथियों की जो चुपचाप मदद करते हैं। जानते हैं वो कौन है? सुनिए, वृक्ष वो कविताएं हैं जिन्हें धरती आकाश पर कलम बनाकर लिखती है। वृक्ष की छांव एक ऐसा एहसास दोस्तों जिसने हर जीवन को छुआ होगा। तो एक जानकारी इन हरियाली मित्रों से जुड़ी हुई आज है आपके लिए।
1: भाई देखो, ऑक्सीजन देना, जलवायु को हमारे अनुकूल रखना, जल और मिट्टी को संरक्षित रखना, उन्हें उपजाऊ और साफ शुद्ध बनाना और वन्य जीवन को आश्रय देना है ना। हमें औषधि और भोजन देना और सबसे अहम जो गर्म होती पृथ्वी को शीतल करना और वर्षा को निमंत्रण भी देना।
0: बिल्कुल, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले हमारे ये दोस्त परिवार के मुखिया की तरह दोस्तों हमारी खुशी और सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, है ना?
1: वो भी बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, हमें कितना कुछ देते हैं ना ये वृक्ष। तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है इनके प्रति। इसलिए इन हरियाली मित्रों की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रीन हेल्पलाइन शुरू की है जिसका नंबर है 1800118600। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पेड़ों की अवैध कटाई रोकने में आप अपना योगदान दे सकते हैं।
0: प्रतिभा, ये नंबर हम अपने दोस्तों को एक बार फिर बता दें, नंबर नोट कर लीजिए 1800118600। और हाँ, दिल्ली ऐप के जरिए पर्यावरण संरक्षण से जुड़कर वृक्षों की अवैध कटाई की ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं आप।
1: बिल्कुल। और देखो, वृक्षों को लगाना ही नहीं बल्कि उन्हें संजोना भी समय की मांग है, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम तो होना ही चाहिए ताकि हमारा भी नाम सदियां गुनगुनाए
0: और झूमती लहराती डालियां जब जब बल खाएं।

0: लव स्टोरी, इस फिल्म से आपने सुना अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को।
1: और देखो मनीषा, वो कहते हैं ना कि सपनों की उड़ान ऊंची हो तो आसमान छूना बेहद आसान होता है। जरूरत होती है एक संकल्प, इच्छा शक्ति, अनुशासन और साथ ही साथ कड़ी मेहनत की।
0: और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है प्रतिभा ओडिशा की बालांगीर जिले की रहने वाली पायल नाग ने।
1: और देखो उनकी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास ने उन्हें दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली चारों अंगों से वंचित पैरा एथलीट बना दिया है।
0: क्योंकि बचपन में प्रतिभा बिजली का करंट उनको लगा था और इस दुर्घटना में उनके अपने दोनों हाथ और पैर खराब हो गए थे। इसके बावजूद वो हार नहीं मानी और उन्होंने, जानती हो, पैरा आर्चरी को अपना लक्ष्य बना लिया।
1: देखो उन्होंने अपने कोच कुलदीप वेदवान के मार्गदर्शन में विशेष तकनीक और अनुकूलित उपकरण की मदद से तीरंदाजी सीखी।
0: और अप्रैल 2026 में दोस्तों बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में महिला कंपाउंड वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने विश्व चैंपियन शीतल देवी को हराकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया।
1: और देखो अब पायल नाग भविष्य में पैरा ओलंपिक पदक जीतने का लक्ष्य रखती हैं। दोस्तों वाकई पायल नाग की कहानी दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की

0: देखिए, जीने की तमन्ना और मरने के इरादे के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है और हमारी प्रश्नोत्तरी जब आपकी किसी ने मदद की, इसके लिए हमारे पास संदेश आया है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता का। और उन्होंने अपनी यादें साझा करते हुए बताया है कि 1992 में उनका MA फाइनल का रिजल्ट आया था। तकनीकी खामी की वजह से डिग्री लेने के लिए 200 किलोमीटर दूर उन्हें झांसी जाना पड़ा था और वहां पे जो क्लर्क है वो 2-3 दिनों से उनके काम को टाल रहा था। निराशा के बीच जब रजिस्ट्रार के चपरासी ने उनसे कहा कि आप एक बार जाकर साहब को अपनी समस्या जरूर बता दें, तब उन्होंने रजिस्ट्रार से बात की और उनके बात करते ही वे स्वयं अपनी सीट से उठकर संबंधित बाबू के पास गए और उसे डांटा और उसी दिन ही उनकी डिग्री उन्हें मिल गई। ऐसे परोपकारी अफसर को वो जीवन पर्यंत याद रखे हुए हैं।
1: और देखो, एक मेल और है डी राजेश्वर राव जी का, वो कहते हैं कि हमें पेड़ों को प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल उनका ध्यान करना चाहिए, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। पानी दो, उन्हें हग करो और किसी को उन पेड़ों को काटने मत दो।

0: गाइड, ये थी फिल्म जिसका आपने गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की। और देखो मनीषा, बात अगर बाजार की करें तो बाजार उपभोक्ता और उत्पादन की एक सफल साझेदारी से चलता है। आज बाजार में तरह तरह के उत्पाद मिलते हैं जिसे हम उपभोक्ता जरूरत के अनुसार खरीदते हैं,
1: पर एक सफल उपभोक्ता वही है जो लुभावने विज्ञापनों से दूर रहता है और समझदारी से खरीदारी करता है।
0: तो आइए आज बात करते हैं कि कैसे आप कुछ बातों का ध्यान रखकर एक अच्छे उपभोक्ता यानी एक अच्छे कंज्यूमर बन सकते हैं।
1: कोई भी वस्तु खरीदने से पहले गुणवत्ता, कीमत और उपयोगिता की जानकारी लें, हमेशा बिल और रसीद जरूर लें।
0: बिल्कुल, और देखो उत्पादन का जो उत्पाद है उस पर आप तिथि यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें और उस पर गुणवत्ता चिन्ह देखना बिल्कुल ना भूलें।
1: तो इन छोटी छोटी बातों के साथ खरीदारी करें और खुश रहें।

0: दोस्तों, ये साधना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में गीत आप सुन रहे हैं और घड़ी की सुइयां जाने का इशारा कर रही हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस हमारा सफर यहीं तक। आप अपना ख्याल रखें, मनीषा और प्रतिभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आंगन
1: आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस

0: की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नीति को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा

बजकर 11 मिनट और 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ समय है कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल का और आज आपके साथ हूं मैं आशीष नमस्कार। ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी कलाकारी से न केवल लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई बल्कि अमर हो गए। बेमिसाल की एक ऐसी पराकाष्ठा, एक ऐसी लकीर उन्होंने खींच दी कि लोग कहने लगे कि इनके जैसा कोई नहीं। एक ऐसे ही महान कलाकार की आज हम बात करेंगे, महान नायक की बात करेंगे, जिनकी फैन फॉलोइंग के बारे में अगर ये कहा जाए कि स्टारडम और सुपरस्टार का खिताब उन्हीं से शुरू हुआ तो कहना गलत नहीं होगा। जिस रास्ते से वो गुजरते थे, लोग घंटों इंतजार में केवल एक झलक पाने के लिए उस रास्ते को निहारते रहते थे। उनकी फोटो को लोग सीने से लगाकर यानी घर में रखते थे और

तो जब ये 42 में इनका जन्म हुआ तो 1962 में एक नाटक इन्होंने किया, अंधायुग। मूक सैनिक की इन्होंने एक भूमिका निभाई और उसके बाद लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि उस नाटक को देखने के बाद जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने जल्द ही फिल्मों में आने का इनको सुझाव दे डाला।

जो कि एक अनुबंध किया था, एक करार किया था, एक वादा किया था कि जो भी जीतेगा फाइनलिस्ट उसको हम अपने यहां पर दो फिल्मों में ऑफर देंगे, दो फिल्मों में चांस देंगे। बस फिर क्या था, अगले ही साल फिल्म आई, चेतन आनंद की निर्देशित फिल्म आखिरी खत, राजेश खन्ना की पहली फिल्म। और

आराधना और दो रास्ते की अपार बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद फिल्में आईं बंधन, डोली, इत्तफाक और ये सभी फिल्में सुपरहिट रहीं और इसके बाद राजेश खन्ना बन गए सुपरस्टार। 70 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना चरम पर थे, एक्सट्रीम। उन्होंने 70 और 71 में बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखा और उनकी फिल्मों में शामिल रहीं द ट्रेन,

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये अगला ही साल था जब दुलाल गुहा की ये फिल्म दुश्मन आई, जिसका आप अभी गीत सुन रहे थे। दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और ब्लॉकबस्टर फिल्म हो गई और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। दुश्मन की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाद में इसे तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में भी रीमेक किया गया। लेकिन साहब, फिल्म आनंद

0: निजी तौर पर तैयार कर द विक्रम 1 की कामयाबी पर स्काई रूट्स एरोस्पेस की टीम को टेलीफोन के जरिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह तारीखी कामयाबी मुल्क के नौजवानों को आगे बढ़ने और इख्तरा में अपने रोल अदा करने के लिए हौसला अफजाई करेगी। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि स्काई रूट्स की टीम में ज्यादातर नौजवान माहिरीन शामिल हैं। उन्होंने विक्रम 1 की टीम को मुलाकात के लिए मदु भी किया।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि यह कामयाबी मुल्क के बेशुमार नौजवानों को बड़े ख्वाब देखने और बेखौफ होकर नई ईजादात करने की तरगीब देगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी भारत के पहले निजी तौर पर तैयार करदा रॉकेट विक्रम 1 की कामयाब लॉन्च पर स्काई रूट की टीम को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया

0: और उत्तर प्रदेश के दरमियान रेल राब्ता बढ़ जाने का एक नया दौर शुरू हो गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए रेलवे के वजीर जनाब वैष्णो ने कहा कि रेलगाड़ी हफ्ते में दो बार चला करेगी और उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान भी राबते की सहूलत फराहम होगी।
1: ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे।
0: अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ से मुतालिक़ इदारे ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में फैली हुई बेचैनी पर तशवीश का इजहार

0: पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
4: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
1: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा

प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त

0: 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।

0: गुलदाउदी की व्यावसायिक खेती की तकनीक क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ फूल उगा लेना भर ही आपको लाभ पहुंचाएगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जब आप तकनीक का सहारा लेते हैं, व्यवसायिक रूप से खेती करते हैं और समय समय पर जो भी आवश्यक काम है अपनी खेती में अपने फूलों के लिए, जब वो आप वैज्ञानिक तकनीक से करते हैं तो आपको अधिक लाभ होता है और अधिक जो है आपकी उपज होती है।
1: और वैज्ञानिक तरीके से कैसे आप गुलदावदी को उगा सकते हैं, क्या क्या इसमें समस्या आती हैं, क्या क्या उसका समाधान कर सकते हैं, कैसे इससे अधिक लाभ ले सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे बीच में स्टूडियो में उपस्थित हैं इस समय डॉक्टर अजय कुमार तिवारी जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण विज्ञान विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन कोमल जी हमारे जो श्रोता हैं उनके जहन में भी कुछ सवाल आएंगे इसके बारे में, तो हम उनको नंबर बता दें जिस पर वो सीधे विशेषज्ञ से जुड़ सके।

0: बालू में लगा देंगे तो करीब 20 से 25 दिन बाद इसमें रूटिंग हो जाती है। और किसान भाइयों, जब इसमें रूटिंग हो गई, फिर आपको अपने खेत की तैयारी करनी है। और खेत की तैयारी करने के लिए क्या करना है कि मान लीजिए आप एक हेक्टेयर का लैंड ले रहे हैं, तो एक हेक्टेयर में 20 से 25 टन आप गोबर की खाद डालेंगे और उसके बाद उसको अच्छी तरह से आप खेत के को गुड़ाई करवा देंगे,
1: तैयार कर देंगे
0: अच्छी तरह से। फिर 30x30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप पौधों का रोपण कर देंगे। ये 30x30 सेंटीमीटर की जो दूरी है, ये स्प्रे टाइप के लिए है। अगर आप स्टैंडर्ड टाइप का मान लीजिए खेत में लगाना चाह रहे हैं, तो दूरी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, फिर 30x45 सेंटीमीटर आपको करना पड़ेगा।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, इससे पहले ये तो आपने रोपाई की बात बताई है, इस समय जैसे दिल्ली के आसपास के इलाकों में तो इसकी सैपलिंग तैयार की जाएंगी।
0: हाँ जी।
1: तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि पौध किस तरह से तैयार कर सकते हैं।
0: किसान भाइयों, अगर आपको इसका पौध तैयार करना है, एक्चुअल में गुलदाउदी का जो पौध तैयार करना है, ये खुद अपने आप में एक व्यवसाय है। जो नर्सरी के लोग केवल पौध तैयार करके ही अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं, तो अगर आपको पौध तैयार करना है तो अपने जो उत्तर भारत में सबसे जो उचित टाइम है वो आपका है अप्रैल लास्ट से लेकर के जून फर्स्ट वीक तक
2: जी।
0: क्योंकि इस समय का जो मौसम होता है वो पौध तैयार करने के लिए सबसे अच्छा होता है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर की कल्ले आ रहे हैं उसका ऊपर से 5 या 7 सेंटीमीटर ले लेंगे, फिर जहाँ से आपने काटा है उस पर वी सेप लगाएंगे। और वी सेप लगा करके आप क्या करेंगे, कोई भी फंजीसाइड, चाहे जिनकोप ले लें, मैंकोजेप ले लें, कोई भी फंजीसाइड, प्लस आप ये जो रूटिंग हार्मोन्स होता है, अगर आपको आईबीए मिल जा रहा है, बहुत
1: रूटेक्स वगैरह है,
0: रूटेक्स, हाँ, अगर रूटेक्स में भी आईबीए ही होता है, तो इसको लगा करके जब आप लगाएं उसमें बालू में लगा देंगे तो, और नमी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो 20 से 25 दिन में आपका ये जड़ निकल जाएगा
2: जी।
0: तो
1: जब उसे फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं,
0: फिर आप उसको ट्रांसप्लांट करेंगे जुलाई तक, मतलब जुलाई शुरू होते होते आपका ये पौध तैयार हो जाएगा। तब तक हमारे उत्तर भारत में बारिश भी आ जाती है और मौसम भी काफी ठंडा हो जाता है, फिर हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
2: यानी कि ये जो समय है ये ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल सही,
0: हाँ, ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए एकदम उपयुक्त समय है।
1: अच्छा, इसमें अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो क्या खाद कितना देना पड़ेगा?
0: किसान भाइयों, अगर आपको 20 से 25 टन तो आपने गोबर की खाद डाल दी, ये बेसल डोजिंग के रूप में डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, 125 किलोग्राम नत्रजन, 120 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास इसमें डाला जाता है एक हेक्टेयर के लिए। अब ये खाद डालना कैसे है, जब आप प्लांटिंग करने जा रहे हैं तो जो नत्रजन फर्टिलाइजर है उसका आधा मात्रा, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा बेसल डोज के रूप में आपको खेत में डाल देना है। जो आपका आधा मात्रा नाइट्रोजन बचा हुआ है वो जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाए तो उसका 1/3, और फिर 30-30 दिन के अंतराल पे आपको 1/3 1/3 करके पूरा नत्रजन डाल देना है। इस तरह से इसमें उर्वरक डालना है
2: जी।
1: अच्छा, तो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी उससे?
0: हाँ, इससे वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी
2: जी। डॉक्टर साहब, तकनीक जो है वो खेती को आसान बनाती है और आजकल हम बहुत ज्यादा जो है ये प्रेरित करते हैं किसानों को भी कि वो तकनीक का जो है वो सहारा ले, जिससे कि उनकी खेती जो है ज्यादा अच्छी हो, उपज अच्छी हो। तो जब हम गुलदाउदी की बात करते हैं तो इसमें व्यावसायिक खेती अगर हमारे किसान करना चाहते हैं तो उसमें ऐसी कौन कौन सी तकनीकें हैं जिनसे अपना करके वो अपनी लागत भी कम कर सकते हैं और मुनाफा भी ज्यादा कमा सकते हैं, जिससे कि ज्यादा अच्छी उनकी फसल हो?
0: किसान भाइयों, अगर मान लीजिए कि आपको व्यावसायिक और ज्यादा आमदनी कमाना है पर यूनिट एरिया पे, तो आप इसमें फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो आता है उसको यूज करिए, और एग्रो एस्पोरोजिलम आता है उसको यूज करिए। ये 2 किलोग्राम आपका एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, दोनों एस्पोरोजिलम और फास्फोबैक्टीरिया। ये क्या करता है कि जमीन में जो फास्फोरस होता है ना उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, और फास्फोरस, जैसा कि हमें पता है कि फास्फोरस पौधों में की गुणता को बढ़ाता है, उसको हिस्ट पुष्ट बनाता है, तो फास्फोरस

0: तो भी बचाव हो जाएगा।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, ये जानना चाह रहे थे हम कि बारिश तो होती है, सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें?
1: किसान भाइयों, जो हमारी गुलदाउदी की फसल है ये जल भराव के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, तो जल निकासी का आपको प्रॉपर वो करना पड़ेगा, इसका व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अगर कहीं आप ड्रिप सिस्टम में गुलदाउदी लगा रहे हैं तो एक तो जैसे आज कल हमारे देश में जल की जो है मात्रा बहुत सीमित है, हमारे देश के पूरे विश्व में जल की मात्रा सीमित है, तो ड्रिप इरिगेशन अगर आप सिस्टम से करेंगे तो करीब करीब 40% तक आपका पानी का बचत हो जाएगा। ड्रिप सिस्टम से इरिगेशन करें तो बहुत अच्छा होता है। अगर ड्रिप नहीं कर पा रहे हैं तो हम फ्लड करें, लेकिन फ्लड को भी नियंत्रित फ्लड करें, ओवर वाटरिंग हमेशा नुकसान करेगा।
0: बल्कि ज्यादा बारिश में तो पानी और निकालने की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है।
1: जी
0: हाँ, तो रुख साहब एक और बात जानना चाहेंगे, पौधों के अंदर जो पिंचिंग है या डिसबडिंग है इसका क्या महत्व है?
1: किसान भाइयों, अगर आप स्टैंडर्ड टाइप का पौधा तैयार करना चाहते हैं, यानी कि एक गुलदाउदी पे बड़ा खूब बड़ा सा एक फूल लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि साइड्स के जितने भी बड्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो जो साइड के बड्स को हटाते हैं उस प्रक्रिया को डिसबडिंग कहते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि हम एक फूल को चलाना है और उसका साइज खूब बड़ा करना है। दूसरा एक होता है इसका उल्टा पिंचिंग, जब आप एक फूल पे एक पेड़ पे एक से ज़्यादा फूल पैदा करना चाहते हैं तो जो बीच की कलिका होती है उसको तोड़ दिया जाता है। तो जो बीच की कलिका तोड़ते हैं तो एपिकल डोमिनेंस ब्रेक होने की वजह से साइड्स की कलिकाएं बढ़ने लगती हैं और फिर एक पेड़ पे खूब ढेर सारे फूल आना शुरू हो जाते हैं, वो उस प्रक्रिया को हम पिंचिंग कहते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं
0: ज्यादा ब्रांचेस बनाने के लिए
1: पिंचिंग करेंगे
0: जरूरी है।
1: हाँ जी।
0: अच्छा, जब बारिश होती है उमस भी रहती है तो क्या इसमें कुछ रोग और बीमारियां भी आती हैं?
1: किसान भाइयों, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होने पे इसमें बीमारी आने का खतरा रहता है, तो ऐसे
0: डॉक्टर साहब एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं, उन्हें सुन लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले अपना परिचय दीजिए, वैसे आवाज तो जानी पहचानी लग रही है।
2: जी भाई, आपका निरंजन जी, मैं नाम भूल गया पूरा, वह धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूं।
0: धर्मवीर जी नियमित श्रोता है हमारे।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार धर्मवीर जी, नमस्कार।
2: कभी हमारा जाने का मौका मिलेगा, वैसे हम पूछा जाते हैं तो आपसे जरूर मिलेंगे। और हमें गुलदाउदी में, क्योंकि हमारे पास सारे गमले लगे हैं, हमने सब्जी भी और फूलों भी लगा रखे हैं, तो गुलदाउदी जो आप बता रहे हैं हमें गमले में बनानी हो, तो जैसे गुलदाउदी सुना है कि फुटबॉल की तरह फूल बन जाता है एक ही जगह, तो उसके लिए हमें विधि बताएं इससे हमें। और दूसरा एक चीज और पूछना है, अगर आप बता पाए डॉक्टर, हमें बोनसाई सीखने के लिए जानकारी लेनी है, क्योंकि जगह कम है लोगों के दिल्ली शहर में, बोनसाई का बनाने का गमले का तरीका कहाँ सीखा जा सकता है, कोई एक्सपर्ट हो तो उनके बारे में बताएं। दो सवाल है, धन्यवाद।
1: पहले है आपको वो फुटबॉल की तरह से गुलदाउदी लगाना है
3: जी।
1: तो उसकी एक प्रजाति है स्नोबॉल, प्रजातियां जो भी हैं स्नोबॉल वाइट स्नोबॉल येलो करके जो प्रजातियां हैं ये सिंगल होती हैं, एक पेड़ पे एक ही आती है और काफ़ी बड़ी आती है। अब केवल प्रजाति लगाने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए फिर आपको डिसबर्डिंग करना होगा और फिर इसको आप ट्रेन करेंगे तो फिर आप एक ही पौधे पे बड़ा सा फूल प्राप्त कर सकते हैं
3: जी।
0: और जहाँ तक ये बोनसाई की बात कर रहे हैं तो गुलदाउदी तो बोनसाई नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो तो जिसमें थोड़ा हार्ड होता है जैसे बरगद है आपका, इस तरीके के पौधे की बनेगी जो।
1: हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और बोनसाई के जो ट्रेनिंग का सवाल है ना, तो आप हमारे विभागाध्यक्ष को लिख करके और ट्रेनिंग हमारे यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है
3: जी। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि गुलदाउदी की व्यावसायिक खेती की तकनीक कौन कौन सी हो सकती है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम में और भी बातचीत होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
0: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: कार्यक्रम किसान की बात में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि गुलदाउदी की व्यावसायिक खेती की तकनीक क्या क्या हो सकती है और कैसे आप इन सभी का फायदा उठा सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आप ले सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार तिवारी। आप प्रधान वैज्ञानिक है पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
8: हाँ रुक साहब, फोन आ गया था, हम बात कर रहे थे रोग और कीटों की।
9: हाँ जी, अगर मौसम आपका बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, तो जो पादप जनित रोग हैं उनके आने के ज़्यादा संभावना होती है। उसमें एक सबसे प्रमुख रोग जो है वो ये

0: बात कर रहे थे रोग और कीटों की।
1: हाँ जी, अगर मौसम आपका बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, तो जो पादप जनित रोग हैं उनके आने के ज़्यादा संभावना होती है। उसमें एक सबसे प्रमुख रोग जो है वो ये है कि पत्तियों पे आपको सफ़ेद चूर्ण नज़र आएंगे। किसान भाइयों, अगर ऐसा आपका नज़र आ रहा है तो आपको मैंकोजेब का स्प्रे करना है, 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से उसका स्प्रे करना है, उससे ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। और वैसे जो सबसे प्रमुख बीमारी आज की डेट में हमारे उत्तर भारत में जो जिससे हमारे गुलदाउदी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है वो फ्यूजेरियम विल्ट है। किसान भाइयों, फ्यूजेरियम विल्ट का आज तक कोई बहुत उचित इलाज नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप जो फसल रोटेशन है उसको अपनाएं, उससे काफ़ी हद तक इसको नियंत्रित कर लेंगे। तो दो रोग, एक तो आपका हो गया फसल चूर्णित, दूसरा फ्यूजेरियम, ये प्रमुख रोग है। कीट में एक कीट आता है, पड़ता है इसमें, जो जाली बनाता है पौधे पे, तो अगर वो जाली बना रहा है तो आपको इमिडाक्लोरोप्रिड डालना है
2: जी।
1: और अगर आपको नंगी आंखों से न दिखने वाला एक कीड़ा सा दिख रहा है और पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो भी इमिडाक्लोरोप्रिड डालेंगे तो नियंत्रित हो जाएगा
2: जी। डॉक्टर साहब, फूलों की गुणवत्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी से ही जो है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो है वो मुनाफा मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। तो जब हम इसकी गुणवत्ता की बात करते हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी कटाई कब करनी चाहिए और कटाई के बाद जो है इसके रखरखाव में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि पैकिंग में क्या क्या आप ध्यान रखने वाली बातें हो सकती हैं।
1: अब अगर इसके कटाई की बात करें तो इसकी कटाई का दो मकसद होता है, एक होता है डंडी सहित, दूसरा होता है डंडी रहित। तो जब हम डंडी सहित फूल को काटते हैं तो उसको हम कट फ्लावर कहते हैं, और जब हम डंडी रहित काटते हैं तो उसको हम लूज फ्लावर कहते हैं
2: जी।
1: तो दोनों के रख वो पश्च उत्पादन जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है, दोनों का जो स्टेज होता है हार्वेस्टिंग का वो भी अलग होता है। मान लेते हैं कि हम लोग जो है वो केवल फूल के लिए डंडी रहित लूज फ्लावर है उसके लिए कर रहे हैं, तो अगर उसके लिए हमें इसकी तुड़ाई करनी है तो करीब करीब 2/3 जो हिस्सा है फूल का जब खुल जाए तब हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, और हार्वेस्ट करने के बाद हमें गीला जो गनी बैग है उसमें भर के और फिर हमें लोकल मार्केट में उसको भेज देना चाहिए। दूसरी स्थिति आती है कि हमें कट फ्लावर के लिए हार्वेस्ट उसको हार्वेस्ट करना है, तो जब कट फ्लावर के लिए हार्वेस्ट करना होता है तो 1/3 ही ओपन हो, मतलब कि नीचे का जो पेटल सेपल्स है वो केवल ओपन हो रहा है, तभी हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ भी लंबी होती है। उसमें डंडा होता है तो डंडे की वजह से उसमें खाद्य पदार्थ होता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है, तो अगर आप उसको बर्ड स्टेज में भी हार्वेस्ट करेंगे तो भी वो चल जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन में आप के लिए आपके पास
2: थोड़ा समय लगता है,
1: वो समय आपको मिल जाएगा। और अगर ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो उसके लिए किसान भाइयों इसके न्यूट्रिशन का ध्यान देना पड़ेगा, इसमें रोग ना लगे उसका सारे का ध्यान देना पड़ेगा। गुणवत्ता जो है वो सामूहिक तत्व है, वो एक चीज पे नियंत्रित नहीं होता, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा उसके लिए।
0: इसमें आपने जिक्र किया कि ट्रांसपोर्ट का भी समय लगता है, तो सही समय क्या है तुड़ाई का और तरीका सही क्या है?
1: अगर आप डंडी सहित फूल तोड़ रहे हैं जिसको कट फ्लावर कहते हैं।

0: के भेज दीजिए। लेकिन अगर आप लूज फ्लावर के लिए कर रहे हैं, मंदिरों में चढ़ाने के लिए कर रहे हैं, माला बनाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसको 2/3 भाग फूल का खिल जाना चाहिए, तभी आप तोड़ेंगे।
1: तो ये एक पेरिसेबल चीज है, इसके भंडारण में क्या ध्यान रखें?
0: किसान भाई, यूं ये तो सच है कि फूल तो फूल तभी है जब ये बिक गया, नहीं तो ये धूल है
2: जी।
0: तो इसके लिए हमें, इसके भंडारण आपको करना है तो हमेशा मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है, आर्द्रता मेंटेन करके रखना है, और थोड़ा सा अगर कार्डबोर्ड या हार्ड चीज आप के साथ इसको पैक करेंगे तभी ये चल पाएगा। और इसकी कटाई कोशिश करें तब आप काटने को, जब आपका बाकी आपका ट्रांसपोर्टेशन का सारी चीज़ें पक्की हो जाएं, बाजार आपका वो हो जाए, तभी आप करें। पहले फूल काट करके फिर ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए और दूसरी व्यवस्था करना, वो नुकसानदायक हो जाएगा।
1: तो मार्केटिंग कैसे करें?
0: मार्केटिंग के लिए किसान भाइयों, अगर वास्तव में फूल की खेती करनी है तो पहले हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए। पहले हमें लोकल मार्केट अपना सर्च कर लेना चाहिए, वहाँ पे जा करके कौन सी प्रजातियाँ वहाँ लोकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बेची जा रही हैं वो हमें पता कर लेना चाहिए, फिर उसी प्रजाति को अपने यहाँ लगाना चाहिए। तो अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो फूलों में कहीं ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रजाति की सबसे ज़्यादा डिमांड है उसी को ग्रो करने पे हमें फायदा मिल पाएगा
2: जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ चला है, हालांकि जानने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन समय की बाध्यता है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी हमारे किसान पहली बार जो इसकी व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं, उनके लिए आप अंतिम व्यवहारिक सलाह क्या देना चाहेंगे कि जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो?
0: आज की डेट में कोई ऐसा फसल नहीं है जिसमें इतनी आमदनी हो जाए जितने की गुलदाउदी में है। अगर गुलदाउदी आप वास्तव में 1 एकड़ में लगाएंगे और अच्छे से खेती कर रहे हैं तो 4 से 5 लाख का शुद्ध लाभ हो सकता है, और अगर प्रोटेक्टेड में करेंगे तो 10 से 12 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हो सकता है। इतना शुद्ध लाभ आपको किसी और फसल से नहीं मिल सकती। हाँ, जब इसमें लाभ ज़्यादा है तो इसमें आपको केयर थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई जो चाहते हैं कि गुलदाउदी का उत्पादन लें, तो आज जो डॉक्टर तिवारी जी ने हमें सलाह दी, हमारे किसानों को इतनी सारी विस्तार से और इतनी सरल भाषा में जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर अजय कुमार तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और कोमल, अब घड़ी की सुइयों से तो मिल रहा है इशारा कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है हमारा।
2: बिल्कुल, कार्यक्रम समाप्त होने को है, और कार्यक्रम में हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लेकर के आए। जैसे कि आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि गुलदाउदी की व्यावसायिक खेती की तकनीक क्या क्या हो सकती है। आप अगर आपने पूरा कार्यक्रम सुना तो आज हमने कार्यक्रम में बात की कि कौन से समय से आपको शुरुआत करनी चाहिए, कौन सी किस्में आपको लेनी चाहिए, और किस तरीके से आप अपनी फसल को बेहतरीन बना सकते हैं। ये सभी जानकारियां हम आपके लिए लेकर के आते हैं। बहुत मेहनत से हम आप सभी के लिए एक एक विषय चुनते हैं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। और जब कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ते हैं और कार्यक्रम में हमें कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है। तो यदि आप कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सलाह, कोई भी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ये प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद के निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का भी निमंत्रण दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा है कि अभियान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी हैं। दोनों देशों ने सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमले किए। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर संघर्ष तेज होने के बीच दोनों देशों के बीच हुई अंतरिम युद्ध विराम समाप्ति के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार लगातार 7वीं रात किए गए हमलों में ईरान के निगरानी केंद्रों, सैन्य रसद सुविधाओं, भूमिगत हथियार भंडारों और समुद्री परिसंपत्तियों को निशाना बनाया गया। कुवैत ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का दावा किया है। इराक ने एरबिल के ऊपर हमला करने वाले ड्रोन मार गिराने की जानकारी दी, जबकि जॉर्डन ने भी ईरानी मिसाइलों को अवरोधित करने की पुष्टि की। ईरान की मीडिया के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों में होर्मुजगान प्रांत के एक बिजली संयंत्र और जल शोधन संयंत्र को नुकसान पहुंचा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि हाल के अमरीकी हमलों में 46 लोगों की मौत हुई है और 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए विनाशकारी भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,069 हो गई है। देश की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष होरे रोड्रिगेज ने बताया कि इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए हैं और 6,462 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा।

0: न्यूज पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं समाज में अंगदान को बढ़ावा देने वाले नीलेश विनोद चंद्रा मांडलेवाला के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है लोपा।
2: नीलेश भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे ख्याल आया कि आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है।
3: मेरे पिताजी की किडनी 97 में खराब हो गई थी और उस समय हमने मुंबई में उनका इलाज करवाया था। डॉक्टर भरत भाई ने कहा कि जो किडनी है उनके अंदर एक स्टेंट रखना पड़ेगा। तो 2004 में डॉक्टर ने कहा कि जो स्टेंट रखा था वो स्टेंट अभी काम करना बंद कर दिया है। अभी आपके पास दो इलाज है, या तो आप डायलिसिस कराओ या तो ट्रांसप्लांट कराओ। मैंने भी मेरे पिताजी को मेरी किडनी देने की बात कही कि मेरी एक किडनी आपको देता हूँ जिससे आपको अच्छी लाइफ मिल सके। मेरे पिताजी ने मना किया कि आपकी उम्र छोटी है। मेरे ब्रदर को भी मना किया कि मैं डायलिसिस के ऊपर ही रहूंगा। 2004 में मेरे पिताजी का हफ्ते में दो बार डायलिसिस शुरू हुआ और मैं मेरे पिताजी को जब ये डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस वहाँ पे करवा रहे थे। और वहाँ पे ख्याल आया कि परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि डायलिसिस की पीड़ा हमने तो देखी ही थी। तो डायलिसिस से व्यक्ति को जीवन तो मिलता है लेकिन वो क्वालिटी लाइफ नहीं होती है, क्वांटिटी लाइफ मिलती है। ये सोच, ये विचार कि मुझे डायलिसिस सेंटर के जो वेटिंग रूम है उसमें आता रहता था। 2004 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनररी सेक्रेटरी था। उस समय बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती थी तो ऐसी मुलाकात उस समय के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चिनू भाई शाह हमारी चैम्बर की विजिट पे आए थे। तो चिनू भाई के साथ ऐसे एक अनौपचारिक बातचीत में किडनी के बारे में हम लोगों की चर्चा हुई। तो चिनू भाई ने कहा कि नीलेश भाई, आप इतना सब जानते हो किडनी के बारे में, इतना सब काम करना चाहते हो, आप हमारी संस्था में जुड़िए। मैंने शुरुआत में प्रिवेंशन के ऊपर ही काम करना शुरू किया कि किडनी खराब ना हो, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, किडनी कैसे खराब हो जाती है, उसके बारे में लोगों को समझाना शुरू किया। लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच थी कि जो लोग की किडनी खराब हो जाती है तो परिवार में से नहीं दे सकता है तो उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी, तो उसको क्वालिटी लाइफ

0: मैंने जब ये रिसर्च किया तभी मुझे मालूम पड़ा कि ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगों के दान से उनको किडनी का दान हो सकता है। तो मैंने सूरत शहर के अस्पताल के आईसीयू के डॉक्टर का कांटेक्ट करना शुरू किया, शहर के न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन का कांटेक्ट करना शुरू किया। कैसे जब भी कोई ब्रेन डेड केस आता है तो हमें उनका जानकारी दीजिए कि जिससे हम उसका किडनी का दान करवा सके।
1: तो जब आप डॉक्टरों से मिलने जाते थे तो उनका रिस्पांस कैसा था?
0: 2005 की बात करें तो पूरे देश में अंगदान के बारे में बात ही नहीं थी, और लोगों को ऐसा भी था कि एक जो टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी है वो कैसे लोगों को अंगदान के बारे में समझा पाएगा। लेकिन मैंने मेरी पूरी बात बताई कि मैं क्यों ये क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, मेरे फादर का इंसिडेंट उन लोगों को बताया। तो मैंने बोला कि आप हमें जानकारी दीजिए तो मैं कोशिश करूंगा। वहां से ये जर्नी की शुरुआत हुई थी और 12 जनवरी 2006 के दिन सूरत की अशक्त आश्रम अस्पताल में एक व्यक्ति ब्रेन डेड थे, उनकी जानकारी हमें दी गई। हम लोगों ने अस्पताल जाके परिवारजनों को अंगदान का महत्व समझाया।
1: उनका रिएक्शन कैसा था जब आप?
0: उसका वही था कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तभी हमने बताया कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है, लेकिन आप उनके किडनी का दान करोगे तो दो लोगों को नया जीवन मिलेगा, और नया जीवन देने का काम ईश्वर का काम है, और आप जब ये ईश्वरीय कार्य करते हो, जो दो व्यक्ति डायलिसिस पे जीवन जी रहा है तो उनको नया जीवन मिलेगा, एक डायलिसिस की जो पीड़ा है उसमें से उसको मुक्ति मिलेगी, और वो परिवार ने हाँ कही।
1: पहले किडनी के लिए ही सोचा था आपने, क्योंकि आपके फादर की किडनी के लिए आप डायलिसिस करवाते, उसके बाद में बहुत सारे अंगों का दान काट हुआ, जिसमें सूरत में ही पहली बार कृत्रिम हाथ का भी मरण हुआ था, तो तब क्या आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है? और जब मैं डॉक्टर से बात की तो वो जर्नी कैसी थी आपकी?
0: रूपा जी, उस समय गुजरात में केवल 5-7 ही किडनी ट्रांसप्लांट की अस्पताल थी। 2005-6 की हम बात करें तो गुजरात में ट्रांसप्लांट भी केवल किडनी का ही हो रहा था। मैं बात करूं, जनवरी 2006 में हमने किडनी का दान करवाया, और दूसरे ही महीने 8 फरवरी 2006 के दिन सूरत के स्मीमेर अस्पताल में 24 साल का लड़का था, वो ब्रेन डेड हुआ। हमने उनके पिताजी के साथ में किडनी डोनेशंस की बात कही, उन्होंने हाँ कही, तो हमने IKDRC को कांटेक्ट किया, और उसी समय हमारे सूरत के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का कॉल आया कि नीलेश भाई, मुझे मालूम पड़ा कि आज आप किडनी का दान करवा रहे हो, तो क्या लीवर भी पॉसिबल हो पाएगा क्या? तो मैंने कहा कि गुजरात में तो लीवर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं रहा है, तो लीवर भेजेंगे कहाँ पे? तो उन्होंने कहा, वो चिंता आप छोड़ो, मैं बाकी की व्यवस्था करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये बातचीत करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको जितने भी ऑर्गन्स का डोनेशन हो सकता है वो करवाइए। तो फिर लीवर का डोनेशन हम लोगों ने करवाया, और वो लीवर हैदराबाद की ग्लोबल अस्पताल में भेजा गया था। किडनी अहमदाबाद की IKDRC में डोनेट की गई। मैं बात करूं तो हैंड डोनेशंस का, 2015 में हैंड डोनेशन और ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई। कोची में पहला देश का हैंड का डोनेशन और ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन सूरत ने अक्टूबर 2021 में सबसे कम उम्र के बच्चे का, 14 साल के बच्चे का हैंड का डोनेशन सूरत से करवाया था। वो देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड का डोनेशन उस समय था। लेकिन सितंबर 2024 में हमने सूरत से ही वलसाड़ की एक 9 साल की बच्ची का हैंड का डोनेशन करवाया था। सभी डेटा हमने देखा तो उसके हिसाब से वो जो बच्ची है वो सबसे यंगेस्ट है इन वर्ल्ड हैंड डोनेशन के अंदर। सूरत से 4 या 5 दिन के बच्चे की किडनी का भी दान हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि सूरत से जो 2017 में एक 14 महीने का बच्चे का हृदय का भी डोनेशन हुआ था, और उस समय देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के हृदय डोनेशन की पहली घटना थी, और उसका जो ट्रांसप्लांट है वो ट्रांसप्लांट मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची में हुआ था। इसी तरह से कोरोना के समय में पूरे देश में अंगदान की प्रवृत्ति बहुत कम चल रही थी, और उस समय भी सूरत से लगातार ऑर्गन डोनेशंस हो रहे थे। और उसी समय दिसंबर 2020 में सूरत से एक 2.5 साल के बच्चे का, उनके किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और नेत्रों का दान किया गया, और देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन डोनेशंस की वो पहली घटना थी।
1: ऐसा कोई किस्सा जो आप आपके दिल को छू गया हो, से बात की हो और आंखों में आंसू आ गए।
0: लोबा जी, हर एक किस्सा जो है वो दिल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि किसी को अंगदान के लिए तैयार करना, राजी करना, और ऐसे समय पे जब ये परिवार में रुदन है, आकरण है, और ये कंसेप्ट को समझा के उसको तैयार करना, और बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। हम लोग भी रोते हैं, लेकिन हर एक केस अलग अलग है। लेकिन मुझे दो केस बहुत ही टच किए है। वो एक है जो 2017 में 14 महीने का लड़का था, उसके हार्ट और दूसरे अंगों का दान करवाया था। वो बहुत ही मुझे टच हुआ था, क्योंकि पहली बार मैं इतने सालों में इतने छोटे बच्चे के परिवार के साथ काउंसलिंग कर रहा था, और जब भी मैं सिविल अस्पताल के अंदर उनको काउंसलिंग किया, और जब ये ऐसा फूल जैसा मासूम बालक सोया हुआ था, ऐसे बच्चों को, बच्चे के परिवार को समझाना बहुत ही कठिन था। लेकिन मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ के माता पिता को, के जिन्होंने ये निर्णय किया। बहुत सामान्य परिवार से वो लोग हैं, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने हाँ कही तो उनके जो हृदय का दान हुआ, और उनके हृदय दान की वजह से मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची जो 16 महीने से बेड पे ही रही थी, ऐसी बच्ची को नया जीवन मिला। और उसी तरह जब भी हमने हैंड्स का डोनेशन जो करवाया था, और अक्टूबर 2021 में जो लड़का था, वो लड़के का हैंड का डोनेशन करवाया, वो भी बहुत ही, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन का डोनेशन करवाना अलग है और एक्सटर्नल ऑर्गन का डोनेशन करवाना अलग है। इंटरनल ऑर्गन में कुछ दिखता नहीं है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में पूरी मानसिकता बदल जाती है।
1: ये पूरी जर्नी में आपने डोनेट लाइफ नाम कैसे आपने चूज किया?
0: नहीं, मैं तो 2005 से कार्य शुरू किया था। 2013 में सूरत के जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनकी किडनी खराब हो गई थी, और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, उनका कॉल आया कि हमारे एक ऑफिसर की किडनी खराब है, आप क्या हेल्प कर पाओगे? तो मैंने उनको कहा कि मैडम, मैं और तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर को गाइडेंस दे पाऊंगा। तो सर का नाम IKDRC में रजिस्टर्ड हुआ, वहीं सर अहमदाबाद ही रुके, और वहीं डायलिसिस भी उन्होंने शुरू करवाया। थोड़े महीनों के बाद सूरत से एक किडनी का डोनेशन हुआ, और वो किडनी सर के अंदर ट्रांसप्लांट हुई। उनमें ट्रांसप्लांट हुई तो सर ने बताया कि नीलेश भाई, आज मुझे नया जीवन मिला है, तो मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। हम लोग मिलके एक ट्रस्ट बनाते हैं, और वो ट्रस्ट बना के हम लोग नेशनल लेवल पे प्रवृत्ति को लेके चलते हैं। लेकिन मैंने मना किया कि सर, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि ट्रस्ट बनाना आसान है, चलाना मुश्किल है, और टिकाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो सर खुद यूपी से थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग बनाएंगे। फिर 1 साल के बाद मैंने हाँ कही। हाँ कही तो अभी नाम क्या करना है उसके ऊपर सोच विचार हुई, बहुत से अलग अलग नाम, हमारी जो टीम थी, हम लोग साथ में बैठते थे, तो फिर इसमें सोच आई कि जो हमारा, हम जो कार्य कर रहे हैं वो लोगों को जीवन देने का ही कार्य कर रहे हैं, तो ये डोनेट लाइफ के नाम से ही हम लोग ट्रस्ट बनाएंगे, और डोनेट लाइफ नाम हमने फाइनल किया।
1: 25 सालों की मेहनत, जब पद्म से अवार्ड जब आपको पता चला, तब फैमिली के फ्रेंड्स पर आपके रिएक्शन क्या?
0: मेरे पास इसके लिए कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ आज इतने सालों की, वो कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ये जगह पे हम लोग पहुंचेंगे। क्योंकि जो परिवार में ऑर्गन खराबी है, और वो परिवार को जब भी किडनी मिलती है, लीवर मिलता है, हृदय मिलता है, फेफड़ा मिलता है, इवन हैंड का डोनेशन से उनको ट्रांसप्लांट होते हैं, तो उनके और उनके परिवार के चेहरे पे जो खुशहाली आती है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। भारत सरकार ने जो हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान है जिन ब्रांडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रांडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है, इन सभी का सम्मान है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो नींव रखी गई वो इतनी मजबूत नींव थी, जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई है आज मजबूत है, जो बीज बोया, बीज आज वटवृक्ष बना, और कितने लोगों को नया जीवन दे रहा है।
1: आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको अंगदान के बारे में जागरूकता नहीं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, और अंगदान जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए, वो लोगों को क्या बताना चाहेंगे?
0: लोगों को मेरा एक ही मैसेज है कि आपको ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझना चाहिए, और हमें उससे ऑर्गन डोनेशन करवाना है। लोग ऐसा मानते हैं अंगदान नहीं करना चाहिए। हम हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। और महर्षि दधीचि ऋषि ने

0: भी दानों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में है। आज लोग अंगों की बात छोड़िए, आंखों का दान करने से भी लोग आज आगे नहीं आते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है, और जब जो हम उनका अग्निदाह करते हैं, जो पार्थिव देखा, वो तो सिर्फ एक खोखा ही होता है। आज हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत समय सर अंग न मिलने की वजह से हो रही है। हमारे देश के यशस्वी वडाप्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई ने हमें 2047 में जब भी हमारा देश आजादी की शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारा देश विकसित भारत होगा वो परिकल्पना हमें दिखाई है। हमारी संस्था ने भी एक मिशन बनाया है कि 2047 में जब भी हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। ये प्रोग्राम में हम अभी यूथ को तैयार कर रहे हैं। हम यूथ को बोल रहे हैं कि जो 20 साल पहले जो हमने बीज बोया था वो बीज आज वटवृक्ष बना है, लेकिन आगे की रेस आपको कंप्लीट करनी है।
1: तो ये थे दिनेश भाई मालेवाला, जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की तो वो बताया, और इनके लिए हूँ इनके बहुत ही आभारी।
2: थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी समाज में अंगदान को बढ़ावा देने वाले नीलेश विनोद चंद्रा मांडलेवाला के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी लोपा।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: 3:26 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। शनिवार की दोपहरी है साहब, शुरू होता है आपका मनपसंद मनभावन आपकी दोस्त सीमा वर्मा के साथ। एक बहुत खूबसूरत गीत आप तक पहुंचा रही हूं मेरी तरफ से आप सबके लिए। आपकी तरफ से व्हाट्सएप कीजिए 9868687 5 3।
1: इस दिल को प्यार करना

शागिर्द फिल्म के इस गीत से हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की है। और आपको एक बार पुनः याद दिला दूं, आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 के साथ हैं। आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और हमारे दरमियान एक व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। आप अपनी फरमाइश इस नंबर पर भेज सकते हैं। आज आपका कोई ख़ास दिन है तो भी हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर साहब, लुबना और आलिया अंसारी का संदेश आया है। ये छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने हमें संदेशा लिखा है। यहाँ पर एक मैसेज है जिसमें गीत की फरमाइश की है, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से किशन वंजानी, नीलम अस्वाती, संगीता, सरिता और सुमन महाजन और किशु, इन्होंने संदेशा हमें भेजा है। और इसके साथ साथ मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रत्नमाला सुरलकर और ओम कुमार हैं, इन्होंने भी अपनी एक फरमाइश हम तक भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी साहब हैं, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी हैं। और इसी तरह आप अपने संदेश हम तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार जी, मैं भी सुन रहा हूं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से असलम मंसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आपके जितनी तेज़ी से आपके संदेश आ रहे हैं उतनी तेज़ी से शायद मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश कि आपके सभी जो संदेश हैं उन्हें मैं पढ़ लूँ। सनावत से शेख मूसा मोहसिन साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। और अगला संदेशा जो है वो किसका है साहब, ताज मोहम्मद अंसारी हैं, गुलाम साबिर राही साहब हैं, महराज जहां हैं और

आज़ाद नगर हरिद्वार से इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा है। आपके संदेशे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भिलाई से हमें उत्तम सिंह जाधेल साहब हैं और मॉरिस हैं, इनके साथ अनिल कुमार हैं, अजित कुमार हैं और आयुष साहब हैं, नंदिनी भी हैं इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और अगर ऐसा रहा तो मैं पढ़ती चली जाऊंगी और फिर आप कहेंगे कि गीत नहीं सुनाया सीमा ने। चलिए आखिरी संदेशा ईटा से हमारे पास नबी हसन अंसारी साहब और सहनाज अंसारी हैं, इनके साथ नवेद हसन हैं, सुहेल हसन हैं और अनम यशफ अब्बासी साहब हैं, रसीद वारसी साहब हैं। तो मुझे लगता है अब मुझे यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए अगला गीत आप में से किसी एक की पसंद का आप तक पहुँचाना होगा।

टाइटल ट्रैक फिल्म छोटी सी बात का, बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं जो फिल्म का जो नाम है वो अपने साथ लिए हुए आगे बढ़ते हैं और हम भी आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 9868886853 नंबर एक बार दोबारा सुनिए, 9868886853। इस पर आपको हमें अपना जो संदेश है उसे भेजना है, और अगर कोई आज आपका ख़ास दिन है तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर क्या संदेश आया है जी, देखते हैं। आपने एक साथ बहुत सारे होस्ट का नाम लिख दिया तो अपना नाम ज़रा सा ढूंढ रही थी। बहरहाल बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेघा का ये संदेश आया है। बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। और सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा हैं इनके साथ, गुलिस्ता रानी हैं और नंदिनी और अंजलि हैं, ये इन्होंने मथुरा से हमें संदेशा भेजा है। बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। और एक साथ बहुत सारे संदेशे आप ना भेजें, क्योंकि हम जब पढ़ने लगते हैं तो पता चलता है ये तो अभी हमने संदेशा पढ़ा था। बेंगलुरु से भारत भूषण साहब, बहुत बहुत नमस्ते आपको। आपके साथ अंजू श्रीवास्तव हैं, देवेंदु हैं, संस्कृति हैं और पौरुष हैं। शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और यहाँ पर एक और पिपरिया से हमारे पास संदेशा आया है। मुकेश गुप्ता हैं, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता हैं, अदिति गुप्ता हैं, राधे हैं और दीपक गुप्ता हैं इनके साथ, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता भी हैं इनके साथ। और दो संदेशे मैं और ले लेती हूँ, नहीं तो ऐसा होगा कि बहुत सारे नाम ले लिए। खुद ही को एहसास हो जाता है, पता है आपको, खुद को एहसास होता है कि बड़ी देर से बोल रही हूँ, गाना बीच में ज़रूर आना चाहिए। महाराष्ट्र से रंजीत कारेगावकर साहब हैं, कंचन हैं, सृष्टि हैं और समरजीत हैं। वहीं अगर हम भावपुर की बात करें तो राधे श्याम देवगन हैं, इनके साथ राजू हैं, नेहा हैं और जगदीश हैं। तो साहब अब आपकी इजाज़त हो तो एक गीत सुना दें। चलिए एक एक संदेशा और पढ़ लेते हैं। नवाब अहमद भारती साहब, और ये एक और नाम क्या है, रियाज मिथुन हैं इनके साथ, आशिफ अली हैं और सलीम अख्तर साहब हैं, और भी बहुत सारे संदेशे आ रहे हैं। अब यूँ ना करें, बहुत देर हो जाएगी, वरना हिना फिल्म का की कवाली सुनानी पड़ेगी, फिर आपको देर ना हो जाए कहीं। मोहम्मद सईद दब्बासी साहब, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा का पूरा आपासी परिवार है। अब यहाँ मैं हॉल्ट करती हूँ और एक और बहुत खूबसूरत सा गीत आप तक पहुँचाती हूँ।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 और आपके साथ आज मन भावन प्रोग्राम में सीमा वर्मा। 3:45 हो गए हैं आपके संदेश हम तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रहे हैं, फिर भी ये नंबर आप जान लें जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून इन किया है, 9868867853। और अब एक बार फिर से शुरू करते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, आपने ये संदेशा भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले संदेशे की तरफ अगर हम जाते हैं तो विष्णु गार्डन दिल्ली से हमारे पास एक संदेशा है। नईम खान है इनके साथ, मौजम है और अक्रम है, निसार है और अरमान है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। वहीं अगला संदेशा जो है कृष्ण मेहरा साहब हैं और भिवानी से इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। कोमल हैं इनके साथ, किरण हैं, कपिल हैं और कुणाल मेहरा हैं और इन्होंने हमें नमस्ते भी लिखकर भेजा है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी, सज्जन खोरवाल, अमन, दीपांशु, आपने भी ये संदेशा भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। और इसके साथ साथ अब अगले संदेशे की तरफ अगर जाते हैं तो हमें भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा और ईशान चिंपा और पूजा परिहार, इनका संदेशा हमारे पास आता है। क्या कहते हैं, अब एक गीत सुनवा दें, आपको किसी भी गीत में शामिल करें। एक और संदेशा आया है, पिपरिया से हैं और कमलकांत गुप्ता जी हैं, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता हैं। चलिए, आपके संदेशे अब हमने पढ़ लिए हैं, अब हम आप तक एक गीत पहुँचाते हैं। पहुँचाते पहुँचाते नज़र एक बार फिर आपके एक संदेशे पे चली गई। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह साहब हैं, शाहजहाँ बेगम हैं, मरियम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। इसी तरह अपने संदेशे हम तक आप पहुँचाते रहें। 9868867853 पर। और अब बारी है अगले गीत की, आइए सुनते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

एक बार फिर आप FM गोल्ड 100.1 के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। नंबर मैं बताना चाहती हूं लेकिन समय अब ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है हमें आगे बढ़ने की, फिर भी आगे के लिए आप नंबर नोट करके रख ही लीजिए, 9868868753 9868868753। और दिल्ली रेडियो लिसनर्स क्लब से नवाब अहमद भारती साहब हैं, इनके साथ अशरफ साहब हैं, बबलू कश्यप हैं, महेश अग्रवाल हैं और सिराज मिथुन साहब हैं। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह हैं, शाहजहां बेगम हैं, मरियम और जैनब हैं। और इसके साथ साथ एक संदेश और आया है जिसमें लिखा है, सीमा जी कभी तो हमारे जो फरमाइश है गाना है वो हमें सुना दें। और देखिए आपने मैसेज इतने सारे कर दिए, हर मैसेज में अगला कोई दूसरा ही गाना लिखा है आपने, तो कोई एक गाना इसमें से मैं सुनवा देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप सबके नाम लेना ज़रूरी है। आपने लिखा है, शुभ दिन हम महाराष्ट्र पुणे से, सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या, गायकवाड़। और आपने जो ये संदेशा भेजा, हमने आपका संदेशा पढ़ दिया है, तो अब मुझे लगता है आपकी नाराज़गी जो है वो दूर हो गई होगी। और क्या लिखा है, ये किसने लिखा है, मज़ा तो आ गया मोताला महाराष्ट्र विजय जी और रत्नमाला जी, गीतों को सुनकर, प्रस्तुति को सुनकर बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक तरफ आपके संदेशे पढ़ रही हूँ, दूसरी तरफ मैं घड़ी की तरफ देख रही हूँ। सुरेश नारंग साहब, अंशु नारंग हैं, इनके साथ शेख अलाहबख्श हैं और अरविंद कुमार हैं, इनके साथ संदीप मक्कड़ हैं। ये कहाँ से आपने मैसेज किया है, सोनाली भी हैं इनके साथ, सहारनपुर से आपने मैसेज किया है। अब मुझे गाना चलाना ही है क्योंकि फिर आप गीत के मज़े भी नहीं ले पाएंगे, पूरा गीत नहीं बच पाएगा, तो फिर आपको लगेगा कि पूरा गीत सुनना चाहिए था। जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल और ज्योति पटेल, आपने अपना संदेशा भेजा है खंडवा से, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब गीत की बारी है, जिन्होंने कहा कि कभी तो हमारा गीत सुनवा दिया करें, उनका गीत लीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट को हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने बनाया है। भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बन गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को मिलने के लिए भी आमंत्रित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों को हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी हैं। दोनों देशों ने सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे

0: को निशाना बनाकर हमले किए। हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर संघर्ष तेज होने के बाद दोनों देशों के बीच अंतरिम युद्ध विराम समाप्ति के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार लगातार सातवीं रात किए हमलों में ईरान के निगरानी केंद्रों, सैन्य रसद सुविधाओं, भूमिगत हथियार भंडारों और समुद्री परिसंपत्तियों को निशाना बनाया गया है। उधर ईरान ने कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। कुवैत ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का दावा किया है। इस बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $86 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि शिकायत निवारण का दायरा शिकायतों के निपटारे तक सीमित नहीं होना चाहिए तथा पेंशन भोगियों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बात कही। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत प्रसारित की जाएगी। श्री आर माधवन को प्रतिष्ठित पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। यह बातचीत आकाशवाणी गोल्ड से आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। और खेलों में फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मैच भारतीय समयानुसार 2:30 शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, under Mission Agaman, has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agaman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of the Indian space program, Vikram 1 features three solid propellant stages and a liquid-fueled Raman engine in its orbital adjustment module for precise orbital insertion and maneuvers. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephonic call after India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, successfully reached orbit. Mr. Modi said, "Successful launch of Vikram 1 under Mission Agaman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector." The Prime Minister said, "The historic achievement will inspire the youth of the country to come forward and contribute to innovation."
2: पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh congratulated Team Skyroot on the successful launch of India's first privately developed orbital launch vehicle, Vikram 1. The minister said, "The mission marks a major milestone for India's expanding private space sector." Railways Minister Ashwini Vaishnav and Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today virtually flagged off the new Ramnagar-Dehradun Express. This marks a new era of enhanced rail connectivity between Uttarakhand and Uttar Pradesh. The train will benefit tourists and wildlife enthusiasts visiting Jim Corbett National Park, as well as devotees travelling to the temple near Ramnagar. Addressing the function through video conferencing in New Delhi, Mr. Vaishnav stated that the train will operate twice a week and provide connectivity between the Kumaon and Garhwal regions of Uttarakhand. The United States and Iran exchanged fresh strikes today, targeting military and key infrastructure as fighting over the Strait of Hormuz intensifies.

6:04 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। और आइए सुनिए फिल्मी गीत। पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म हमसाया फिल्म से, जो 1968 में प्रदर्शित हुई। ये फिल्म ज़्यादा तो नहीं चल पाई, लेकिन संगीत प्रेमी और जानकार कहते हैं कि अगर रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत इस फिल्म में नहीं होता तो शायद

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और आइए साथियों, अभी गीत सुनते हैं, उनकी आवाज़ में जो दिल में घर कर गई हैं, इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी गीतों की वजह से सदा सदा याद रखी जाएंगी।

0: ADL has also announced fresher vacancies for junior executive chemical and junior executive fire and safety in the pay scale of 30,000 to 1,20,000 rupees. Online applications will close on 20th July 2026. Detailed eligibility criteria, vacancy distribution and application instructions are available on the HPCL careers page at www.hindustanpetroleum.com. Rights Limited, a Government of India enterprise, has invited online applications from qualified and experienced professionals for recruitment to the post of Assistant Manager HR, Deputy General Manager Civil, Tunnel Construction Expert, Deputy General Manager Transport Economist, and Deputy General Manager Civil, Marine Structural Expert. Reservations, age relaxations, and other concessions will be provided to eligible EWS, SC, ST, OBC, NCL, PWBD, ex-servicemen, and other eligible categories as per Government of India norms. Online applications will close on 22nd July 2026. The dates for the written exam and interview will be notified later. Candidates are advised to refer to the detailed advertisement for educational qualifications, experience, application fee, and selection procedure to the official Rights website. Kindly refer to www.rights.com. I repeat, it is www.rights.com. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में सहायक कुल सचिव का पद रिक्त है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। शैक्षिक योग्यता, पात्रता और अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद की वेबसाइट www.iitism.ac.in। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से 15 अगस्त 2026 को रात्रि 11:59 तक भेजे जा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ अपने विभिन्न महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट प्रोटेक्शन प्लांट पैथोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्लोरिकल्चर एवं लैंडस्केपिंग फ्लावर ब्रीडिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रूट साइंस फ्रूट ब्रीडिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिक साइंस प्लांट फिजियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस वेजिटेबल ब्रीडिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस वेजिटेबल प्रोडक्शन, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल साइंस एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये सभी पद कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए हैं। इसके अतिरिक्त कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए ये पद रिक्त हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड बिजनेस मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड बिजनेस मैनेजमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्लांट ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्लांट ऑपरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी केमिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में जो पद उपलब्ध हैं वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर फार मशीनरी एवं पार इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर रेन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोसेसिंग एवं फूड इंजीनियरिंग,

0: Assistant Professor, Soil and Water Conservation Engineering, Assistant Professor, Mechanical Engineering. इसके अतिरिक्त कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तथा कॉलेज ऑफ शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी विभिन्न पद रिक्त हैं। वेतनमान रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अकादमिक लेवल 10 में 57,700 रुपए। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 18 से 24 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.svpuat.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश वीकेंड एपिसोड ऑफ परिक्रमा, वेयर वी ब्रिंग यू एन अमलगमेशन ऑफ नॉट जस्ट न्यूज बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव टू शेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और शायद इसीलिए हम लोग कहते हैं इस शो को परिक्रमा। जी हाँ, तो इस आधे घंटे के न्यूज मैगजीन में मुकेश और हम आपके लिए लाएंगे ताजा तरीन खबरें और डा स्पेशल सेगमेंट डेटलाइन इंडिया इन विच विल टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट दैट आर कंट्री हैज अचीव टुडे, और उसके अलावा ऑफ कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास जाएंगे एंड द लास्ट सेक्शन मुकेश इन विच वी रिमेंबर सम ऑफ द पर्सनैलिटीज हु ईदर हैव द बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज और बर्थ डेज टुडे, ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस मुकेश।
3: जी बिल्कुल।
4: India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 launched successfully from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया।
4: Defense Minister Rajnath Singh says India's zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action.
3: पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी।
4: एंड इन बैडमिंटन, पीवी सिंधु स्टॉर्म्स इनटू वुमेन सिंगल्स फाइनल ऑफ जापान ओपन इन टोक्यो। And Mukesh, of course, in our segment Dateline India, as I had mentioned, we are going to discuss a very important accomplishment that we achieved today. Of course, we're going to talk about India's new space era and Nelson Mandela International Day. Aur jab space era ki baat ho rahi hai, to of course, we all know that today we have achieved a very remarkable feat because Vikram 1 was launched successfully from Sriharikota. And for decades, India's journey into space has been synonymous with one name. That is ISRO. Mission after mission, it has earned the nation's admiration and the world's respect. But today, that remarkable story has entered an exciting new chapter. For the first time, a privately developed Indian rocket has successfully reached orbit.
3: बिल्कुल, कैब बुक करने या खाना ऑर्डर करने के बारे में सोचिए। कुछ समय पहले तक ये सेवाएं शायद ही मौजूद थीं। फिर स्टार्टअप्स ने कदम रखा, काम करने के पुराने तरीकों को चुनौती दी और रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया, और अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी ऐसी ही क्रांति हो रही है।
4: That's right, Mukesh. Space is no longer a playground reserved only for national space agencies. It has become a place where startups, innovators, students, and entrepreneurs can dream, and more importantly, turn those dreams into reality. And Vikram 1 is a living proof of that transformation.

0: बिल्कुल सारा, हर पीढ़ी एक ऐसा पल देखती है जो देश के खुद को देखने के नजरिए को बदल देता है। ये भी शायद उन्हीं पलों में से एक है। क्या ऐसा नहीं लगता कि हर नया दिन भारत की यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ रहा है? कल हरियाणा में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना किया गया और आज विक्रम बन ऑर्बिट में पहुंच गया। भारत लगातार बड़े और साहसी विचारों को शानदार उपलब्धियों में बदल रहा है ना?
1: बिल्कुल सही मुकेश। वेल, व्हेन विक्रम वन लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा अंडर मिशन आगमन, इट वाजंट ओनली एमिंग फॉर द स्काई। इट्स रियल डेस्टिनेशन वाज अ 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट वेयर इट सक्सेसफुली डिप्लॉयड मल्टीपल सैटेलाइट्स। नाउ आवर लिसनर्स माइट वंडर, इजंट एवरी रॉकेट लॉन्च अबाउट रीचिंग स्पेस? नॉट क्वाइट। गेटिंग इनटू स्पेस इज वन थिंग, Entering a stable orbit around the Earth is an entirely different challenge.
0: बिल्कुल, किसी भी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने का मतलब है उसे वो सटीक गति और दिशा देना जिससे वो पृथ्वी पर वापस आने के बजाय उसके चारों ओर घूमती रहे। ये गति, समय और इंजीनियरिंग के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन है और विक्रम वन ने इन सभी गणनाओं को बिल्कुल सही साबित किया है।
1: Well, Vikram 1 has been developed by Hyderabad-based Skyroot Aerospace, becoming India's first privately built orbital launch vehicle. The rocket carries satellites weighing up to 350 kilograms into low Earth orbit.
0: और ये अत्याधुनिक भारतीय इंजीनियरिंग का भी प्रदर्शन करता है जिसमें पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट से बना ढांचा, शक्तिशाली सॉलिड फ्यूल बूस्टर और एडवांस्ड 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन शामिल हैं।
1: And here's a detail, Mukesh, that's sure to make every young listener smile. The Skyroot team is made up largely of only young professionals. Not very long ago, they were attending lectures, working on college projects, and discussing ambitious ideas with friends. Today, those ideas have travelled all the way to space.
0: बिल्कुल सारा, private companies ने अचानक rocket launch करना कैसे शुरू कर दिया? क्या उन्होंने बस एक दिन में space business में आने का फैसला किया? असल में ऐसा नहीं है। इस कामयाबी के पीछे आजाद भारत के अंतरिक्ष सफर में हुए सबसे बड़े नीतिगत बदलाव में से एक है। 2023 में सरकार ने इंडियन स्पेस पॉलिसी पेश की जिससे स्पेस से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी का रास्ता खुल गया। तो आइए सुनते हैं कि इस ऐतिहासिक लॉन्च पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा।
2: Congratulations in space for facilitating this beautiful public-private partnership. Congratulations ISRO for optimizing this collaboration. Many thanks Prime Minister Narendra Modi ji for making this possible, because it is possible only because 5 years back Prime Minister Modi took a heroic decision, a bold decision, a courageous decision, an out-of-box decision to open the space sector to the private players, to unlock the space sector. The today's successful launch is a reiteration of India's grand entry as a global player in the highly competitive arena of space economy.
1: And to make the journey smoother, another important institution stepped forward, that is In Space, the International Space Promotion and Authorization Center. Think of it as a single window guide for India's private space companies. Instead of navigating complicated procedures, startups now have one place that helps authorize missions, provides regulatory support, enables access to ISRO facilities, and connects innovators with opportunities.
0: और नतीजे खुद ही सब कुछ बता देते हैं। वर्ष 2014 में भारत में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप था और आज 400 से ज्यादा हैं। ये साफ संकेत है कि भारत का प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम सच में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: And of course, brilliant ideas also need funding. After all, building rockets isn't exactly something you do with pocket money, isn't it?
0: Mm-hmm.
1: Well, recognizing this, the government introduced several initiatives. These include the InSpace Seed Fund Scheme, which supports early stage startups with grants of up to 1 crore rupees, along with mentorship and networking opportunities.
0: बिल्कुल सारा, इस दिशा में दूसरा है 1,000 करोड़ रुपए का खास वेंचर कैपिटल फंड जो आने वाले सालों में होनहार स्पेस स्टार्टअप्स को अपने इनोवेशन और बड़े स्तर पर ले जाने में सहायता कर रहा है। और तीसरा है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड के जरिए कंपनियों को लैब की टेक्नोलॉजी को कमर्शियल प्रोडक्ट में बदलने के लिए सहायता मिलती है जिससे इंडस्ट्री और समाज को फायदा हो सके।
1: Another major player working behind the scenes is New Space India Limited, or NSIL, ISRO's commercial arm. Its role is to take India's space technologies beyond labs and

0: टू द मार्केट प्लेस।
1: और चाहे स्पेस सिस्टम बनाना हो, इसरो को टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफर करना हो, या PSLV बनाना हो और कमर्शियल लॉन्च सर्विस देना हो, NSIL ये पक्का कर रहा है कि भारत इनोवेशन दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचे।
0: In fact, its revenue has increased nearly tenfold between 2020 and 2024, reflecting India's rising commercial presence in the global space economy. Foreign investment rules have also become far more welcoming. The liberalized FDI policy now allows greater automatic foreign investment across different segments of the space sector.
1: बिल्कुल सारा, हमारे प्राइवेट स्पेस सेक्टर में क्रांति की शुरुआत विक्रम 1 से ही नहीं हुई थी। ये बदलाव कई सालों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 2022 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम S ने अपना सफल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन मिशन पूरा किया था।
0: And then Mukesh came Agnikul Cosmos, becoming the first private company to launch a rocket from India's first private launch pad at Sriharikota, while also demonstrating the world's first single-piece 3D-printed semi-cryogenic rocket engine. India has also enabled partnerships involving companies like Pixel, Dhruv Space, SatShore and PeerSight Space to develop Earth observation satellite constellations that support agriculture, disaster management, क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड अर्बन प्लानिंग।
1: और अब SSLV जैसी टेक्नोलॉजी भी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री को सौंपी जा रही है। इस तरह धीरे धीरे भारत का स्पेस इकोसिस्टम मजबूत, व्यापक और अधिक सहयोगपूर्ण बना है। और फिर आया मिशन आगमन।
0: Yes, Mukesh, and our listeners may be surprised to know that Vikram 1 wasn't carrying just customer satellites. Among its payload were symbols celebrating India's scientific journey. One payload included a tiny 18-carat gold micro rocket featuring microscopic sculptures of three legends, Dr. C.V. Raman, Dr. Vikram Sarabhai, and Dr. APJ Abdul Kalam, each smaller than even a grain of rice.
1: और इस कामयाबी का जश्न पूरे देश में मनाया गया। सफल ऑर्बिटल मिशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। उन्होंने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे भारत के युवाओं को नवाचार अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। टीम के युवा प्रोफेशनल्स की तारीफ की और उन्हें खुद से मिलने के लिए आमंत्रित किया।
2: बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: So well, Mukesh, indeed a very historic day today. And today's day, agar dekha jaye, toh what does Vikram 1 really tell us? Well, India's space story is definitely changing. Not because ISRO is stepping back, but because many more hands are now helping take the country forward. Startups, universities, engineers, investors, policymakers, together they are building an ecosystem where innovation has room to grow. And Vikram 1 is a perfect example of that. Long after the applause for this launch fades, its true legacy will remain in the technologies it enables, the industries it inspires, and the generations it encourages to look up and ask, what's next?
1: और अब हम बात करते हैं आज की दूसरी डेडलाइन, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की। हर साल 18 जुलाई को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाती है। संयुक्त राष्ट्र ने यह दिन उस व्यक्ति के सम्मान में घोषित किया है जिन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, फिर भी वे बिना किसी कड़वाहट के बाहर आए और बदले की जगह माफी तथा बंटवारे की जगह एकता को चुना।
0: Well, ऐसे लोग जो है कुछ अलग ही मिट्टी सी बनते हैं मेरे ख्याल से मुकेश, एंड वी ऑल नो दैट ऑफ कोर्स से ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट चैंपियंस ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। बॉर्न ऑन 18th जुलाई 1918 इन साउथ अफ्रीका, ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू एंडिंग द कंट्रीज अपार्टाइड सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन।
1: और 1994 में वे दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए अश्वेत राष्ट्रपति बने और देश को शांति, एकता और लोकतंत्र की ओर ले गए। और इस दिन के बारे में एक खास बात यह है कि ये दिन सिर्फ नेल्सन मंडेला को याद करने का नहीं है, बल्कि उनके जैसा बनने की कोशिश करने का भी है।

0: Absolutely, Mukesh. The UN encourages everyone to dedicate 67 minutes to helping others. And if you're thinking, why 67 minutes? Well, they symbolize the 67 years Mandela devoted to public service. Whether it's planting a tree, mentoring a child, helping a neighbor, or simply listening to someone who needs support, every small act counts.
1: और मंडेला का जीवन भी महात्मा गांधी से गहराई से जुड़ा था, जहां गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक प्रतिरोध का अपना सिद्धांत विकसित किया, वहीं मंडेला ने अक्सर माना कि उन आदर्शों ने न्याय और समानता की दिशा में दक्षिण अफ्रीका की लंबी यात्रा को प्रेरित किया।
0: बिल्कुल मुकेश, और रातों रात ऐसे बदलाव नहीं आते। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट द वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस व्हेन एवरी टाइम समवन चूजेस एम्पैथी ओवर एंगर, hope over fear and unity over division. Perhaps that's the true spirit of Nelson Mandela Day and a reminder that each one of us has a role to play. And those were the two topics, Mukesh, of Dateline India. And just to tell our listeners ki hum log ki jo series shuru hui hai, People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we spoke to R. Madhavan, an acclaimed actor and director who has been honored with the prestigious Padma Shri. To listen to the entire conversation, please tune in to 100.1 Akashvani Gold today at 5:10 p.m. And you can listen to the conversation with R. Madhavan on our app also, News on AIR app, and News on AIR official YouTube channel. The program will be broadcast again tomorrow in the morning at 9:10 a.m.
1: और परिक्रमा कार्यक्रम में वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। इस क्रम में सबसे पहले पणजी चले, जहां पर सुशासन में एआई के इस्तेमाल के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है।
0: Yes, Goa has taken a significant step towards expanding the use of artificial intelligence in governance with the launch of the Bhashini Rajyam workshop in Panji. The initiative aims to make government services more accessible to citizens through Konkani and other Indian languages. We have a report.
2: Goa government has begun efforts to strengthen the use of artificial intelligence across various sectors through the Bhashini language platform. Speaking at the Bhashini Rajyam workshop in Panji, Information Technology Minister Rohan Khaunte said the initiative will help digitally empower citizens by enabling government departments to communicate and deliver services in Konkani. He said AI-powered language tools will make administrative processes easier to understand and improve access to government services for the common people.
3: Konkani is a very vital part of our heritage and we prioritize our MyBus from the very start of the Goa AI mission. We signed the MOU with Bhashini Division so that every single Goat, regardless of linguistic barriers, can seamlessly interact with the public systems in their own language. Through the AI governance workshop, we successfully brought various departments together to build institutional capabilities. We launched a 24/7 assistive chatbot on the Goa Online, establishing the state-of-art AI labs across Goa ITIs to strengthen practical learning and workforce development. And we are working towards developing actionable AI-driven solutions that improve public life, especially to service deliveries like the AI Goa AI Hackathon.
2: Chief Executive Officer of the Digital India Bhashini Division, Amitabh Nag, said the platform currently supports 22 scheduled Indian languages out of 121 recognized languages in the country. He added that Bhashini also offers supports for 35 foreign languages, making multilingual communication easier. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashvani News, Panji.
1: और गोवा से सटे महाराष्ट्र की ओर चलते हैं और अपने श्रोताओं को बताएंगे, साइकिल एक ऐसा वाहन है जो आपकी सेहत बढ़िया रखता है, साथ ही पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरे वाहनों से निकलने वाले धुएं से हवा प्रदूषित होती है। ऐसे वाहन पेट्रोल और डीजल की बड़ी मात्रा में खपत भी करते हैं। इसी बात को समझते हुए केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र में एक अनूठा अभियान चलाया जा रहा है, तो सुनते हैं रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र में आने वाली देवशयनी 11 को पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पैदल चलकर जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं का इन दिनों तांता लगा हुआ है। इन श्रद्धालुओं के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से साइकिल से या यात्रा करने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं छत्रपति संभाजीनगर से इस यात्रा में सम्मिलित हुए डॉक्टर विजय व्यवहारे।
5: ये जो साइकिल वारी शुरू हुई है, ये ऑल ओवर महाराष्ट्र टोटल 140 क्लब ने इस बार पंढरपुर वारी में

0: को शामिल कर लिया है। और टोटल साइक्लिस्ट अगर आप पूछेंगे तो 7,500 से 8,000 साइक्लिस्ट ने इस वारे में हिस्सा लिया था। पहले दिन शनिवार की शाम को वहां पर साइकिल सम्मेलन हुआ था। साइकिल सम्मेलन में सारे साइक्लिस्ट के क्लब्स के प्रेसिडेंट्स अपने क्लब के बारे में जानकारी देते, हम लोग साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या राइड्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इस सारी हम लोग जानकारी वहां पर देते हैं। और दूसरे दिन सुबह 6 बजे हम लोग साइकिल प्रदक्षिणा करते हैं मंदिर को, हम लोग साइकिल पे एक राउंड एक चक्कर मारते हैं। उसके बाद फिर ये सारे क्लब्स पंडरपुर रिजर्वेशन का एक बड़ा सा ग्राउंड है वहां पर इकट्ठा होता है, हम लोग वहां पर साइकिल रिंगन एक बनाते हैं। ये साइकिल राइड ऑर्गेनाइज किया था सबसे पहले IPS हरीश बैजल साहब ने 2011 में। ये शुरू हुआ था 8 साइकिलिस्ट से नासिक से पंडरपुर तक, और इस साल ये साइकिल वारी का साइकिल रिंगन का 5वां साल था और इस बार 7,500 से 8,000 साइकिलिस्ट ने इसमें हिस्सा लिया।
1: आशा है कि डॉक्टर व्यवहारे और उनके सब साथियों द्वारा दिया गया ये संदेश समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचकर हर कोई फिर से साइकिल चलाने को प्राथमिकता देगा। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से हर्षवर्धन दीक्षित।
2: और अब महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पुदुचेरी।
3: Yes, healthcare today is not just about treating illnesses. It is equally about connecting people with government health initiatives that provide financial protection, digital health services, and easier access to quality medical care. With this objective, the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research in Puducherry has launched a month-long Freedom from Illness campaign to promote the central government's flagship health schemes. Let's hear more from our correspondent.
4: The Freedom from Illness campaign, being conducted from the 16th July to 15th August, aims to facilitate free registration and on-the-spot generation of Ayushman Bharat Health Account, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, and Ayushman Vayavandana cards for eligible beneficiaries. Dedicated registration counters have been set up across the Jipmer campus to provide these services free of cost. Inaugurating the campaign, Jipmer Director Dr. Veer Singh Negi said the initiative reflects Jipmer's commitment to strengthening universal healthcare by ensuring that every eligible citizen benefits from the Government of India's flagship health schemes. He said the Ayushman Bharat program has made healthcare more accessible, affordable, inclusive and digitally enabled while providing financial protection to millions of people. Dr. Negi appealed to the public to make full use of the campaign and encouraged people to enroll their family members, neighbors and in particular senior citizens. During the campaign, trained personnel will assist beneficiaries in verifying their eligibility, creating APA numbers and generating PMJAY and Ayushman Vayavandana cards. The campaign has been held daily from 6:30 a.m. to 4 p.m. Eligible beneficiaries have been advised to carry their Aadhaar card, ration card and an Aadhaar linked mobile number for registration. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
2: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो अपने श्रोताओं को बता दें कि फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मायामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
3: And in badminton, Indian shuttler and two-time Olympic medalist PV Sindhu stormed into the women's singles final of Japan Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired during the second set of the match. Sindhu will now next face Japan's Akane Yamaguchi in tomorrow's final as she bids for the Japan Open title.
2: और अब हम याद करते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि। तो इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के जाने माने देशभक्तों में से एक अब्दुल हमीद कैसर को। कैसर विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे, गरीबों के लिए इनके दिल में बहुत प्यार था। इनके मन में बचपन से ही देशभक्ति की भावना जाग उठी थी क्योंकि जिस विद्यालय में ये शिक्षा ग्रहण करते थे वहां विद्यार्थियों में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना भरी जाती थी। अब्दुल हमीद कैसर ने देश प्रेम और त्याग के बारे में कवि की ये पंक्तियां उचित प्रतीत होती हैं। तज स्वार्थ का मार्ग अहिंसा को अपनाए, शीश झुका चुपचाप पुलिस की लाठी खाए, गए जेल हथकड़ी हाथ में कष्ट उठाए, बहुत बहुत आशीष भारत माता से पाए।
3: Indeed, a very, very befitting tribute to Abdul Hamid. And moving on, today we have a lot of artists from the Indian film industry. Kuch singers hain, kuch actresses hain, and the first superstar of India.

0: तो सबसे पहले लेकिन हम लोग बात करते हैं वो सिंका की जिनकी आज बर्थडे है। वो सिंका जब आए थे तो आप छैया छैया के गाने ने स्पेशली बड़ी धूम मचा दी थी एंड अ वेरी डिफरेंट वॉइस क्वालिटी। यस वी आर टॉकिंग अबाउट सुखविंदर सिंह। ही इज़ नॉट जस्ट अ सिंगर बट इवन अ म्यूजिक कंपोजर एंड लिरिसिस्ट एंड ही हैज़ रिकॉर्डेड सॉन्ग्स फॉर इन्यूमरेबल यू कैन से फिल्म एंड म्यूजिक एल्बम्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस ऑफ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, उर्दू एंड बंगाली एज well and somehow I think we there's a technical glitch, we cannot play Chaiya Chaiya but we wish we could have played that and talking about the first superstar of India you can say wo kaun the aap hi bataiye.
1: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की। भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना था। अपने रूमानी अंदाज, स्वाभाविक अभिनय और कामयाब फिल्मों के लंबे सिलसिले के बल पर करीब डेढ़ दशक तक सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले राजेश खन्ना के रूप में हिंदी सिनेमा को पहला ऐसा सुपरस्टार मिला जिसका जादू चाहने वालों के सिर पर चढ़कर बोलता था।
0: यस ऑफ कोर्स, एंड मेरे ख्याल से जो हम लोग ने अपने पेरेंट्स से सुना है कि खून की चिट्ठियाँ लिखती थी लड़कियाँ उनको अपने खून से, एंड वेल ऑफ कोर्स ही जस्ट वाज द फर्स्ट सुपरस्टार दैट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सॉ एंड रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट ही गार्नर्ड अ लॉट ऑफ एक्लेड्स इंक्लूडिंग 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड ऑफ कोर्स ही वाज आल्सो पोस्टमसली अवार्डेड द पद्म भूषण व्हिच इज द थर्ड हाईएस्ट civilian honor and he made his acting debut in 1966 with the film Aakhri Khat which was India's first official academy awards entry in the year 1967 aur uske alawa bahut se unke jo gaane hain especially jo kishore kumar ne gaaye aur un pe filmaye gaye I think they are just unforgettable. Without much ado let's listen to this beautiful medley.

0: वर्ष 1969 में आई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना की करियर को उड़ान दी और देखते ही देखते वो युवा दिलों की धड़कन बन गई। वर्ष 1971 में राजेश खन्ना के अभिनय करियर का सबसे यादगार साल रहा। उस वर्ष उन्होंने कटी पतंग, आनंद, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, इतनी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और सारी फिल्म जो है वो सुपरहिट रही। उनमें चाहे हाथी मेरे साथी, अंदाज जैसी सुपरहिट फिल्में थी, दो रास्ते, दुश्मन, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, कितनी ही फिल्में हैं, एक लाइन लगी हुई है, 163 फिल्मों में उन्होंने काम किया था।
1: दैट्स राइट। और मेरे ख्याल से सब लाजवाब, स्पेशली ये जो आपने दौर बताया आफ्टर आराधना, दैट वाज हिज प्रॉबली गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन सिनेमा एज वेल, नॉट जस्ट हिज करियर।
0: बिल्कुल।
1: मूविंग ऑन, आज नेक्स्ट कौन है हमारी फेरिस्ट में?
0: जी, भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका मुबारक बेगम की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1950 से 1970 के दशक के बीच बॉलीवुड के लिए सैकड़ों गीतों और गजलों को आवाज दी थी। वर्ष 1950 और 1960 के दशक के दौरान उन्होंने SD बर्मन, शंकर जयकिशन और खयाम जैसे सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों के साथ काम किया।
1: Today is also the birthday of actress Priyanka Chopra. We all know that she was the winner of the Miss World 2000 pageant and of course one of India's highest paid actresses, and now she has completely moved to the Hollywood. So unko hum log Indian films mein to kam hi dekhte hain, and nonetheless she is making the name of India proud overseas. And unki bahut si filmein thi lekin ye khoobsurat si film hai jisme unhone gaya bhi tha. Let's hear this.

और भारतीय सिनेमा के ख्याति प्राप्त पार्श्व गायक और गजल गायक भूपिंदर सिंह की आज पुण्यतिथि है। उनके गाए हुए प्रसिद्ध गीतों में मेरा रंग दे बसंती चोला, नाम गुम जाएगा, हमें प्यार किस मोड़ पे और हुजूर इस कदर आदि शामिल हैं, तो क्यों ना ये गाना सुना जाए।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि ये निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
3: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
2: जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह प्रमाण है कि जब भारत के युवाओं के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों का समर्थन मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत है। श्री बिरला ने कहा कि विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने अपनी बढ़ती तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य इंडिया पोस्ट के लिए ऐसा आधिकारिक शुभंकर

तैयार करना है जो संगठन के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। ये प्रतियोगिता सभी नागरिकों के लिए है। प्रतिभागियों को MyGov पोर्टल के माध्यम से मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी को चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल चलता रहेगा गाते गुनगुनाते का ये सफर, लेकिन पहले शुरुआत तो हो, बिल्कुल शुरुआत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही सफर का जो मजा है वो आना शुरू होता है। 5:11:40 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1। आज शनिवार की जानदार शानदार शाम आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे 80s और 90s के गाने।

हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

फिल्म आपके साथ का ये गीत। और साथियों, एक टाइम ऐसा था, दौर होता है हर किसी कलाकार का, एक अपना दौर होता है, ये समय वो था जब शब्बीर कुमार के गाने बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते थे और हर किसी को उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत डिफरेंट सी लगी और उनका जो भी गाना आता था फिल्मों में वो हिट हो जाता था, फिर चाहे वो जैसा भी क्यों ना हो। उनमें से एक गीत ये अभी तक हमने आपको सुनाया, और वैसे हम आपको बताएं कि आपके साथ के बाकी के गाने भी बहुत ज़बरदस्त सुपरहिट हुए। बहरहाल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं। अगले गीत के साथ एक छोटी सी कहानी जुड़ी है और वो कहानी कहती है कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। आपने सोचा कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है, और ऐसा ही अनुराधा पौडवाल जी के साथ हुआ। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो फिल्मों में गाएंगी और नसीब में था तो ये हुआ। अब कैसे हुआ? बस एक रोज़ उनके पति घर आए और उन्होंने कहा कि वो किचन में काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि एक छोटा सा श्लोक है, ज़रा इसे गा दो, मुझे लेकर जाना है। और वो किस चीज़ का था? अभिमान फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी, एसडी बर्मन साहब ने उनसे कहा था कि ये जो छोटा सा श्लोक है इसको अरेंज करके तुम ले आना। तो ऐसा ही होता है, हम घर में एक दूसरे का सपोर्ट ले लेते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ज़रा सा गा दो इसको, एक थोड़ा सा लय में थोड़ा सा गा दो और मुझे कंपोज करना है। उन्होंने किया। अगले दिन वो जब लेकर गए तो एसडी बर्मन साहब ने कहा कि ये किसने गाया है? तो उन्होंने बोला कि ये मेरी पत्नी ने गाया है, अनुराधा ने। कहते अरे मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो बहुत अच्छा गाती हैं, तो बहुत अच्छा गाया है। अब इतने से श्लोक के लिए लता जी को क्या बुलाएंगे हम स्टूडियो में, बहुत अच्छा गाया है, इसी को रहने देते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है अनुराधा पौडवाल की। और ठीक तकरीबन 11-12 साल पहले वो एक ऐसा गीत गाती हैं जो गाना तो लता जी ने था, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग डेट्स और कारण बहुत सारे होते हैं, उसकी वजह से ये गाना अनुराधा जी के हिस्से में आया। और जब आया तो फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री, अंग्रेज़ी में कहते हैं। कौन सा गाना था? है ना एक्साइटमेंट हो रही है जानने के लिए? आइए सुनते हैं।

इस गीत के लास्ट में जो इंस्ट्रूमेंट बज रहा था उसे मैंडोलिन कहते हैं। बहरहाल कभी किसी दूसरे गीत में इस इंस्ट्रूमेंट का जहां पर ज़्यादा प्रयोग होगा उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले गीत की तरफ जाने से पहले कुछ ख़ास आप सब के लिए। तुझे देखते ही चेहरा मेरा खिल जाता है, तुझे देखते ही चेहरा मेरा खिल जाता है, जैसे तेरे होने से मुझे सब कुछ मिल जाता है। कैसे बताऊं तू क्या है मेरे लिए, तुझे एक बार देख लूं मेरा दिन बन जाता है।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गाते गुनगुनाते हमारा ये जो सफ़र है वो आगे बढ़ रहा है और कहाँ तक पहुँचा है बस कह सकते हैं कि 5:35 हो गए हैं जी। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1, जिसमें हम आप तक पहुँचा रहे हैं बहुत खूबसूरत अपने समय के मशहूर गीत। और आज आपके साथ शनिवार की शानदार जानदार शाम सीमा वर्मा। उम्मीद करती हूँ कि जितने गीत अभी आप तक मैंने पहुँचाए हैं वो आपको भाए होंगे। और इसी के साथ आइए एक अगला गीत 1993 की फिल्म आईना से।

कभी कभी कंप्यूटर जो है वो बात मानने से इनकार कर देता है, और हमने आप तक उदित नारायण साहब की आवाज़ सुनानी थी, लेकिन ये तो हमारे कुमार सानू साहब हैं, इनको भी इंजॉय करते हैं।

वैसे कभी आपने सोचा है कि मोहब्बत में जिगर का कोई काम नहीं होता है, लेकिन शायरी में दिल के साथ जब हम जिगर को मिला देते हैं तो शायरी में एक कह सकते हैं कि डेप्थ आ जाती है। तो इसीलिए दिल तो खैर धड़कता है लेकिन जिगर हमारे शरीर को चलाता है, वो एक अलग चीज़ है। पर शायर जो है वो आज़ाद होता है और वो जिस तरह से लिखता है, कंपोज करता है संगीतकार, और फिर गाना जो है वो हिट हो जाता है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं बताऊँ कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर को हम देखते हैं, ठीक है, और सारे गाने सुनते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई म्यूज़िक डायरेक्शन फला फला ने किया है। लेकिन फिल्म पूरी की पूरी जो फिल्म होती है 2-2.5-3 घंटे की, उसका बैकग्राउंड स्कोर भी होता है। तो अमूमन बैकग्राउंड स्कोर के लिए किसी दूसरे इंसान को कहा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो म्यूज़िक कंपोज़र है गीतों का, वही बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के भी दे देते हैं। तो अब एक ऐसी फिल्म का गीत मैं आप तक पहुँचाने वाली हूँ जिस के कंपोज़र और बैकग्राउंड स्कोर सारा का सारा जतिन ललित साहब ने किया। और ये जो फिल्म रही इसका म्यूज़िक सुपरहिट हुआ जी, बहुत पसंद किया गया। और आप सोच रहे होंगे कौन सी फिल्म है, बिल्कुल बताती हूँ आपको, 90s की फिल्म है। और ये वो फिल्म है जो कह सकते हैं कि शाहरुख खान साहब का इब्तदाई सफ़र था, धीरे धीरे वो अपने आप को साबित कर रहे थे लोगों के आगे। और फिर क्या होता है आप जानते हैं, आज सुपरस्टार के रूप में हम उन्हें जानते हैं।

0: इन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर

5:55, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन, सीमा वर्मा के साथ। और अब साथियों, आपसे विदा लेनी है क्योंकि समय भी मैंने आपको बता दिया है, तो अब आप जान गए होंगे कि कुछ ही देर में हम समाचार सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आज के प्रोग्राम का, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत एक तरन्नुम भरे लहजे में आप तक पहुंचाऊंगी, इस वादे के साथ कि आप साथ रहेंगे एफएम गोल्ड 100.1 के और अपना बहुत ख्याल रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने अपनों की अमानत हैं और खुद का ख्याल रखना आपकी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। किंग अंकल के इस गीत के हवाले आपको किए जा रही हूँ। शाद रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। सीमा वर्मा को इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के कौशल विकास तंत्र की, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उभर रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने देश के प्रतिभा और कौशल विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, उद्यमिता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण तक की अनेक पहलें शामिल हैं। बदलती तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटलीकरण और वैश्विक श्रम बाजार की नई आवश्यकताओं को देखते हुए देश में कौशल विकास को नई दिशा दी जा रही है। लेकिन श्रोताओं, ये विषय केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है। कौशल विकास आज आर्थिक विकास, नवाचार, आत्मनिर्भरता, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से भी जुड़ा हुआ है। सरकार शिक्षा और कौशल के बीच की दूरी को कम करते हुए ऐसा तंत्र विकसित कर रही है जिसमें विद्यार्थी स्कूल से लेकर कार्यस्थल और फिर उद्यमिता तक निरंतर आगे बढ़ सकें। आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि भारत का कौशल विकास तंत्र क्या है, सरकार ने इसे मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, विभिन्न योजनाओं के क्या परिणाम सामने आए हैं और विकसित भारत के लक्ष्य में इन पहलों की क्या भूमिका है। श्रोताओं, भारत आज विश्व के सबसे युवा देशों में शामिल है। देश की लगभग 54% आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है, जबकि 62% से अधिक लोग कार्यशील आयु वर्ग में आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस युवा शक्ति को सही शिक्षा, प्रशिक्षण और अवसर मिले तो यही भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकती है। दूसरी ओर पूरी दुनिया में तकनीक तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटलीकरण और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नई प्रकार की दक्षताओं की मांग बढ़ रही है। ऐसे समय में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं रह गई है। उद्योगों को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो नई तकनीकों के अनुरूप स्वयं को लगातार तैयार करते रहें। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जीवन चक्र आधारित कौशल विकास मॉडल अपनाया है। इस मॉडल में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, रोजगार और उद्यमिता तक प्रत्येक चरण को एक दूसरे से जोड़ा गया है। हाल के वर्षों में सरकार ने स्कूल स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल कौशल और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई पहलें की हैं। आइए विस्तार से समझते हैं इस रिपोर्ट में।
1: भारत सरकार ने कौशल विकास को केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के आधारशिला के रूप में विकसित किया है। इस दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनेक अवसरों पर स्पष्ट किया है।
2: कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 1,30,00,000 से ज्यादा युवाओं को अनेक ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार ने देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रयासों से सामाजिक न्याय को भी बहुत बल मिला है। उद्योगों में काम करने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है स्किल, कौशल, और आज भारत सरकार की कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को ही हो रहा है।
1: समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत देश भर के 25,000 से अधिक स्कूलों में कौशल शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। दिसंबर 2025 तक 35,00,000 से अधिक विद्यार्थी इन कार्यक्रमों से जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया गया है जिससे आसपास के स्कूल भी साझा संसाधनों का उपयोग कर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को और मजबूत बनाने के लिए 1200 आधुनिक कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें जवाहर नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विकसित किए जा रहे पीएम श्री स्कूल भी विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जून 2026 तक देश के 776 जिलों में 13,000 से अधिक पीएम श्री स्कूल विकसित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार अटल टिंकर

0: इंजीनियरिंग लैब्स विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता विकसित कर रही हैं। देश के 722 जिलों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें 1,10,00,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी सरकार ने स्कूल स्तर पर विशेष पहल की है। माइक्रोसॉफ्ट HCL टेक्नोलॉजीज और नेस्कॉम के सहयोग से संचालित स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कार्यक्रम के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों और शिक्षकों को AI आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में युवा AI फॉर ऑल कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों, विशेषकर युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूलभूत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जुलाई 2026 तक इस कार्यक्रम में 85,00,000 से अधिक नामांकन दर्ज किए जा चुके हैं। इन पहलों का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में नवाचार, तकनीकी दक्षता और भविष्य के रोजगार के अनुरूप क्षमता विकसित करना है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: श्रोताओं, स्कूल स्तर पर कौशल विकास के इन पहलों ने भविष्य के कार्यबल की मजबूत नींव तैयार की है, लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था में केवल प्रारंभिक शिक्षा पर्याप्त नहीं होती। नई तकनीकों के साथ कार्यबल को लगातार प्रशिक्षित करना और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से सरकार ने युवाओं, कामकाजी लोगों, उद्यमियों और महिलाओं के लिए अनेक व्यापक कार्यक्रम शुरू किए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं अगली रिपोर्ट में।
2: भारत में कौशल विकास को नई गति देने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, उद्यमिता और रोजगार को एकीकृत किया है। इस मिशन के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश की सबसे बड़ी अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण योजना बन चुकी है। 30 जून 2026 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण के अंतर्गत 738 जिलों में 28,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ग्रामीण और वंचित वर्गों तक कौशल विकास पहुंचाने में जन शिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2018 से मार्च 2026 तक 36,00,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें महिलाओं की भागीदारी 82% से अधिक रही है। कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम अप्रेंटिसशिप भी है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ कार्य का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। सरकार प्रशिक्षुओं को स्टाइपेंड सहायता भी उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2016 से अब तक 54,00,000 से अधिक प्रशिक्षु इस योजना से जुड़ चुके हैं। इसी प्रकार देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI को आधुनिक बनाने के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका को देखते हुए फ्यूचर स्किल्स प्राइम तथा इंडिया AI मिशन के अंतर्गत भी बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। फ्यूचर स्किल्स प्राइम पर 2,800 से अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है और 33,00,000 से अधिक शिक्षार्थी इससे जुड़ चुके हैं। वहीं इंडिया AI मिशन के अंतर्गत देश भर में AI और डेटा लैब स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार केवल नौकरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रही है। PM विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल उन्नयन, आधुनिक उपकरण, ऋण सहायता और बाजार से जोड़ने की सुविधा प्रदान की जा रही है। जून 2026 तक लगभग 24,50,000 लाभार्थी बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं तथा हजारों करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को भी कौशल विकास से जोड़ा गया है। AI करियर फॉर वुमेन, स्वावलंबिनी तथा नव्या जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्रोताओं, भारत का कौशल विकास तंत्र आज शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता को एक साथ जोड़ते हुए नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में कुशल, नवाचारी और आत्मनिर्भर कार्यबल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे में कौशल विकास केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति, सामाजिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की मजबूत नींव बनता जा रहा है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग है अरुण दीप का।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका

0: निधि झाहा। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारतस्य प्रथमं निजक्षेत्रे विकसितं कक्षीय प्रक्षेपणयानं विक्रम 1 श्रीहरिकोटा स्थितात् सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्रात् प्रणोदन प्रक्रियां संपूर्य सफलताम् अगात्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्कायरूट वैज्ञानिक वृन्दः श्लाघितः। सहैव विक्रम 1 इत्यस्य साफल्यं भारतस्य अंतरिक्ष यात्रायाः ऐतिहासिकः क्षणः इति उद्घोषितम्। आतंकवादं प्रति भारतस्य शून्य सहिष्णुता न केवलं काचन उक्तिः अपितु कश्चन दृढः संकल्पः इति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अवोचत्। गगनगर्जनं पुरस्सरं वृष्टेः कारणात् उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्येषु श्वः यावत् अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना। अपि च टोक्यो नगर्यां जापान ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य अंतिम द्वन्द्वे ससंभ्रमं प्रविष्टा पीवी सिंधुः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य प्रथमं निज विकसितं कक्षीयान्तरिक्षयानं विक्रम प्रथमं अंतिम प्रणोदन प्रक्रियां संपूर्य कक्षायाम् उपग्रहान् सफल रूपेण प्रवेश्य स्वकक्षां प्राप्नोत्। अस्य यानस्य प्रक्षेपणं अद्य मध्याह्ने 5:25 आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटायाः सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्रात् समजायत।
1: 2-1-0
2: And we have lift off of Vikram 1, India's first private orbital launch
1: lift
2: vehicle.
1: Off, normal.
2: Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी प्रथम चरण का प्रज्वलन।
0: अस्माकं वार्ताहरेण विज्ञापितं यत् अनेन ऐतिहासिक पदक्षेपेण भारतं निजकक्षा प्रक्षेपण क्षमतां प्राप्तवत्सु विश्वस्य देशेषु तृतीयान्यतमो संजातः। मिशन आगमन इत्याख्येन अभियानेन विकसितं एतदन्तरिक्षयानं लघु उपग्रहाणां कृते अल्पव्यययुक्तं प्रक्षेपणसेवायै वर्तते। भारतीय अंतरिक्ष उपक्रमस्य जनकः डॉक्टर विक्रम साराभाई इत्याख्यस्य नामना व्यपदिष्टस्य अस्य विक्रम 1 यानस्य रचनायां त्रिस्तरीय दृढ़ प्रणोदक चरणानि सहैव अमोघ कक्षा प्रवेशाय रमण इत्याख्यः देवेन्द्रन गन्त्रं प्रयुक्तमस्ति। इदं यानं उपग्रहान् पृथिव्याः निम्न कक्षायां स्थापयितुं पूर्णतया सामर्थ्यं भजते। अंतरिक्ष कक्षायाम् अस्य सफल प्रवेशात् परं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दूरभाष माध्यमेन स्कायरूट एरोस्पेस दलस्य वैज्ञानिकानां च अभिनन्दनं व्याहृतवान्। श्री मोदी न्यगादीत् यत् विक्रम 1 यानस्य अयं सफलोत्कर्षः अंतरिक्ष क्षेत्रे देशस्य आत्मनिर्भरता यात्रायां कश्चन प्रमुखः कीर्तिस्तम्भो वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् इयम् ऐतिहासिकी उपलब्धिः देशस्य यूनः नवीनोन्मेषाय अग्रे आगन्तुं प्रेरयिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अब्रवीत् यत् भारतस्य आतंकवादं विरुध्य असहिष्णुता न केवलं वक्तव्यं नास्ति अपितु कार्याचरणस्य कश्चन दृढसंकल्पो वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां फॉरेस्ट फर्स्ट कॉन्क्लेव इत्यत्र संबोधयन् श्री सिंहः स्पष्टीकृतवान् यत् भारतम् आतंकवादिनः न केवलं स्वसीम्नि प्रहरिष्यति अपितु आवश्यकतानुसारं तेषाम् आश्रयेषु प्रविश्य अपि दण्डयिष्यति। सः अभाषत यत् सिन्दूराभियानावधौ समग्रं विश्वम् अस्य साक्षी अभवत् यत् तदभियानं तान्त्रिकयुद्धपद्धत्याः कञ्चन उत्कृष्टम् उदाहरणम् आसीत्।
3: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया। हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: मंत्री सविशेषं प्रख्यापितवान् यत् विगतेषु द्वादशसु वर्षेषु

0: विषयेषु नरेन्द्रमोदी सर्वकारेण रक्षाक्षेत्रस्य पुनरुद्धारः सुदृढीकरणं च स्वस्य शीर्ष प्राथमिकतासु स्वीकृतम्। श्रीसिंहः अकथयत् यत् सर्वकारेण न केवलं भारतस्य रक्षाक्षेत्रं सुदृढीकर्तुं संकल्पः धृतः, अपितु रक्षा आवश्यकतानां पूर्तये देशस्य आयात निर्भरतां न्यूनीकर्तुमपि दृढः प्रयासो विहितः।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। बहुभ्यः दिवसेभ्यः नवदिल्ल्याः जंतर मंतर प्रांगणे अनशने निरतः सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुकः ह्यः रात्रौ आवश्यक चिकित्सकीय सेवायै सर्वकारीय चिकित्सालयं प्रति नीतः। नवदिल्ल्याः आरक्षी उपायुक्तः सचिन शर्मा अवोचत् यत् श्री वांगचुक इत्यस्य उत्तरोत्तरं क्षीयमाणं स्वास्थ्यं विचिन्त्य चिकित्सकानां विशेषज्ञ परामर्शेन तथा दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशानुपालनार्थं च सः चिकित्सालयं प्रति स्थानान्तरितः। तस्मिन्नेव समये सफदरजंग चिकित्सालयस्य मुख्याधीक्षिका डॉ. चारु बम्बा संसूचयामास यत् श्री वांगचुकः सम्प्रति निरन्तर चिकित्सकीय निरीक्षणे अस्ति तथा तस्मै समुचितः उपचारः प्रदीयते। डॉक्टर बम्बा इदमपि विशदीकृतवती यत् सः पूर्णरूपेण सचेतनो वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय छत्तीसगढ़ उत्तराखंड राज्येषु अपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागस्यास्य आधिकारिक विवरणानुसारं अद्य बिहार मध्य प्रदेश पूर्वीय उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश झारखंड कर्नाटक केरल माहे ओडिशा राज्येषु तथा समस्त पूर्वोत्तर प्रांतेषु अतिवृष्टिः संभाव्यते। अनेनैव सह श्वः यावत् तटीय आन्ध्रप्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा क्षेत्रेषु वज्रपात मेघ गर्जन पुरस्सरं तीव्र झंझावातस्य अपि महती आशंका वर्तते। तत्रैव उत्तर भारते दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब प्रांतेषु अद्य नागरिकाः तीव्र उष्ण आद्र वातावरणेन नितरां संतप्ताः भविष्यन्ति। टोक्यो नगर्यां जापान ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य उपांत्य द्वंद्वं विजित्य द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री भारतस्य सुप्रसिद्धा क्रीडिका पीवी सिंधुः अद्य अंतिम चरणे स्वस्थानं सुरक्षितं अकरोत्। तस्याः प्रतिद्वंद्वी चीन देशीया चेन यू फेई प्रतियोगितायाः द्वितीय चक्रे अकस्मात् अस्वस्थता कारणात् क्रीडांगणं परित्यक्तवती, येन सिंधु अयाचितं विजयम् अवाप्य अंतिम चरणं प्रति सोत्साहं प्रातिष्ठत। अस्मिन् द्वन्द्वे सिंधुः प्रथमं चक्रम् 21:19 इत्यांकान्तरालेन विजित्य द्वितीय चक्रे अपि 15:10 इति अंकैः अग्रे धावन्ती आसीत्, यदा चीन देशीया क्रीडिका स्पर्धायै असमर्था संजाता। जापान ओपन उपाधिं समलंकर्तुं बद्ध परिकरा पीवी सिंधुः श्वः अंतिम चरणे जापान देशस्य अकाने यामाचुची इत्यनया सह क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll also be taking calls on your market related queries, but do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331 4444 2331 0481 and 2371 7106, and of course do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह हम आपके फोन कॉल्स पर पूछे गए सवालों को सीधा कार्यक्रम में शामिल करेंगे. आप हमें कॉल कीजिए 2331 4444, 2331 0481 और 2371 7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, बस इसका ख्याल करना है. आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित, सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: The benchmark domestic indices register modest weekly gains. US markets wrap up week on negative note. And global crude oil prices jump around 16% this week amid geopolitical concerns.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में इस सप्ताह मामूली बढ़त दर्ज की गई. अमरीकी शेयर बाजार इस सप्ताह घाटे में बंद हुए और भू राजनीतिक चिंताओं के बीच इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, आइए अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह किस तरीके से हमारे घरेलू शेयर सूचकांकों ने प्रदर्शन किया. इस सप्ताह घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली बढ़त देखी गई. बड़ी कंपनियों के उम्मीद से बेहतर परिणामों के बाद कमजोर वैश्विक संकेतों, रुपए में गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद बाजार में जबरदस्त खरीदारी हुई. इस हफ्ते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.7% बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ 24,334 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार का प्रदर्शन प्रमुख शेयर सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा. इस सप्ताह मिड कैप 100 सूचकांक 1% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.6% नीचे आए. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह रुपया 96 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 96 रुपए और 28 पैसे पर बंद हुआ. जितेंद्र जुड़ रहे हैं श्रोताओं हमारे साथ जयपुर से. बहुत बहुत अभिनंदन.
3: हाँ, जी अपना सवाल पूछिए. हाँ सर, ये मैं किसी के बिहाफ से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो निफ्टी 50 या 100 तक भी पकड़ लीजिए, मैं बोला पूछ के ही बता दूंगा कि वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेस करना चाह रहा शेयर, उसका डीमेट अकाउंट है, तो कौन सा सेक्टर जैसे वो अभी स्टार्ट करें इंस्टॉलमेंट लेने के लिए? 50 तक भी चलेगा निफ्टी 50 या 100?
2: अच्छा, जितेंद्र जी का शायद मतलब इंस्टॉलमेंट से SIP फॉर्मेट है, आप स्टैगर्ड इसको परचेज कहते हैं. मुझे लगा जितेंद्र जी, देखिए पहली बात तो कंपनी की चॉइस बहुत अच्छी होनी चाहिए. सेक्टर बताने से पहले मैं आपको ये सावधान करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छे सेक्टर में भी बैड फिशेस होती हैं, उसमें ऐसे कंपनीज आ जाती हैं. तो 4-5 सेक्टर्स का मैं नाम ले लेता हूं, आप उसको ध्यान में रखिए. डिफेंस को ध्यान में रखिए, FMCG को ध्यान में रखिए, और आप ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रख सकते हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कंपनीज ऑटोमोबाइल कंपनी ज्यादा बना रहे हैं, आप उनको ध्यान में रख सकते हैं. और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े जो शेयर्स हैं उनको आप ध्यान में रख सकते हैं. कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं, उन पे आप ध्यान रख सकते हैं. 4-5 सेक्टर्स हैं, पर मैं दोहराता हूं कि कंपनी का जो

0: चयन है वो बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स आपको पूरी तरह से स्टडी करने चाहिए, उनका प्रॉफिट, उनका ऑर्डर बुक, उनके प्रमोटर्स कैसे हैं, उनमें कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही है, उनका भविष्य कैसा है, ये सब चीज़ें देख के तब आपके आपके फ्रेंड जिनके बिहाफ पे आप पूछ रहे हैं आप उनको सारी बातें बताइएगा, कोई बात मिस मत करिएगा वरना संदेश अधूरा रह जाएगा।
1: आवर नेक्स्ट कॉलर इज वी आर नाथ फ्रॉम दिल्ली। मिस्टर नाथ
2: जी, जी सर, जी सर
1: जी, सवाल पूछे आपने।
2: हेलो
0: जी,
2: मुझे पूछना यह है कि जो शेयर बेचते हैं या खरीदते हैं
0: जी,
2: तो उसका जो प्राइस सेल प्राइस और जो ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो होती है अबाउट 1% को कहाँ दिखाया जाए?
0: कहाँ दिखाया जाए? आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वी आर नाथ जी जानते हैं, जानना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ दिखा, क्योंकि जब आप इनकी अकाउंटिंग करते हैं, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, क्योंकि होता क्या है प्राची और निशित के, जब जो लोग इसमें रेगुलर सेल परचेज करते हैं तो वो कैपिटल गेन की जगह बिजनेस इनकम होता है, उसको हम कहते हैं होल्डिंग शेयर्स इन स्टॉक एंड ट्रेड। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें अलग से एक खाता खोला जाता है जिसमें ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी दिखाई जाती है, बाकी ये आपके शेयर्स की प्राइस का हिस्सा ही बनता है। अगर आप इसको आयकर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे, क्योंकि आयकर की डेट चल रही है, मैं गेस कर रहा हूं कि शायद नाथ साहब वो पूछना चाह रहे हो, तो इसको आप अपनी परचेज प्राइस में से ऐड करके या सेल में से घटा के आप अपना नेट कैपिटल गेन निकाल सकते हैं।
3: दिल्ली से हमारे साथ राजीव जुड़ रहे हैं। राजीव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार मार्केट मंत्रा जी, ये जैसे मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग 50% आईटी सेक्टर में लगा रखा है, तो इस महीने रुकना चाहिए कि सेल कर दूं सर? कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट है?
0: राजीव जी का बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आईटी सेक्टर निरंतर चर्चा में प्राची और निश्चित बना हुआ है, आप देख ही रहे हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी एआई से खतरा, कभी लेऑफ्स का खतरा, कभी अमेरिका में मंदी का खतरा, कभी दुनिया में मंदी का खतरा, बहुत रोलर कोस्टर राइड आईटी सेक्टर की आ रही है। तो राजीव जी, मैं सलाह दूंगा, आपका जो विचार है अच्छा है, अगर आप अभी मुनाफे में हैं तो बुरा विचार नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और प्रॉफिट बुक करके और इसको नए सिरे से आप कुछ और सेक्टर्स का भी चयन कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में तो लगा ही सकते हैं, पर मैंने अभी कुछ सेक्टर्स का नाम लिया, एफएमसीजी है, डिफेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑटोमोबाइल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फोकस्ड हैं उन पे लगा सकते हैं। तो आप इसको बड़ा हिस्सा एक ही सेक्टर में तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए राजीव, ये भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। तो आपने काफी बड़ा हिस्सा एक ही सेक्टर में लगा रखा, और अगर आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट है और ऐसे माहौल में प्रॉफिट है तो मुझे लग रहा है ये बुरा आइडिया नहीं होगा, आप प्रॉफिट उस पर बुक करके और नए सिरे से मार्केट में जब जब करेक्शन आए स्टैगर्ड फॉर्म में, जिसको हम SIP कहते हैं, SIP मतलब सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, उस तरीके से इसको लगाएं।
1: नेक्स्ट कॉलर इज अमित झा फ्रॉम दिल्ली। अमित,
5: हाँ नमस्कार सर।
1: नमस्कार
5: सभी को। नमस्कार सर, कोहली सर। सर प्रश्न मेरा मिलता जुलता ये सारे श्रोताओं ने पूछ लिया, लेकिन थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूँ सर
0: जी,
5: कि जैसे आपने कहा कि सेक्टर की कंपनी आपको देखना चाहिए, उनके फंडामेंटल क्या है, उनके ऑर्डर्स बुक क्या है, उनके पोर्टफोलियो सॉरी कैश फ्लो क्या है, जो भी है अच्छा होती है। तो सर मैंने तो अभी रिसेंटली 2 सालों में देखा है कि एक आईटी की जो आप चर्चा कर ही रहे हो, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी सारे कुछ ठीक थे, फंडामेंटल भी ठीक थे, मैनेजमेंट भी ठीक था, बैंकिंग सेक्टर की लीडर कंपनी, नाम नहीं लूंगा जैसे आप कार्यक्रम नहीं लेना होता, सेक्टर की बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, टॉप लीडर कंपनी सर, और अचानक से उसमें ऐसी कोई न्यूज आ जाती है और स्टॉक एकदम से गिरने लगता है सर, और 30-40% टूट जाती है, तो अब उस दौरान हम कौन सा फंडामेंटल देखें? धन्यवाद सर।
0: बहुत अच्छा सवाल अमित ने किया है निश्चित प्राची, क्योंकि ये अक्सर निवेशकों को ये रहता है कि हमने सब फंडामेंटल्स चेक किए, सब कुछ अच्छा था, ऑर्डर बुक अच्छी थी, बॉटम लाइंस अच्छी थी, टॉप लाइंस, आप देखिए न्यूज पर तो अमित किसी का कंट्रोल नहीं है,
3: बिल्कुल,
0: अगर कोई ऐसी खबर कंपनी से कोई ऐसी खबर निकल के आती है, उनके बारे में कोई आक्षेप हो जाता है, कोई उनके मैनेजमेंट से संबंधित कई बार कोई खामी निकल आती है, इस पर तो देखिए किसी तो देखिए शेयर मार्केट में जो निवेश होता है अमित, उसमें जोखिम तो भरा होता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ी, यही जोखिम होते हैं कि आपने सब कुछ देखा फिर भी 30-40%, पर अगर कोई खबर बहुत बुरी नहीं थी अमित, तो वो रिकवर भी कर जाता है। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा, बहुत ही बुरी खबर आ गई क्योंकि हम अब देखिए स्पेसिफिक्स तो डिस्कस करते नहीं है, या तो मुझे कंपनी का हम नाम लेते होते तो हम देखते क्या खबर आई है, क्यों करेक्शन आई, तो ये सब हम नहीं करते। तो आपको मैं जनरल तौर पर बता देता हूं कि अगर कोई छोटी मोटी बात है तो शेयर मार्केट में एक अच्छी बात यह है कि वो भुलाती भी बहुत जल्दी है, वो शॉर्ट मेमोरी होती है, भुला के आगे चल पड़ते हैं। देखिए ना पिछले सालों में कितनी घटनाएं घटी, आज आपको याद भी नहीं होंगी। तो इसलिए अगर कोई बड़ी चीज नहीं है तो आप घबराएं नहीं, पैनिक ना करें, वो रिकवर कर जाएगा। और ये जोखिम तो आपको साथ में हमेशा ही रहेगा क्योंकि खबरों पे हम इस समय एक खबर के प्लेटफॉर्म पे हैं, आकाशवाणी पर हैं, यहाँ से खबरों की ज्यादा चर्चा होती है। तो हमसे अच्छा मुझे लगता है हमारे जो माननीय एंकर, इनसे अच्छा कौन बता सकता है कि खबर कब क्या आ जाए, इसको कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता। अमित,
1: And moving on to the US markets, major US indices ended lower yesterday and posted weekly losses dragged by technology shares. The Nasdaq Composite Index shed 1.4%, S&P 500 dipped 1%, and the Dow Jones Industrial Average slipped around 0.8%. For the week, the Nasdaq slid 2.9%, the S&P 500 declined by 1.6%, while the Dow fell 0.9%.
3: Aur Kolkata se hamare saath Animesh jud rahe hain. Animesh ji, karyakram mein aapka abhinandan. कृपया अपना सवाल।
6: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र।
3: गुड इवनिंग,
6: दिस अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता।
0: यस अनिमेश
6: सर, आई एम सुपर एनुएटेड मैन, शुड आई गो इन फॉर एनी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड फॉर पेंशन स्कीम, वुड इट बी रिस्क फ्री और आई शुड फॉलो द जनरल रूल एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? थैंक यू सर।
0: Animesh, I think the best way for you should be that since you're retired, and you know, generally at the age of retirement, we do not recommend being very adventurous with your investments, you know. So you should not be going very aggressive. So investing directly in stock markets, unless you have complete knowledge and you are very, very research based, or you are under guidance of a SEBI registered finance professional, then maybe yes. But otherwise, if you use your own judgments and you've got limited time at hand, limited aptitude at hand, then I would suggest you take the mutual fund route. And incidentally, on Sundays, Akashwani and this very show, Market Mantra, a mutual fund expert comes which guides you on, you know, what kind of investments and what's the duration of investment.
3: Bilkul.
0: So direct market depends on how much access you have to the things I mentioned. But mutual funds, yes, you can try, because there you can exit anytime, and you can keep a watch on how the fund has been performing.
1: Right. And ICICI Bank today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The bank's standalone net profit rose around 16% to 14,804.5 crore rupees on an annual basis. The bank's net interest income for the quarter grew by 12.7% to 24,384 crore rupees. The ICICI Bank's net NPA ratio fell by 6 basis points to 0.35% on an annual basis.
3: एक्सिस बैंक ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अपने वित्तीय परिणाम साझा किए हैं। बैंक का शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर लगभग 23% बढ़कर 7,114 करोड़ रुपए हो गया है। इस तिमाही के लिए बैंक की शुद्ध ब्याज आय 8% से बढ़कर 14,646 करोड़ रुपए हो गई है। एक्सिस बैंक का कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात वार्षिक आधार पर 6 आधार अंक लुढ़ककर 0.39% रह गया है। और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। केशव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
7: हेलो, नमस्कार जी।
3: नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए।
7: सरद जी को नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे अभी जो विश्व में तेल की प्रॉब्लम चल रही है, तो हम हिंदुस्तान में टू व्हीलर अगर बैटरी वाला लेने जाते हैं तो टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसका कितना प्रभाव हो रहा है? और सुनने में ये भी आया कि चाइना की तरफ से जो बैटरियां बनती थी तो बैटरियां उन्होंने कंट्रोल कर दी है और पाबंदी लगा दी है, और आने वाले टाइम में क्या ये बैटरी वाली गाड़ियों में भी क्या प्रॉब्लम आने के चांसेस है, इसके लिए आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? धन्यवाद।
0: नहीं केशव, बैटरी में आगे इतनी प्रॉब्लम होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भारत में भी अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो छोटी छोटी कंपनीज भी अब टू व्हीलर्स बना रही हैं। हम लोग इस समय दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, नोएडा में मेरी जानकारी में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स अब टू व्हीलर्स के खुल रहे हैं। तो ये लोग लिथियम बैटरीज हम लोग वैसे तो हम चाइना से भी मंगाते हैं, पर अब भारत में भी इस पर बहुत काम चल रहा है। मुझे लगता है भविष्य का जो ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर होने वाला है वो बैटरी ओरिएंटेड होने वाला है, और जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल डीजल और क्रूड को लेके अभी चिंताएं हैं, दुनिया में जो परिस्थिति है, नहीं मुझे नहीं लगता है केशव के आने, बल्कि आने वाले समय में अभी जो दिक्कतें हैं वो उल्टा रिजॉल्व हो जाएंगी, वो उनका निस्तारण हो जाएगा और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप जो बैटरी के स्कूटर या कार लेना चाहते हैं आप ले, अब तो सरकार भी उसको बढ़ावा दे रही है। आप अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार तो उस पर इंसेंटिव भी दे रही है, टू व्हीलर्स पे भी है, कारों पर भी, या पुरानी कार लेकर आते हैं उसको आप डिस्कार्ड करते हैं तो उस पर भी इंसेंटिव है। तो ये आपको जो आ रही है वो टेम्परेरी होगी, तो मुझे लग रहा है आगे आपको ये नहीं आएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है।

0: Right, and our next caller is Gopal from Mumbai. Gopal. Gopal, can you hear us? All right. In the meanwhile, HDFC Bank as well today reported its financial results for Q1 FY27. The bank's standalone net profit rose 5% to around 19,060 crore rupees on an annual basis. The bank's net interest income for the quarter grew by 6.7% to 33,530 crore rupees. HDFC Bank's net non-performing asset ratio fell by 6 basis points to 0.41% on an annual basis.
1: और संजीव जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से. संजीव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्कार सभी जनों को. मेरे तरफ से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम 1 लाख रुपए का शेयर लेते हैं और उसे 1,20,000 में बेचते हैं, तो हमारे जो प्रॉफिट पे ही टैक्स लगेगा या फिर 1 लाख पे लगेगा पूरे 1.25 लाख पे?
3: संजीव, अगर आप मात्र 1 लाख का खरीदते हैं और 1,20,000 का बेच देते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि 1,25,000 तक की इनकम टैक्स में इक्विटी शेयर्स बेचने पर एक एग्जेम्पशन है, एक विशेष छूट दी हुई है. तो अगर आप इसको एक उदाहरण के तौर पर पूछ रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि टैक्स तो खाली 20,000 पर लगेगा, और अगर आपने शॉर्ट टर्म बेचा है, लॉन्ग टर्म बेचा है, तो 12.5% लगेगा. आपने शॉर्ट टर्म बेचा है तो उस पर 20% लगेगा. परंतु अगर खाली एक ही ट्रांजैक्शन आपका है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, तो 1,25,000 तक, जब तक आपका ये पूरा मुनाफा, ये सेल नहीं, पूरा मुनाफा आपका 1,25,000 तक का, इसमें से माफ होता है. तो अगर आपकी खाली ट्रांजैक्शन है, तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके 20,000 पे 0 टैक्स लगेगा. देखिए, मैंने एक कदम और आगे बढ़ा के आपको बता दिया. जी,
0: एंड कोटक महिंद्रा बैंक्स स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट रोज अराउंड 26% ऑन एन एनुअल बेसिस टू 4,123 crore rupees इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल. द बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम for the quarter grew by 9% to 7,928 crore rupees. Kotak Mahindra Bank's net NPA ratio fell by 6 basis points to 2.27% on an annual basis.
1: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कल मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही का परिणाम जारी किया है. कंपनी की आय सालाना आधार पर 25% से अधिक बढ़कर करीब 3,11,850 करोड़ रुपया हो गई है. हर तिमाही के नतीजों के आधार पर ये आय 4.3% बढ़ी है. कंपनी का शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 22.4% से घटकर 20,946 करोड़ रुपया रह गया है. और गोपाल मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल
4: जी. नमस्कार मार्केट मंदर टीम को.
1: नमस्कार,
4: मेरे दो सवाल हैं. ये जो आरबीआई ने इंटरेस्ट ये रेट नहीं बढ़ाई, क्या उसकी मजबूरी थी क्या? जबकि महंगाई तो कमर तोड़ गई है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गई है, उसकी मजबूरी थी? पहला सवाल ये है, नहीं बढ़ाने का इंटरेस्ट. दूसरा सवाल ये है, फ्राइडे को आप देखिए इंडेक्स चली इतनी 1000 पॉइंट बीएसई और 275 एनएसई, एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 3000 डिक्लाइन था, 1000 एडवांस. पिछले 2 साल से इक्विटी मार्केट की बहुत हालत खराब है, कई इक्विटीज तो वेंटिलेटर पे पहुंच गए हैं. तो ये इसके इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एलसीबी जिम्मेदार है, बीएसई एनएसई जिम्मेदार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, या प्रमोटर जिम्मेदार है? हालत
3: गोपाल जी, आपका पहला सवाल आरबीआई रिपो रेट और इन्फ्लेशन से संबंधित है. अभी इन्फ्लेशन देखिए, आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है वो 2% से 6% का होता है. तो अभी जो सीपीआई के नंबर्स आए वो 4.38 के आए. अगर लगातार महंगाई सीपीआई जिसको हम कहते हैं वो लगातार ऊपर बनी रहती है, तो फिर आरबीआई कहीं, इसको हम हॉकिश स्टैंस कहते हैं, आरबीआई अपना हॉकिश स्टैंस लेगा. पर अभी देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है गोपाल जी, आपको ध्यान रखना होगा कि वो जीडीपी की रफ्तार को लगाम देता है. तो आरबीआई जब तक नहीं बढ़ाता, जब तक उसको पूरी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यकीन नहीं हो जाता कि अब महंगाई को वाकई रोकना है, तो अगर ये लगातार आगे बढ़ता रहा तो आरबीआई को हो सकता है आरबीआई इस पर आगने वाली एमपीसीज में कॉल ले. दूसरा आपने पूछा एडवांस डिक्लाइन, ये दो साल से हुआ हुआ है. ना एनएससी जिम्मेवार है, ना बीएससी जिम्मेवार है, ना भारत सरकार जिम्मेवार है, ना सेबी जिम्मेवार है, ना कंपनी जिम्मेवार है. ये परिस्थितियां इस प्रकार की हैं. मार्केट देखिए, मार्केट डिमांड और सप्लाई पर चलता है गोपाल जी. आप भी खरीदते होंगे, बेचते होंगे, लोग खरीदते बेचते हैं. अगर बीएससी एनएससी या भारत सरकार जिम्मेवार होने लग जाए, तो फिर तो मार्केट को मार्केट नहीं कहेंगे, फिर तो उसको एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म कहेंगे. तो मार्केट को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है. जैसे जैसे कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं गोपाल जी, आपने देखा होगा उनके बहुत अच्छे. आप देखिए, अभी जो आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो मुझे बताई, उसमें बैंकिंग के आप देखिए क्या रिटर्न उस दिन क्या उछला है. तो मुझे लगता है मार्केट में सेक्टर रोटेशन होती रहती है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती रहती हैं, डिमांड सप्लाई बढ़ती रहती है, कंपनीज के रिजल्ट्स आते रहते हैं। मैं अगर मार्केट के उठने गिरने के कारण बताऊं तो मुझे पूरा का पूरा मार्केट मंत्र का आधा घंटा सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने में लग जाएगा जी।
1: आगे बढ़ते हैं और मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: हेलो, गुड इवनिंग
1: जी।
5: मेरा सवाल है कि अमेरिका और ईरान का वॉर तो अभी कुछ अनिश्चितता से भरा हुआ है, कभी हुर्मुज खुली होती है कभी नहीं होती है, तो ऐसे हालत में जो ऑयल कंपनीज है
3: जी,
5: इंडिया में जो है उसका जो ऑयल कंपनीज के शेयर लेना कितना अच्छा रहेगा, वो लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और आईटी सेक्टर में उसका क्या फर्क पड़ सकता है।
3: देखिए, ऑयल कंपनीज के शेयर्स अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कुछ दिन के लिए शायद दूर रहने की सलाह दूं, क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव क्रूड की प्राइसेस में आप देख ही रहे हैं बना हुआ है। पिछले कई ऊपर गया, फिर उसके बाद 71-72 डॉलर आया, फिर 85-86 डॉलर चल गया। अभी बारबल मंदेब जो सऊदी अरेबिया के पास है उसको कुछ बंद होने की खबरें आ रही हैं, हो सकता है अगर बंद हो जाए तो क्रूड और ऊपर जाए। तो मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आप मुझे बहुत सीनियर प्रश्नकर्ता हैं, आप बहुत पुराने वेटरन हैं, तो आपके लिए मुझे लग रहा है ऑयल कंपनी से आप दूर रह सकते हैं। आईटी कंपनीज भी काफी उतार चढ़ाव, अभी हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि आईटी कंपनीज में, पर आईटी कंपनीज में भी आप सिलेक्टेड कंपनीज में जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है, जिनका एआई थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जिनके एआई एप्लीकेशंस और एआई टूल्स जिस पे काम कर रहे हैं, जिसकी एआई रिसर्च अच्छी है, उन पर आप सिलेक्टिवली आप उसको चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आईटी सेक्टर ने काफी उतार चढ़ाव दिखाया है, अभी हम थोड़ी देर पहले उसकी काफी डिटेल में रत्नाकर जी चर्चा कर चुके हैं।
0: नेक्स्ट कॉलर इज आरपी उपाध्याय फ्रॉम दिल्ली।
6: नमस्कार कोल साहब।
3: नमस्कार उपाध्याय जी।
6: कोल साहब, एक एडवाइस लेनी थी कि मैं 78 इयर्स सीनियर सिटीजन हूँ, तो अब तक मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता था
3: जी।
6: इस साल 12 लाख के उससे मेरे पे टैक्स नहीं लग रहा, तो मुझे भरना चाहिए या नहीं?
3: अच्छा, देखिए उपाध्याय जी, उपाध्याय जी ने शायद अपना रेडियो सेट ऑन किया हुआ था। अगर 12 लाख की वजह से आपका इनकम एग्जेम्ट हो रहा है, इसको पुराने एक्ट में 87A कहते थे, शायद उपाध्याय जी को वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, अगर उसकी वजह से हो रहा है तो फिर आपको भरना पड़ेगा। अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे हैं, जैसे अब नए रिजीम में 4 लाख है, पुराने रिजीम में 2.5 लाख है, जिस व्यक्ति की बेसिक एग्जेम्पशन से नीचे की इनकम है उसको भरना जरूरी नहीं है, परंतु अगर इस 87A के रिबेट की वजह से आपकी इनकम कम होती है तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको, 78 साल के हैं प्राची और निशित, और देखिए अभी भी वो कितने लॉ अवॉइडिंग है, उनको पूरी इस बात की चिंता है कि मेरी भले ही मेरा टैक्स नहीं है पर मुझे रिटर्न भरना चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत सारे युवाओं को उपाध्याय जी से सीखना चाहिए।
0: राइट।
1: और दिल्ली से हमारे साथ मुकेश जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
7: गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स हैं और ग्रीन एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं
3: जी,
7: उनमें जैसा कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर की जो कंडीशन रेगुलर बन रही है जिसकी वजह से पावर के क्राइसिस हो रहे हैं
3: जी,
7: तो उस चीज को देखते हुए अभी इसमें जो इस रेट पे इन्वेस्टमेंट करा जाए तो मतलब एक क्वार्टर रुकने में मतलब क्या प्रॉफिटेबल होंगे वो? और दूसरा है सर, मेरा जो बैंकिंग सेक्टर्स के जो टॉप लीडर्स बैंक हैं उनमें क्या मतलब अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए?
3: देखिए, पहले मैं आपके मुकेश जी बाद वाले सवाल का लेता हूं कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, अभी हमारे माननीय एंकर्स ने कुछ बैंकों के रिजल्ट्स भी पढ़े, बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर भारत का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप सिलेक्टिव बेसिस पे चाहे सरकारी बैंक हो चाहे निजी क्षेत्र के बैंक हो, आप उनको लंबे वक्त के लिए रख सकते हैं। आपका इनका पहला सवाल था कि रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के शेयर्स के लिए क्या एक क्वार्टर वेट करना चाहिए? मुझे लगता है मुकेश के अगर अच्छी कंपनी आपको मिल रही है ग्रीन एनर्जी में तो उसमें जितनी जल्दी आप उस बस में सवार हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लंबे वक्त के लिए यही फ्यूचर है। जैसा आप बात कर रहे हैं अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, अदरवाइज भी फॉसिल फ्यूल से हटके दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहती है, तो मुझे लग रहा है कि आपको अगर आपके पास फंड्स हैं और आप पूरी रिसर्च कर रहे हैं तो आप इसको जल्दी भी ले लेंगे, परंतु कंपनी का चयन जो है वो बहुत ही चिंतन करके होना चाहिए।
1: बिल्कुल। दिल्ली से हमारे साथ संतोष जुड़ रहे हैं। संतोष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
8: हेलो
1: जी, अपना सवाल पूछिए।
8: हाँ नमस्कार कोहली जी।
3: नमस्कार संतोष जी।
8: हाँ मैं आपका फैन हूँ, मैं दिल्ली आपकी वीडियो भी देखता हूँ।
3: प्लेजर सर।
8: मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए नहीं, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि

0: मार्केट में इस साल में कैसा रहेगा, दिसंबर तक मार्केट कैसा रहेगा निफ्टी?
1: चलिए संतोष जी, गोल्ड की पहले बात कर लेते हैं। गोल्ड में मुझे लग रहा है इस समय गोल्ड $4,000 के आसपास है, भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 1,40,000-1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच में घूम रहा है। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, मैं ये निश्चित और प्राची को भी जानकारी उनके लिए भी शायद सबके लिए काम की है, तो कि HSBC है, मॉर्गन स्टैनली है, JP, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जो इसको ट्रैक करती हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उन सबका कहना यह है कि वो सोना लंबे वक्त के लिए बहुत ही लाभदायक रह सकता है, परंतु शॉर्ट टर्म में क्योंकि ये जो क्राइसिस चल रही है, डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड्स है, इनकी वजह से उतार चढ़ाव जो आपको लगातार देख, हो सकता है यहां से और नीचे भी जाए, तो इसलिए लोगों को सलाह ये, शायद मैं होता तो ये करता कि मैं थोड़ा थोड़ा करके जब जब करेक्शन आती तो लेती। बाकी निवेश की सलाह तो जैसे हम शुरू में हमारे माननीय एंकर पढ़ते हैं कि आपको किसी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल से पूछना चाहिए, हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट आपने पूछा कैसी रहेगी, मार्केट इज एनीबडीज गेस। युद्ध पे नजर रखते हैं, देखिए सारी नजर गड़ा के रखिए वेस्ट एशिया पे, वहां से जो खबरें आती हैं उसके आधार पर मार्केट ऐसे नाच रही है जैसे सपेरे के आगे जो है बीन बजाता है तो सांप नाचता है, इस तरीके से नाच रही है जी।
2: राइट, एंड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अंडर मिशन Agaman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Sharaji, how do you see this? This is a really remarkable, you know, an achievement.
1: Well, this is indeed a big leap for the Indian space tech industry, because private startups, we've been talking for a very long time. And I think a private rocket being launched in India for the first time, I think this is a huge achievement, I would say. And this is very close to our Prime Minister's heart as well, because he wanted these space startups to come, which was so far been the domain of the government. A big, I would say, very, very laudable effort.
2: Right. And moving on to oil, the global crude oil prices rose around 16% this week. The surge was driven by an escalation in fighting between the U.S. and Iran as both sides traded retaliatory strikes. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude September futures surged 15.9% to settle at $88.10 per barrel. West Texas Intermediate crude August futures jumped 15.5% to end at $82.49 per barrel. And meanwhile, we are joined in by Satish from Delhi. Satish, jaldi sawal puchhe.
3: Sir, my question is, in this new tax regime, after 12 lakhs threshold limit, this housing loan interest and housing loan installment is not detectable?
1: Satish ji, both are not deductible because new tax regime has been made in a manner where deductions have been done away with. So the section 24 deduction, which used to be there for interest, and under section 80C for principal repayment, unfortunately in the new regime they are both not eligible. But new regime otherwise is very attractive, which I'm sure you must be ending up with lesser tax because of new regime. I would suggest you should try calculating with both the regimes, and whichever is beneficial you can choose that.
4: शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच प्राची, थैंक यू सो मच निशित,
2: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रजिस्टर मॉडेस्ट वीकली गेन्स, US मार्केट्स रैप अप वीक ऑन अ नेगेटिव नोट, and global crude oil prices jump around 16% this week amid geopolitical concerns. And that's all we have in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरो स्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयर स्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानीरुविदे नेमागागी नादीरुविदे नानागागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हरा दिया। दूसरे गेम में चेन युफेई की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The 72nd National Film Awards were announced today. The Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. The award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book. In the non-feature film category, Shivpal Singh Kang will get Best Music Direction Award for Parath 41, Digrachay Magavar. Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. The Best Non-Feature Film is Mangar, directed by Sumira Roy. In Gujarat, 5 people were killed and several others injured today after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing and processing unit on the Ramol Gadrad Road in Ahmedabad. Our correspondent reports that the Rapid Action Force personnel rushed to the site immediately and retrieved the dead bodies and rescued the trapped and injured workers from the blazing structures. Several firefighting vehicles also rushed to the spot and brought the blaze under control. Cooling operations are currently underway. The injured have been admitted to nearby hospitals for treatment. Expressing deep condolences, Chief Minister Bhupendra Patel termed the incident extremely tragic and prayed for the deceased and the speedy recovery of the injured. The Chief Minister announced an ex gratia assistance of 4 lakh rupees to the next of the kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. In Andhra Pradesh, 5 fishermen lost their lives after drowning in the Godavari River near Golagudam village of Polavaram district today. The victims had gone to the river for fishing when they were reportedly swept away by the strong current. Police, along with local rescue teams and villagers, launched a search operation after receiving information about the incident. The bodies of all the 5 victims were recovered from the river. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed profound grief over the incident and conveyed his condolences to the bereaved families. India's first privately developed orbital rocket Vikram-1 under Mission Agaman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the 3rd country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agaman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephonic call. Mr. Modi said the successful launch of Vikram-1 under Mission Agaman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector.
1: भगवान भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई दो काम किए हैं एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ
2: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also congratulated Team Skyroot on the successful launch of Vikram-1. The minister said the mission marks a major milestone for India's expanding private space sector. The Indian Olympic Association, IOA, today announced that Olympic medalists Meerabai Chanu and Lavlina Borgohain will serve as India's flag and baton bearers at the opening ceremony of the Commonwealth Games in Glasgow. The opening ceremony of the scaled-down multi-sport event will be held on the 23rd of this month at the OVO Hydro Arena. In a press release, IOA President P.T. Usha said, the honour recognises their outstanding contribution to Indian sport. And in a FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in their third-place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

0: इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: शुभमय, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स यानी कि निवेश अनुकूलता सूचकांक क्या है और इससे हम क्या समझें?
1: अगर हम सहज भाषा में इसकी बात करें तो कोई अगर किसी राज्य में जाके अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो स्टेट में करना कितना संभव है और या कितना असंभव है, बस यही है इन फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। हम इसको आगे इस पर बहुत सारे बिंदु पर ध्यान दे सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि करना संभव है, करना असंभव है, तो संभव का मतलब क्या होता है, असंभव का मतलब क्या होता है, किस जगह पे कौन सा राज्य क्या सुविधा देती है, कहाँ पे अड़चने आ जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में अगर हम बात भी करें तब भी बात वहीं पे से शुरू होती है कि स्टेट में काम करना आराम है, आसान है या दुष्कर है। तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स का बेसिक या जिसे कहते हैं अंडरलाइंग पॉइंट। और आपने जैसे बताया सही कि ये नीति आयोग ने ये इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस इंडेक्स एक जारी किए हैं और ये सिर्फ जैसे आपको मैं बता दूं ये वाला चीज इज पहली बार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, बट इस तरीके का स्टेट्स की से मैं कहूं कि स्टेट्स का कितना यूजफुल है, कितना किस तरीके का स्टेट्स के पॉलिसीज हैं, इस पर बहुत सारे चर्चाएं हुई हैं। नीति आयोग की तरफ से ही कई सारे रिपोर्ट्स पिछले सालों में आ चुके हैं। एक रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि वो भी मोर ऑर लेस सेम चीजों को ही दर्शाता है। एक रिपोर्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या किस स्टेट्स किसने तरीके से अपने पॉलिसीज को बनाए हैं ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि भाई यहाँ जाना चाहिए या यहाँ पे जाने से क्या क्या संभावनाएं या क्या क्या सहायता मिल सकती है।
0: लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें शुभमय, तो कहाँ तक ये जो इंडेक्स सामने आया है इस ग्राउंड रियलिटी को कहाँ तक दर्शाता है, किस हद तक सफलतापूर्वक दर्शाता है अगर मैं पूछूं आपसे?
1: अशीत जी, ग्राउंड रियलिटी की ही इसमें ये मापदंड है या इसका ही अनुसरण किया गया है। सिंपल बात है कि अगर एक निवेशक किसी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य में उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से प्रोडक्ट्स हैं या कौन से सर्विसेज हैं जिस पे वो स्टेट माना जाता है, अगर है तो उन प्रोडक्ट्स के बिजनेस में स्टेट कितनी सहायता देती है या कितने तरीके का अपॉर्चुनिटीज सामने प्रदान करते हैं। एक तरफ होता है इसमें कि हम अगर मोटा मोटी अगर इन चीजों को देखें कि एक तरफ तो होता है इंडिया में कि राजतंत्र यानी कि ब्यूरोक्रेसी वो कितना सहायक है या वो कितना दुष्कर है हैंडल करने में, म्युनिसिपल गवर्नेंस म्युनिसिपल लॉज किस स्टेट्स के कितने अच्छी तरह से बने हुए हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक की यात्रा में कितने जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस है या कितनी
0: सुविधाएं
1: आसानी से जा सकते हैं। तो दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज। एंड फिर नेक्स्ट स्टेज में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से है कि भाई बिजली का लाइन, पानी की सप्लाई, वर्कर्स आएंगे सर्विसेज के लिए या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनके लिए रहने का जगह, वो जो रहने का जगह होगा उसमें क्या सुविधाएं पॉसिबल है नहीं है, कितना किस तरीके का मेडिकल सपोर्ट है, अगर इस बिजनेस में कुछ अगर रिस्की प्रोडक्ट चल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके स्ट्रक्चर ही बहुत फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसको हैंडल करने के लिए किस तरह के सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीजें ही हमें दर्शाता है। और इसी चीज से एक बिजनेस पर्सन को पता चलता है कि भाई इस स्टेट में काम करना मुनासिब है या इसमें मुनासिब नहीं है। जी,
0: अनुकूलता की बात जहां आती है वहां एक तरह से अगर ये कहें तो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के बीच में, स्टेट्स के बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। हालांकि ये बहुत हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये सूचकांक में आगे बढ़ने के लिए या बिल्कुल ऊपर जाने के लिए एक रेस टू द बॉटम जिसे कहें, रेस टू द बॉटम का मतलब ये है कि क्या स्टेट्स ऊपर पहुंचने के लिए सूचकांक में कुछ ऐसे अनसस्टेनेबल फिस्कल इन्वेस्टमेंट या इंसेंटिव नहीं देंगे जो कि एट द कॉस्ट ऑफ लेबर या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होगा? आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कुछ कहीं पर ऐसी कुछ गुंजाइश बन सकती है जहां पर कि राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए कुछ ऐसे बहुत ही अनसस्टेनेबल फिस्कल इंसेंटिव दे देंगे जिसमें कि एट द कॉस्ट ऑफ लेबर या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होगा?
1: हम अगर देखें तो राज्यों में जो टैक्स की जो स्टेट लेवल टैक्सेस है, मैं म्यूनिसिपल लेवल जो लेवीज है उसको मैं इससे अलग रख रहा हूँ, स्टेट लेवल टैक्सेस है उसको करीब करीब इक्वलाइज कर दिया गया है जीएसटी के चलते। अभी किसी भी राज्य के लिए

0: जीएसटी के अलावा कोई दूसरा सपोर्ट मैकेनिज्म देना लगभग असंभव है, और चूंकि जीएसटी इज अ नेशनल लेवल तो जो भी स्टेट जो भी करेंगे वो जीएसटी के तहत ही आएंगे, तो एक तो वो चीज है। दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह, ये सारे टैक्सेस भी राज्य नहीं केंद्र सरकार तय करते हैं। कस्टम्स ड्यूटी भी राज्य सरकार नहीं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। कुछ कमोडिटीज ऐसे हैं जिनके कस्टम्स ड्यूटी पर राज्य का बनता है, तो उस पर जरूर कुछ कुछ कर सकते हैं। बट लेकिन स्मार्ट स्टेट्स वही है जो टैक्सेस को इस तरह से चलाते हैं ताकि अपना बजट भी सही रहे और आगे जिसे कहते हैं रेस टू द बॉटम का गुंजाइश ना आए। तो ये तो रही फिस्कल चीजों की बातें, अगर हम इसको छोड़े, अगर हम दूसरी तरफ देखें कि बाकी और क्या चीजें हो सकता है, किसी भी इंटरप्राइज को, किसी भी कंपनी को, किसी भी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, खासकर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ही बात करें, तो किसी भी इंटरप्राइज को चार चीजों की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एक रिस्क कवर। अगर हम इन चारों चीजों को अगर हम एक एक करके देखें, लैंड में इनफैक्ट इसमें तो प्रतिस्पर्धा उल्टा होना चाहिए। ज्यादातर राज्यों में अभी भी लैंड मामले में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है। किसी भी राज्य में आप भारत में पहुंच जाइए, जमीन खरीदना किसी भी इंडस्ट्री के लिए और खासकर ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा बाधक होता है। बड़े इंडस्ट्रीज तो अपना लॉयर्स लगा के, ये लगा के वगैरह करके निकल जाएंगे, लेकिन छोटे जो उद्योग हैं, क्षुद्र उद्योग है, जो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि छोटे उद्योग जो होते हैं उनके लिए शहर से दूर बैठ के कोई काम करना असंभव है, उनको शहर के पास ही नहीं शहर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास वो उनका वो टर्नओवर में उनके पास कैपेसिटी नहीं होगा कि वो अपना चीज लेकर शहर तक जाएंगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी भी शहर में, राज्य में अगर कितना बारीकी से वो इन चीजों को देखे हैं उस पर काफी संदेह है। राज्य लैंड इज समथिंग जिस पर लोग स्टेट्स ने अटेंशन नहीं दिया है और बहुत सारे वजह से इसको इस पर काम करना बहुत जरूरी है। सो इन्वेस्टर फ्रेंडली इंडेक्स में एक ये चीज उभर के सामने आता है कि लैंड इश्यूज में स्टेट्स ने कितना काम किए हैं, और आप देखेंगे कि जिस स्टेट्स ने काम किए हैं, थोड़ा बहुत भी अगर काम किए हैं, तो वहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज पहुंच जाते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज की सक्सेस या फेलियर में लैंड का अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरा होता है लेबर। हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि औसतन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में हर टेक्सटाइल यूनिट में एवरेज एम्प्लॉयमेंट इज 1.5, यानी कि सिर्फ आदमी खुद और किसी से पार्ट टाइम हेल्प ले रहा है, बस यही है इंडस्ट्री कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट का चित्र। और वो चित्र इसलिए है क्योंकि लेबर को इम्प्लॉय करना, लेबर को किसी काम में रखना हमारे लिए इतना दुष्कर बना हुआ है, और इसीलिए ये भारत सरकार की अभी का जो पहल लेबर कोड्स, जो चार लेबर कोड्स आए हैं, वो एक बहुत ही बड़ा सुदूर प्रसारी सुदूर काम है कि उसने काफी हद तक ये लेबर लॉस को रिलैक्स किए हैं। अभी भी देखिए, जैसे हमारे देश में कोई, जैसे टेक्सटाइल की हम बात कर रहे थे या दूसरे इस तरह के यूनिट्स में, लोगों की जरूरत होती है, मतलब अगर यूनिट अगर सच में अगर कामकाजी का हो तो करीब 10,000 से 15,000 लोगों की जरूरत होती है एक यूनिट में। 10,000 से 15,000 से नीचे कोई यूनिट चल ही नहीं सकता है अगर वो सच में अगर एक्सपोर्ट मार्केट में चलेंगे। आप सोचिए 10,000 से 15,000 लोग कितने एम्प्लॉयमेंट, कितना बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र खुल जाता है। लेकिन अभी भी भारत सरकार के उद्योग के बावजूद रूल ये है कि सिर्फ कि जिस यूनिट में 300 लोग हैं, यानी कि रिलैक्सेशन दिया गया है कि अप टू 300 पीपल का हायर तक रूल्स रिलैक्स किए गए हैं, लेकिन 300 से ऊपर जाते ही रूल्स काफी कठिन है। अब भारत सरकार की तरफ से प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार सिर्फ यहीं तक कर सकते थे, लेकिन इसके आगे कि 300 तक इंडिया गवर्नमेंट ने कर दिया है, केंद्र सरकार ने कर दिया है, तो आगे चल के जो रिलैक्सेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है।
1: बिल्कुल।
0: अब हम बात कर रहे हैं 10,000 या 15,000 लोग जैसे लोगों के एम्प्लॉयमेंट का, वहां पे 300 लोग आए या ना आए उसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही सारे जो रिलैक्सेशन है ये बहुत बड़ी जरूरी है। तो एक वो बड़ी चीज है, तो ये रेस टू द बॉटम नहीं, ये तो रेस टू द पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी है अगर स्टेट्स अगर इन चीजों को समझे। तो एक हुआ लैंड, दूसरा हुआ लेबर, तीसरा है कैपिटल। कैपिटल के मामले में मैं समझता हूं कि स्टेट्स को एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कैपिटल ज्यादातर आते हैं बैंक से या बड़े बड़े कंपनी से, एनबीएफसी से, जिन पर राज्यों का बहुत ज्यादा हाथ नहीं होता है। हालांकि वहां भी कुछ कुछ काम कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, वो जरूर दे सकते हैं, दूसरे जैसे फ्रीबीज वगैरह आपने टिप्पणी किया और वो बात सही है कि वो फ्रीबीज वगैरह देने के बजाय अगर इंटरेस्ट सबवेंशन दे तो बहुत काम हो सकता है। एक पॉजिटिव चीज जो स्टेट्स ने किए हैं, कुछ कुछ स्टेट्स ने किए हैं, वो है

0: है कि वुमेन ट्रेवल बहुत सारी जगह पे उसको फ्लेक्सिबल कर दिए हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में। अब जैसे बिहार में अभी शुरू हो गया है पिंक बसेस, बाकी बहुत सारे स्टेट्स में भी ये कदम लाया जा रहा है। दिल्ली में भी शुरू हुआ है कि वुमेन के लिए एक फ्री ट्रेवल का एक प्रोग्राम चल पड़ा है बहुत सारे स्टेट्स में, और वो बहुत अच्छा चीज है कि वुमेन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो खर्चा है वो खर्चा कम हो जाए। लेकिन साथ में चीज है सिक्योरिटी कि वुमेन जब शाम को ऑफिस घर से फैक्ट्री से आएंगे तो उस वक्त उनको सिक्योरिटी कहां तक मिलता है। अब हर वुमेन के पीछे तो एक पुलिस पर्सन नहीं खड़ा सकता है ना, लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी का जो एनवायरमेंट है वो सिक्योरिटी का एनवायरमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। और ये तो केंद्र सरकार नहीं कर सकते ना, ये तो राज्य सरकार को करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा सिक्योरिटी का एस्टेब्लिशमेंट पुलिस में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि वुमेन वर्कफोर्स काम में कर सके। ग्राउंड रियलिटी की आप जो बात कर रहे थे बहुत सही है कि ग्राउंड बहुत सारे स्टेट्स ने अपने इस मामले में बहुत अच्छे अच्छे कदम अपनाए हैं, और इस वजह से उस स्टेट्स में वुमेन एम्प्लॉयज का संख्या एकदम जिसे कहते हैं तेजी से आगे बढ़ा है। मैं एक एग्जाम्पल दू दो स्टेट्स का, गुजरात और तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स में वुमेन सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग किया गया है कि इन दोनों स्टेट्स में वुमेन एम्प्लॉयमेंट और खासकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जहां पे वुमेन की जरूरत खास ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर से बोलिए या इवन सिंपल घड़ी मैन्युफैक्चरिंग वॉच मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जरूरत होती है, तो वहां पे वो लोग कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव प्रोवाइडेड कंसिस्टेंट लेवल ऑफ वुमेन सिक्योरिटी। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंड डेवलप कैपिटल रिस्क वाली चीज हम बाद में बात कर सकते हैं, बट ये तीनों चीजों में ही अगर स्टेट्स अगर ध्यान दे तो बहुत कुछ अट्रैक्टिव सॉल्यूशंस उनके सामने निकल के आएंगे।
1: शुभम, अगर हम बात करें ये कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो नेचुरली ये होगा ही होगा इनटू टियर्स लाइक टॉप परफॉर्मर्स। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो एस्पायरिंग स्टेट्स होंगे, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ऊपर के ब्रैकेट में होंगे, कुछ बीच में होंगे, कुछ नीचे होंगे। तो आपको क्या लगता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर ऐसा क्या करें जिससे कि जो एस्पायरिंग स्टेट्स हैं जो नीचे हैं सूचकांक में वो भी उसी जगह पर आकर के खड़े हो जाएं?
0: बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज जिसका हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि केंद्र सरकार कर रहे हैं, नीति आयोग खासकर इसमें बहुत काफी काफी काफी अच्छे काम किए हैं। नीति आयोग ने बहुत सारे स्टेट लेवल में क्या काम सफल हुआ है, किस स्टेट में कौन सा वाला काम सफल हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा लिस्ट ही नहीं, बार बार उस लिस्ट को आगे रिवाइज करते जा रहे हैं। तो वो केंद्र सरकार से एक बहुत बड़ा सक्षम कार्यक्रम है कि नीति आयोग का जो देखें डेटा एनालिस्ट केस स्टडीज और काफी डिटेल्ड मात्रा में उन्होंने काम किया है इसमें। अभी उन्होंने म्यूनिसिपल गवर्नेंस के ऊपर भी रिपोर्ट्स निकाले हैं, इस तरह से बहुत सारे रिपोर्ट्स। दूसरी बात यह है कि स्टेट्स जब काम कर रहे हैं, जो स्टेट्स पीछे हैं, बहुत सारे टाइम में स्टेट सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स का जारी करने का वजह यही है, ये बात सिर्फ कैश सपोर्ट की नहीं है, इनफैक्ट कैश सपोर्ट से ये काफी दूर है। ये है टू डू स्मार्ट पॉलिसीज, जैसे स्मार्ट पुलिसिंग या स्मार्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। ये कोई कैश वाली बात नहीं है, इट इज सिंपली अबाउट कि हम स्टेट्स अपना अपना जो कैपेसिटी है उसको काम में लगाएं।
1: आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी जानकारी दी, अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभम,
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नीति आयोग का निवेश अनुकूलता सूचकांक और राज्यों में प्रतिस्पर्धा और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:25 हो गए हैं और एफएम गोल्ड पर ये समय है कार्यक्रम सांझ ढले का। आज की शाम सांझ ढले में मैं हूँ आपके साथ रेशमा, और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जूली फिल्म के इस गीत से।

0: join the Mega Plantation Drive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:34 हो गए हैं और सांझ ढले में मैंने आपको सुनाया फिल्म जूली से एक गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, और इसकी धुन सजाई थी राजेश रोशन ने। तो श्रोताओं, इस गाने में आपने वो सीटी सुनी ध्यान से कितनी प्यारी थी ना, और इतनी सहजता से गाने में घुल जाती है कि हमें याद भी नहीं रहता कि उस सीटी का कितना अहम योगदान रहा इस गीत को खूबसूरत बनाने में। बल्कि कई बार तो लगता ही नहीं कि सीटी बज रही है, ऐसा लगता है जैसे बांसुरी का प्रयोग हुआ हो। तो जानते हैं ये इतनी मीठी सीटी बजाई किसने है? जी, कलाकार का नाम है नागेश सुरवे। फिल्म संगीत में अपने वायलिन वादन से योगदान तो करते ही आ रहे थे, जब कुछ संगीतकारों ने उनकी सीटी सुनी तो उसे भी आजमाने की सोची, और यूं फिल्म जूली से नागेश सुरवे का ये सीटी बजाने का सफर फिल्मों में शुरू हुआ। तो अगला गीत सुनते हैं फिल्म शोले से, और इसमें भी अब नागेश की

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: आकाशवाणी का एफएम गोल चैनल है ये कार्यक्रम, सुन रहे हैं आप सांझ ढले, जिसमें बहुत समय अब बचा नहीं है क्योंकि 7:45 पर एफएम गोल्ड पर आपको सुनना होगा प्रादेशिक समाचार। फिलहाल सांझ ढले में मैं आज आपको वो गीत सुनवा रही थी जिनमें नागेश सुरवे की सीटी है, तो बस इसी सफर को जारी रखते हुए ये आखिरी गीत सुनवा रही हूं, जो आप पूरा तो नहीं सुन पाएंगे लेकिन फिर भी जितना सुन सकते हैं उम्मीद है उसमें आप वो उनकी सीटी का आनंद जरूर ले पाएंगे। फिल्म बाजीगर से विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली सरकार का सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 2800 एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस शामिल करने का निर्णय। दिल्ली में निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त, स्वप्रमाणन प्रणाली लागू होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी मामले में पंजाबी बाग नांगलोई के उप पंजीयक को गिरफ्तार किया। दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर

0: श्रीधरन को वडोदरा के गति शक्ति विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल के मद्देनजर दिल्ली के रेस्तरां और कैफे सहित अन्य प्रतिष्ठान सप्ताहांत सवेरे 4 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और मजबूत बनाने के लिए 2800 नई एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ये शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली बस अगले वर्ष अप्रैल से संचालित होंगी।
1: इन नई बसों की श्रेणी में 1400 बसें 12 मीटर और इतनी ही बसें 9 मीटर लंबी होंगी। वहीं 12 मीटर वाली प्रत्येक बस पर अधिकतम 35 लाख रुपए और 9 मीटर वाली प्रत्येक बस पर अधिकतम 25 लाख रुपए की सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2028-29 तक दिल्ली के सार्वजनिक बस बेड़े को लगभग 14,000 बसों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। बसों के बेहतर संचालन के लिए IIT दिल्ली के सहयोग से रूटों का पुनर्गठन किया जाएगा। वहीं बस मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों के माध्यम से संचालन और टिकट व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 10 में आयोजित कार्यक्रम में बैटरी से चलने वाले 135 स्वच्छता वाहनों को रवाना किया। ये इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली नगर निगम की रोहिणी नरेला सिविल लाइन्स और केशवपुरम क्षेत्र के स्वच्छता बेड़े को सुदृढ़ करेंगे। श्री वाही ने कहा कि निगम के स्वच्छता बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना स्वच्छ और हरित दिल्ली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ये पहल हर घर से अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम साबित होगी। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया सरल बनाने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र व्यवस्था समाप्त कर दी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये सुधार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने अनिवार्यता प्रमाण पत्र की जगह स्व प्रमाणन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। निजी विद्यालयों की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र की अनिवार्यता में भी बड़ी छूट दी गई है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये सुधार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप है। अब विद्यालयों को मान्यता किसी क्षेत्र में विद्यालय की आवश्यकता के बजाय बुनियादी ढांचे, सुरक्षा मानकों, योग्य शिक्षकों और छात्र शिक्षक अनुपात जैसे मानकों के आधार पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना तथा अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समाप्त कर पारदर्शी और सरल व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में आज पंजाबी बाग नागलोई के उप पंजीयक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार संपत्ति की गिफ्ट डीड निष्पादित करने के बदले उप पंजीयक ने शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने दोनों आरोपियों को 80,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत वाहन चोरी मामले में 11 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 किशोर भी शामिल हैं। पुलिस ने 75 दोपहिया और 1 चारपहिया वाहन बरामद किया। पुलिस के अनुसार बरामद वाहनों में 23 वाहन आरोपियों के कब्जे से, 42 वाहन आवासीय क्षेत्रों और लावारिस हालत में तथा 11 वाहन पार्किंग स्थलों से बरामद किए गए। ऑपरेशन चक्र का उद्देश्य वाहन चोरी की श्रृंखला को तोड़ना और ऐसे गिरोहों पर प्रभावी कार्रवाई कर राजधानी में ऐसे अपराध पर अंकुश लगाना है। अपराध शाखा ने चौथे पुश्ता में एक खाली मकान से अवैध शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान 85 कार्टन शराब बरामद किए गए, जिनमें से 68 कार्टन पर केवल चंडीगढ़ में बेचने के लिए और 17 कार्टन पर केवल हरियाणा में बेचने का लेबल लगा था। पुलिस अवैध शराब के भंडारण और आपूर्ति में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज भारत मंडपम में मानव एआई साक्षरता मिशन नेतृत्व सम्मेलन में भाग लिया। श्री सूद ने कहा कि कार्यक्रम में एआई आधारित शिक्षा, डिजिटल कौशल और भविष्य की शिक्षण व्यवस्था पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि एआई

0: और भारत की शुरुआत एआई तैयार कक्षाओं से होगी।
1: आज हम एक और बड़े बदलाव के दरवाजे पर खड़े हैं। किसवीं सदी की अगली लिटरेसी एआई लिटरेसी है। आज सवाल यह नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, एआई तो हमारे जीवन का हिस्सा बन ही चुका है। सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चे एआई का केवल इस्तेमाल करेंगे या उसे समझकर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्या वे एआई के केवल कंज्यूमर्स बनेंगे या एआई क्रिएटर्स, इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनेंगे।
0: श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हर विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर सके। लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश राहिब सिंह ने आज पूर्वी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने पटपड़गंज हाईवे और झिलमिल अंडरपास का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सुनियोजित कार्य योजना, विभागों के बेहतर समन्वय और लगातार निगरानी के कारण आज क्षेत्र की जल भराव की समस्या समाप्त हो गई है। उन्होंने लक्ष्मीनगर चौराहे पर शीघ्र ही एक आधुनिक स्काई वॉक के निर्माण की घोषणा की। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार जल निकासी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रीकास्ट ड्रेन तकनीक का विस्तार कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय वरुणालय में आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण, मातृत्व के सम्मान और भावी पीढ़ियों के स्वच्छ तथा हरित पर्यावरण सुनिश्चित करने का जन आंदोलन है। उन्होंने नागरिकों से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि अब तक 6,885 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा आज राजघाट पर धरने में शामिल हुए। ये धरना कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा की टीवी बहस के दौरान महर्षि भगवान वाल्मीकि के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में किया गया। वाल्मीकि धर्म सम्मान रक्षा समिति ने धरने का आयोजन किया था। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ टिप्पणी करोड़ों लोगों की आस्था और देश की सांस्कृतिक विरासत का अपमान है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि और दलित समाज को सम्मान तथा समान अवसर का अधिकार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि स्वस्थ समाज मजबूत राष्ट्र की नींव है। नई दिल्ली में आज भारतीय चिकित्सा संघ के पुरस्कार समारोह में श्री सिंह ने कहा कि चिकित्सा पेशेवर न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं बल्कि देश की विकास यात्रा को भी मजबूत कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि डॉक्टर समर्पण और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का सम्मान राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना का सम्मान करना है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शिकायत निवारण का दायरा शिकायतों के निपटारे तक ही सीमित नहीं होना चाहिए तथा पेंशन भोगियों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेंशन संबंधी विवादों का समाधान प्रशासनिक तौर पर किया जाना चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को

अदालत जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। उन्होंने आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कई नागरिक केंद्रित सुधार किए हैं। विभाग ने पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली के जरिए डिजिटलीकृत पेंशन सेवाएं शुरू की हैं। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने आज नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए विशेष टिकट जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट यात्रा के कुल 127 मामले पकड़े गए और 1,08,000 से अधिक रुपए का जुर्माना वसूला गया। दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश रमण त्रिपाठी ने यात्रियों से वैध टिकट लेकर यात्रा करने और टिकट जांच अभियान में रेलवे कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के प्रथम प्रबंध निदेशक डॉक्टर ई श्रीधरन को वडोदरा के गतिशक्ति विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने प्रदान किया। ये डॉक्टर श्रीधरन की 23वीं मानद डॉक्टरेट उपाधि है। डॉक्टर श्रीधरन को देश में आधुनिक मेट्रो रेल प्रणाली के विकास और सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानिरुविदे नेमागागी नांदिरुविदे नानागागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अर्जेंटीना और स्पेन के बीच कल रात खेले जाने वाले फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल मुकाबले के मद्देनजर रेस्तरां, कैफे और अन्य प्रतिष्ठानों को सप्ताहांत सवेरे 4 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे फुटबॉल प्रेमियों को ऐतिहासिक मुकाबले का एक साथ आनंद लेने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। ये प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक खेली जाएगी। इस अवसर पर भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर उमस रही। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार का सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 2,800 एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस शामिल करने का निर्णय। दिल्ली में निजी विद्यालयों को मान्यता के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त। स्व प्रमाणन प्रणाली लागू होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी मामले में पंजाबी बाग नागलोई के उप पंजीयक को गिरफ्तार किया। दिल्ली मेट्रो के प्रथम प्रबंध निदेशक डॉक्टर ई श्रीधरन को वडोदरा के गतिशक्ति विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई।

0: दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती साख का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने तथा बचाव अभियान में जुट गई। दुर्घटना में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में हुए जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानी रुवदे नीमा गागी नादी रुवदे नाना गागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए मम्मूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल रॉय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फेई को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फेई की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jayaraj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Award in Best Actor category for their movies Brahma Yugam and Chandu Champion. He said Yami Gautam will be given Best Actress Award for her performance in the film Article 370. Chairman of Jury Non-feature film, Aseem Kumar Sinha said, Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Featuring Film Award. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastava. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book. In Gujarat, 5 people were killed and several others injured today after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing and a processing unit on the Ramol Gutrad Road in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi has expressed deep grief over the loss of lives in the fire and prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Our correspondent reports that the fire has been brought under control. In Andhra Pradesh, 5 fishermen lost their lives after drowning in the Godavari River of Polavaram district today. The victims had gone to the river for fishing when they were reportedly swept away by the strong current. Police, along with local rescue teams and villagers, launched a search operation after receiving information about the incident. The bodies of all 5 victims were recovered from the river. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed profound grief over the incident and conveyed his condolences to the bereaved families. India's first privately developed orbital rocket Vikram-1 under Mission Agman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450 kilometers orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the 3rd country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call. Mr. Modi said the successful launch of Vikram 1 under Mission Agman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector.
1: एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ.
2: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also congratulated Team Skyroot on the successful launch of Vikram 1. The minister said the mission marks a major milestone for India's expanding private space sector. The Indian Olympic Association IOA today announced that Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain will serve as India's flag and baton bearers at the opening ceremony of the Commonwealth Games in Glasgow. The opening ceremony of the scaled-down multi-sports event will be held on 23rd of this month at the OVO Hydro Arena. The United States and Iran exchanged fresh strikes today as fighting over the Strait of Hormuz intensified. The heaviest damage was reported in Kuwait, where Iranian strikes hit a water desalination plant and an oil facility, injuring several people and disrupting power generation. It was the second attack on a desalination plant in 2 days, raising concerns in a country. And that is the end of this news bulletin.

0: आरंभ करते हैं फिल्म शालीमार फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।
1: बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी,

श्रोताओं, रात्रि के दूसरे प्रहर में गाए बजाए जाने वाले राग राग दुर्गा का नाम देवी दुर्गा के नाम पर आधारित है और श्रृंगार रस और भक्ति रस से परिपूर्ण है। राग मधुर और चंचल राग राग दुर्गा माना जाता है कि हिंदुस्तानी संगीत में कर्नाटक संगीत से आया है। हालांकि आम तौर पर जो दूसरे कर्नाटक संगीत के राग हिंदुस्तानी संगीत में आए हैं उनका नाम नहीं बदला गया है, जैसे चारुकेशी या कलावती, लेकिन शायद कुछ वजह रही होगी इसलिए राग दुर्गा का हो सकता है इसको नया नाम मिल गया हो। वैसे राग दुर्गा की संरचना इतनी सरल है कि इसके और इसके स्वर संबंध इतने मौलिक हैं कि इसका मिलता जुलता

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर मधुरिमा कार्यक्रम में राग दुर्गा की बात हो रही है और कुछ देर पहले आपने गीत सुना फिल्म गीत गाया पत्थरों से इस फिल्म से पत्थरों ने से और उस गीत को गाया था आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। अभी ये जो गीत आपने सुना ये था फिल्म सजा से लता मंगेशकर की आवाज़ में। और राग दुर्गा की बात करें तो इसके आरोह और अवरोह दोनों में पांच पांच स्वर लगते हैं इसलिए इसकी जाति औड़व औड़व है। बिलावल थाट से उत्पन्न है ये राग। गंधार और निषाद इस राग में वर्जित हैं और शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी स्वर है इसका मध्यम, समवादी है षडज, हालांकि कई विशेषज्ञ ऋषभ को भी इसका समवादी स्वर मानते हैं। तो राग दुर्गा की ही झलक लिए हुए एक और गीत आपको सुनवाते हैं। यह है फिल्म जमाने को दिखाना है से, जो आई थी 1981 में। फिल्म में संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और ये गीत गाया है शैलेंद्र सिंह ने।

और श्रोताओं, एफएम गोल्ड पर अब समय है खेल प्रेमियों के पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, और मधुरिमा का आज का सफर यहीं तक। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ही। रेशमा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए एफएम गोल्ड।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची, खिताबी मुकाबले में कल अकाने यामागुची से सामना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से, अर्जेंटीना और स्पेन कल फाइनल में होंगे आमने सामने। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। चेन्नई शतरंज ग्रैंड मास्टर्स में अलीरेजा फिरोजा ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया। और भारत और इंग्लैंड के बीच कल लॉर्ड्स में तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां अनुभवी खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। सुनते हैं सरफिरोजी की खास रिपोर्ट।
1: सेमीफाइनल में सिंधु पूरी तरह हावी नजर आई और वो 21-19, 15-10 से आगे चल रही थी। तभी पूर्व ओलंपिक चैंपियन चेन को हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण हटना पड़ा और सिंधु को वॉक ओवर के जरिए फाइनल का टिकट मिल गया। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी ने मजबूत शुरुआत की और अपने आक्रामक खेल और तेज मूवमेंट से पहले गेम के बीच 4 अंकों की बढ़त बना ली। चेन ने वापसी करते हुए स्कोर 19-19 से बराबर किया, लेकिन सिंधु ने आखिरी मिनटों में संयम बनाए रखा और अपने पहले गेम पॉइंट को भुनाते हुए पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरे गेम में सिंधु ने शुरुआत से ही रैलियों पर दबदबा बनाए रखा और तेजी से 15-10 की बढ़त बना ली। इसके बाद चेन यू फी चोट से जूझती नजर आई और उन्होंने आखिर में मैच से हटने का फैसला लिया। 31 साल की पीवी सिंधु ने साल की शुरुआत वर्ल्ड नंबर 18 रैंकिंग के साथ की थी, लेकिन लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अपनी रैंकिंग में सुधार किया और अब वो दुनिया की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। जापान ओपन का खिताब जीतने के लिए लक्ष्य के साथ सिंधु कल होने वाले फाइनल में जापान की अकाने यामागुची का सामना करेंगी। क्वार्टर फाइनल मैच से ठीक पहले जापान की नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सिंधु जापान ओपन सुपर 750 के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची थी। 2023 में डेनमार्क ओपन के बाद सुपर 750 टूर्नामेंट में सिंधु का ये पहला सेमीफाइनल था। इस सीजन में वो 3 सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, जिनमें मलेशिया ओपन सुपर 1000 और ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 जैसे टूर्नामेंट शामिल हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब सीधे चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मुकाबला देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक रिपोर्ट।
2: फाइनल में जगह बनाने से चूकी फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें तीसरे स्थान के लिए आमने सामने होंगी। एक तरफ लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने की फ्रांस की उम्मीदों पर स्पेनिश टीम ने पानी फेरा, वहीं दूसरी ओर मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ आखिरी समय में गोल खाने के बाद इंग्लैंड को दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सम्मान, मोमेंटम और पोडियम फिनिश अभी भी दांव पर है। फ्रांस को विश्व कप का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, वहीं इंग्लैंड भी 1966 के बाद पहली बार विश्व कप जीतने के करीब पहुंचता दिख रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में ही इनके सफर पर विराम लग गया। प्लेऑफ के इस मुकाबले में अब फ्रांस निरंतरता के साथ उतरेगा। टीम एक बार फिर किलियन एम्बापे के शानदार अटैकिंग खेल पर भरोसा कर सकती है, जो लगातार दूसरे वर्ल्ड कप गोल्डन बूट की दौड़ में बने हुए हैं। वहीं हैरी केन और जूड बेलिंगहैम की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम में किसी भी प्रतिद्वंदी को परेशान करने की क्षमता है, लेकिन डेस्चैम्स को जीत के साथ विदाई देने से फ्रांस को रोकने के लिए उन्हें और बेहतर ऑलराउंड खेल दिखाना होगा। एम्बापे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के 8 गोल हैं। मेस्सी ने 4 गोल में सहायता की जबकि एम्बापे ने 3 में। इंग्लैंड के हैरी केन और जूड बेलिंगहैम के 6-6 गोल हैं। उधर विश्व कप का खिताबी मुकाबला कल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। अर्जेंटीना इससे पहले 6 फाइनल खेल चुकी हैं, जिसमें 3 बार उन्होंने खिताब अपने नाम किया। दूसरी ओर स्पेन ने दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले 2010 में उन्होंने नीदरलैंड्स को हराकर खिताब अपने नाम किया था। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर पीको का

0: आवरण किया। ये प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक खेली जाएगी। श्री मांडविया ने विश्व चैंपियनशिप का गीत भी लॉन्च किया। इस गीत में भारत की पूरी 16 सदस्यीय टीम नजर आएगी, जिसमें दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी शामिल हैं। श्री मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि भारत में खेल संस्कृति का विकास हो रहा है और भारत खेलों का देश बनने की ओर अग्रसर है।
1: युवा शक्ति हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, उसको हार्नेस्ट करना है तो खेल का मैदान उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहिए। और इसलिए देश में स्पोर्ट्स आगे बढ़े, स्पोर्ट्स के एक इकोसिस्टम बने, स्पोर्ट्स युवाओं का लाइफस्टाइल का एक कल्चर बने। इसलिए जरूरी है कि स्पोर्ट्स को सामाजिक दृष्टि से भी और सरकारी दृष्टि से भी बढ़ावा दिया जाए, एक पब्लिक मूवमेंट बने। स्पोर्ट्स को एडॉप्ट करके हम देश को स्पोर्टिंग नेशन के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं।
0: श्री मांडविया ने कहा कि भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी इच्छुक है।
1: हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारा एजेंडा फिक्स है, रोड मैप भी तैयार है। मोदी जी ने कहा है कि 2036 में हमें देश में ओलंपिक्स आयोजित करना है, उसके लिए भारत ने ऑलरेडी बिड कर दिया है और हमने कॉमनवेल्थ के लिए बिड को जीत भी लिया है। 2030 में देश में कॉमनवेल्थ आयोजित होगा।
0: भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने दिल्ली में होने वाले इस आयोजन पर खुशी जाहिर की।
2: We host the World Championship again. It's a great moment, not only for badminton, but for Indian sport. In general, there's been a lot of push in the last few years in many sports, and badminton as a sport has grown over time. So it's only fair and time that we host a prestigious event like the World Championships. And I'm very happy that at this moment of time, Delhi is able to host this prestigious event.
0: मुख्य कोच ने एशियन गेम्स से ठीक पहले आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता को भारतीय खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया।
2: I think it's a wonderful event. It's also a great timing. We have the World Championships followed by the Asian Games. So the next 2 months are going to be very critical for Indian badminton. To have Sindhu reach the finals of Japan, to have Laksh, Ayush, you have Satvik and Chirag, some really good medal contenders.
0: अब चलते हैं सीधे क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच कल लॉर्ड्स में तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: बर्मिंघम में पहले मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम को कार्डिफ में खेले गए दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अब क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स इस श्रृंखला के निर्णायक विजेता का फैसला करेगा। भारत के लिए कार्डिफ में हार के बावजूद विराट कोहली का लय में लौटना एक बड़ी सकारात्मक बात रही, जो 65 रनों की शानदार पारी के दौरान आत्मविश्वास में नजर आए थे। हालांकि रोहित की फॉर्म एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। पूर्व भारतीय कप्तान इस वर्ष 8 वनडे पारियों में सिर्फ एक ही अर्धशतक लगा सके हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल अस्वस्थ रहने के कारण कार्डिफ में नहीं खेल सके थे। अब भारत को निर्णायक मैच में अपने इस खिलाड़ी की वापसी की उम्मीद होगी। साल 2025 की शुरुआत से राहुल भारत के सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाजों में से एक रहे हैं और उनका औसत 50 से ऊपर रहा है। हालांकि लॉर्ड्स ने भारत के कई यादगार पल देखे हैं, लेकिन मेहमान टीम साल 2004 के बाद से इस मैदान पर कोई वनडे मैच नहीं जीत सकी है। इस सूखे को खत्म करने से न सिर्फ सीरीज जीती जा सकेगी बल्कि दौरे का समापन भी यादगार होगा। दूसरी तरफ कार्डिफ में जो रूट ने 99 रन की नाबाद पारी खेलकर एक बार फिर से खुद को साबित किया है, इस पारी ने न सिर्फ रूट का बल्कि पूरी इंग्लिश टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है। पूर्व कप्तान के नाम अब लगातार 5 वनडे मुकाबलों में अर्धशतक है। दूसरे वनडे में जसप्रीत बुमराह के सामने रूट का संयम इंग्लैंड का हौसला बढ़ाएगा, लेकिन भारत के मुख्य तेज गेंदबाज लॉर्ड्स में इस मुकाबले को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, पहला मुकाबला जहां गेंदबाजों के नाम रहा था पिच से, उनको मदद मिली थी, दूसरे मुकाबले में भी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या लगता है अगले मुकाबला में पिच किस तरफ रुख करेगी?
4: प्रशांत, अगर लॉर्ड्स की पिच की बात करें तो आमतौर पर ये तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजों को काफी स्विंग देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजों को जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर पहली पारी के यहाँ पर औसतन स्कोर की बात करें तो 232 रन का स्कोर बनाती है जो टीम पहले खेलती है, और दूसरी टीम का जो औसतन स्कोर है वो 200 रन के आसपास का है। 89 वनडे मुकाबलों में इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 44 मैच जीते हैं, जबकि 40 मुकाबलों में जीत रनों का पीछा करने वाली टीम के हाथ लगी है।
0: विशेष, हर एक मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली नया कीर्तिमान रचते हैं, कल के मुकाबले में क्या कुछ नया करते नजर आएंगे दोनों खिलाड़ी?
4: जी, भारत के दिल और धड़कन कहे जाने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली कल 400वां इंटरनेशनल मुकाबला साथ में खेलने जा रहे हैं। कोहली और जो रोहित की जोड़ी है इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनेगी। यह दोनों इस खास लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। सचिन और द्रविड़ ने भारत के लिए 391 मुकाबले साथ में खेले हैं।
0: और उधर क्रिकेट इतिहास के महान ऑलराउंडरों में से एक वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का कल निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। आईसीसी और बीसीसीआई ने इस दिग्गज खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी है। आईसीसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खेल को गौरवान्वित करने वाले सबसे महान क्रिकेटरों में से एक सर गारफील्ड सोबर्स का दुखद निधन हो गया है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और वेस्टइंडीज क्रिकेट के साथ है। हम एक आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर को अलविदा कह रहे हैं। बीसीसीआई ने भी सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी असाधारण उपलब्धियों, कैरेबियाई क्रिकेट पर उनके स्थायी प्रभाव और दुनिया भर के खेल में उनके योगदान ने एक ऐसी यादगार विरासत छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सर गैरी सोबर्स ने 93 टेस्ट मैचों की 160 पारियों में 26 शतक और 30 अर्धशतक की मदद से 8032 रन बनाए और 235 विकेट भी अपने नाम किए। और अब बात शतरंज पर। फ्रांस के ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। चेन्नई में कल खेले गए दूसरे राउंड में उन्होंने भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को 69 चालों के बाद मात देकर टूर्नामेंट में 2 अंकों के साथ बढ़त हासिल कर ली है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को आगामी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही है। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना।

0: इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद

0: की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
2: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: हुरमुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंता बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और

0: लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमरीका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahmayugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: के के
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार अभिनेता गायक और संगीतकार के भाग्यराज, और जाने माने फिल्म निर्देशक निर्माता लेखक और अभिनेता भारती राजा।
3: hey,

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानूभाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमि

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार।

0: अली जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: विद्या की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन विचार करें।
4: क्या खड़ा हो गया यहाँ से?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक। दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदाबाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
6: तूने जरू की सूरत देखी है? उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने? बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, रानी तू सुख नहीं बात करे, उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है, पन खुदाए सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
7: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
7: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, यह सारा योगदान

0: जी ने बड़ी काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
1: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। कड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें।
2: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
1: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
3: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
1: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण, सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया।

कि भारतीय राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्नावीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

के भागीराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन

छह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में ना अच्छी लाइटिंग होती है ना आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बेताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लों।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म से गप्पू रोजाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा। सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988

1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नामेदास और रूपाश्री वड़कड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकोम विजय लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान

0: जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉ वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र आडापा विजय अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। ये वार्षिक यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोह में से एक है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 शुरू होगा। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश का कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। मुख्य समाचार। ईरान ने अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को निलंबित किया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर लड़ाई तेज। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु और 60 घायल। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। ईरान के कानून और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने आज घोषणा की है कि ईरान ने हाल ही में अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को निलंबित कर दिया है और अमेरिका पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरानी मीडिया के अनुसार गरीबाबादी ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत में लगे हुए थे, लेकिन अमेरिका ने कथित तौर पर आक्रामक कार्रवाई करके समझौता ज्ञापन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने व्यावहारिक रूप से अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है और उन्हें निलंबित कर दिया है। वहीं ईरान ने भी इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के तहत अपने दायित्वों को निलंबित करके जवाब दिया है। यह घोषणा होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के बीच हुई है। कुवैत में हमलों से भारी तबाही की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले दो दिनों में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा

0: है। कोटोप्स में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टुल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इन हमलों में ड्रोन उत्पादन और नौवहन उपकरण के लिए स्वीकृत घटकों की आपूर्ति में इस्तेमाल होने वाली 2 महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि एक तेल प्रतिष्ठान पर भी हमला किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवाई रक्षा प्रणाली से 19 क्षेत्रों में यूक्रेन के 379 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। विश्व दर्पण के लिए मैं भवतारिणी।
1: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच हुए इन हमलों से देश के बिजली तथा जल शोधन ढांचे के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी।
4: ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने अपने ऑपरेशन नस्त्र 2 के 18वें चरण के तहत कुवैत स्थित अरिफजान ग्राउंड फोर्सेज सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि इस हमले में वहां तैनात कई अमरीकी सैनिक मारे गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने यह भी दावा किया कि उसने की अली अल सलीम एयरबेस पर रडार प्रतिष्ठान को ड्रोन से निशाना बनाया। इसके अलावा उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह स्थित अमेरिकी नौसेना के ईंधन सहायता केंद्र और संचार केंद्र पर ड्रोन तथा मिसाइल हमले किए। इन हमलों का असर आवश्यक सेवाओं पर भी पड़ा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: बलूचिस्तान में मानवाधिकार समूह बलूच वॉइस फॉर जस्टिस BVJ के अनुसार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर 2 और नागरिकों को जबरन गायब कर दिया है। BVJ ने बताया कि बलूच छात्र मोर्चा के नेता फजल बलूच को उनके घर से, जबकि अजरबैजान में पढ़ाई कर रहे छात्र शहाब बलूच को गर्मियों की छुट्टियों के लिए बलूचिस्तान लौटने के बाद कथित तौर पर हिरासत में ले लिया गया। BVJ ने पाकिस्तान अधिकारियों से उनके ठिकानों का खुलासा करने का आग्रह किया और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से उनकी सुरक्षित रिहाई और जवाबदेही के लिए दबाव बनाने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित और निष्पक्ष तथा गहन जांच की मांग की। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त ना करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवाद पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में भी घुसकर उन्हें मारेगा।
5: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्तोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्यासाहकान से राजधानी टलिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, डिजिटल बदलाव, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत एस्टोनिया सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्तोनिया व्यापार मंच को

संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत की डिजिटल क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्वसनीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर अर्दुआदो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और उसी दिन हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मिलने का कार्यक्रम है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार देर रात 2:30 बजे से अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को निलंबित किया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर लड़ाई तेज। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु और 60 घायल। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, फिर भी एक शख्स में क्या क्या नजर आता है मुझे। दिल में बहुत सी बातें, बहुत सी यादें, बहुत से नाम रहते हैं, बहुत से सपने, कुछ पूरे तो कुछ अधूरेपन की टीस लिए हुए। दिल में सबके लिए जगह है और कई बार ये समेट लेता है बहुत कुछ अपने भीतर, बस दिल में। 10:31 हो चुके हैं, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप, और प्रोग्राम है हर सिंगार, आपके साथ मैं विकास।

कहते हैं कि हर इंसान के पास एक सपना होता है, कुछ पूरे हो जाते हैं और कुछ कैलेंडर बदलने के साथ बस यादों में या कागजों में दब जाते हैं। मगर अधूरे ख्वाब अक्सर सबसे ज्यादा दिल में जिंदा रहते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

कहते हैं कि कुछ लोग दुनिया देखने के लिए सफर करते हैं और कुछ लोग किताबों के जरिए दुनिया को जानते हैं। हर अच्छी किताब पढ़ने के बाद लगता है जैसे दिल में एक नई खिड़की खुल गई हो।

जिसने जिंदगी में बहुत से सफर तय किए होते हैं उसे पता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत मंजर भी कुछ दिन बाद तस्वीर बन जाते हैं, यादों की स्लेट में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन जो बात हमेशा जिंदा रहती है वो उन कच्चे पक्के रास्तों का एहसास है जो रहता है दिल में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम है हर सिंगार, आपके साथ मैं विकास।

कहते हैं कि दुनिया घूम लेना आसान है, मुश्किल ये समझना है कि आखिर लौटना कहाँ है। हर मुसाफिर के दिल में एक ऐसी जगह होती है जिसे वो घर कहता है। वैसे घड़ी बता रही है कि मुझे भी थोड़ी देर के लिए आपसे विदा लेनी होगी, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं और सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गाताद्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll also be taking calls on your market related queries, but do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106, and of course do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह हम आपके फोन कॉल्स पर पूछे गए सवालों को सीधा कार्यक्रम में शामिल करेंगे. आप हमें कॉल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं, वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे श्रोताओं, बस इसका ख्याल करना है. आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित, सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: The benchmark domestic indices register modest weekly gains. US markets wrap up week on negative note. And global crude oil prices jump around 16% this week.

0: any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, आइए अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह किस तरीके से हमारे घरेलू शेयर सूचकांकों ने प्रदर्शन किया। इस सप्ताह घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली बढ़त देखी गई। बड़ी कंपनियों के उम्मीद से बेहतर परिणामों के बाद कमजोर वैश्विक संकेतों, रुपए में गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद बाजार में जबरदस्त खरीदारी हुई। इस हफ्ते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.7% बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.5% से अधिक की बढ़त के साथ 24,334 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार का प्रदर्शन प्रमुख शेयर सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा। इस सप्ताह मिड कैप 100 सूचकांक 1% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.6% नीचे आए। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह रुपया 96 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.28 रुपए पर बंद हुआ। जितेंद्र जुड़ रहे हैं श्रोताओं हमारे साथ जयपुर से। बहुत
2: मैडम
1: सवाल पूछिए।
2: हाँ सर, ये मैं किसी के बिहाफ से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो निफ्टी 50 या 100 तक भी पकड़ लीजिए, मैं बोला पूछ के ही बता दूंगा कि वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेस करना चाह रहा है शेयर, उसका डीमेट अकाउंट है, तो कौन सा सेक्टर जैसे वो अभी स्टार्ट करें इंस्टॉलमेंट लेने के लिए? 50 तक भी चलेगा निफ्टी 50 100?
3: अच्छा, जितेंद्र जी का शायद मतलब इंस्टॉलमेंट से SIP फॉर्मेट है, आप स्टैगर्ड इसको परचेस कहते हैं। मुझे लगा जितेंद्र जी, देखिए पहली बात तो कंपनी की चॉइस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेक्टर बताने से पहले मैं आपको ये सावधान करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छे सेक्टर में भी बैड फिशेस होती हैं, उसमें ऐसे कंपनीज आ जाती हैं। तो 4-5 सेक्टर्स का मैं नाम ले लेता हूं, आप उसको ध्यान में रखिए। डिफेंस को ध्यान में रखिए, FMCG को ध्यान में रखिए, और आप ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कंपनीज ऑटोमोबाइल कंपनी ज्यादा बना रहे हैं, आप उनको ध्यान में रख सकते हैं, और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े जो शेयर्स हैं उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं, उन पे आप ध्यान रख सकते हैं। 4-5 सेक्टर्स हैं, पर मैं दोहराता हूं कि कंपनी का जो चयन है वो बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स आपको पूरी तरह से स्टडी करने चाहिए, उनका प्रॉफिट, उनका ऑर्डर बुक, उनके प्रमोटर्स कैसे हैं, उनमें कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही है, उनका भविष्य कैसा है, ये सब चीजें देख के तब आपके आपके फ्रेंड जिनके बिहाफ पे आप पूछ रहे हैं, आप उनको सारी बातें बताइएगा, कोई बात मिस मत करिएगा, वरना संदेश अधूरा रह जाएगा।
0: Our next caller is VR Nath from Delhi. Mr. Nath.
4: जी,
0: सवाल पूछे आपने।
4: हेलो
0: जी,
4: मुझे पूछना यह है कि जो शेयर बेचते हैं या खरीदते हैं
0: जी,
4: तो उसका जो प्राइस, सेल प्राइस और जो ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो होती है
0: जी,
4: अबाउट 1% को कहाँ दिखाया जाए?
3: कहाँ दिखाया जाए? आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वीआर नाथ जी जानते हैं, जानना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ दिखा, क्योंकि जब आप इनकी अकाउंटिंग करते हैं, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, क्योंकि होता क्या है प्राची और निशित के, जब जो लोग इसमें रेगुलर सेल परचेज करते हैं तो वो कैपिटल गेन की जगह बिजनेस इनकम होता है, उसको हम कहते हैं होल्डिंग शेयर्स इन स्टॉक एंड ट्रेड। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें अलग से एक खाता खोला जाता है जिसमें ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी दिखाई जाती है, बाकी ये आपके शेयर्स की प्राइस का हिस्सा ही बनता है। अगर आप इसको आयकर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, क्योंकि आयकर की डेट चल रही है, मैं गेस कर रहा हूं कि शायद नाथ साहब वो पूछना चाह रहे हो, तो इसको आप अपनी परचेज प्राइस में से ऐड करके या सेल में से घटा के आप अपना नेट कैपिटल गेन निकाल सकते हैं।
1: दिल्ली से हमारे साथ राजीव जुड़ रहे हैं। राजीव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: नमस्कार मार्केट मंत्रा जी, ये जैसे मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग 50% IT सेक्टर में लगा रखा है, तो इस महीने रुकना चाहिए कि सेल कर दूं सर? कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट है।
3: राजीव जी का बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आईटी सेक्टर निरंतर चर्चा में प्राची और निश्चित बना हुआ है, आप देख ही रहे हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी AI से खतरा, कभी लेऑफ्स का खतरा, कभी अमेरिका में मंदी का खतरा, कभी दुनिया में मंदी का खतरा, बहुत रोलर कोस्टर राइड आईटी सेक्टर की आ रही है। तो राजीव जी, मैं सलाह दूंगा, आपका जो विचार है अच्छा है, अगर आप अभी मुनाफे में है तो बुरा विचार नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और प्रॉफिट बुक करके और इसको नए सिरे से आप कुछ और सेक्टर्स का भी चयन कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में तो लगा ही सकते हैं, पर मैंने अभी कुछ सेक्टर्स का नाम लिया, FMCG है, डिफेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑटोमोबाइल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फोकस्ड है उन पे लगा सकते हैं। तो आप इसको बड़ा हिस्सा एक ही सेक्टर में तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए।

0: राजीव, तो ये भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। तो आपने काफी बड़ा हिस्सा एक ही सेक्टर में लगा रखा, और अगर आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट है और ऐसे माहौल में प्रॉफिट है, तो मुझे लग रहा है ये बुरा आइडिया नहीं होगा। आप प्रॉफिट उस पर बुक करके और नए सिरे से मार्केट में जब जब करेक्शन आए, स्टैगर्ड फॉर्म में, जिसको हम SIP कहते हैं, SIP मतलब सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, उस तरीके से इसको लगाए।
1: नेक्स्ट कॉलर इज अमित झा फ्रॉम दिल्ली। अमित,
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार
2: सभी को। नमस्कार सर, कोहली सर। सर प्रश्न मेरा मिलता जुलता ये सारे श्रोताओं ने पूछ लिया, लेकिन थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूँ सर
0: जी।
2: कि जैसे आपने कहा कि सेक्टर की कंपनी आपको देखना चाहिए, उनके फंडामेंटल क्या है, उनके ऑर्डर्स बुक क्या है, उनके पोर्टफोलियो कैश फ्लो क्या है, जो भी है अच्छा होती है। तो सर मैंने तो अभी रिसेंटली 2 सालों में देखा है कि एक IT की आप चर्चा कर ही रहे हो, IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी, सारे कुछ ठीक थे, फंडामेंटल भी ठीक थे, मैनेजमेंट भी ठीक था, बैंकिंग सेक्टर की लीडर कंपनी, नाम नहीं लूंगा, जैसे आप कार्यक्रम नहीं लेना होता, सेक्टर की बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, टॉप लीडर कंपनी सर। और अचानक से उसमें ऐसी कोई न्यूज आ जाती है और स्टॉक एकदम से गिरने लगता है सर, और 30-40% टूट जाती है, तो अब उस दौरान हम कौन सा फंडामेंटल देखें? धन्यवाद सर।
0: बहुत अच्छा सवाल अमित ने किया है निश्चित प्राची, क्योंकि ये अक्सर निवेशकों को ये रहता है कि हमने सब फंडामेंटल्स चेक किए, सब कुछ अच्छा था, ऑर्डर बुक अच्छी थी, बॉटम लाइंस अच्छी थी, टॉप लाइंस। अब देखिए, न्यूज पर तो अमित किसी का कंट्रोल नहीं है,
3: बिल्कुल।
0: अगर कोई ऐसी खबर, कंपनी से कोई ऐसी खबर निकल के आती है, उनके बारे में कोई आक्षेप हो जाता है, कोई उनके मैनेजमेंट से संबंधित कई बार कोई खामी निकल आती है, इस पर तो देखिए किसी, तो देखिए शेयर मार्केट में जो निवेश होता है अमित, उसमें जोखिम तो भरा होता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ी। यही जोखिम होते हैं कि आपने सब कुछ देखा फिर भी 30-40%, पर अगर कोई खबर बहुत बुरी नहीं थी अमित, तो वो रिकवर भी कर जाता है। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा, बहुत ही बुरी खबर आ गई, क्योंकि हम अब देखिए स्पेसिफिक्स तो डिस्कस करते नहीं है, या तो मुझे कंपनी का हम नाम लेते होते तो हम देखते क्या खबर आई है, क्यों करेक्शन आई, तो ये सब हम नहीं करते। तो आपको मैं जनरल तौर पर बता देता हूं कि अगर कोई छोटी मोटी बात है तो शेयर मार्केट में एक अच्छी बात यह है कि वो भुलाती भी बहुत जल्दी है, वो शॉर्ट मेमोरी होती है, भुला के आगे चल पड़ते हैं। देखिए ना, पिछले सालों में कितनी घटनाएं घटी, आज आपको याद भी नहीं होंगी। तो इसलिए अगर कोई बड़ी चीज नहीं है तो आप घबराएं नहीं, पैनिक ना करें, वो रिकवर कर जाएगा। और ये जोखिम तो आपको साथ में हमेशा ही रहेगा, क्योंकि खबरों पे हम इस समय एक खबर के प्लेटफॉर्म पे हैं, आकाशवाणी पर हैं, यहां से खबरों की ज्यादा चर्चा होती है। तो हमसे अच्छा, मुझे लगता है हमारे जो माननीय एंकर, इनसे अच्छा कौन बता सकता है खबर कब क्या आ जाए, इसको कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता। मैं
1: And moving on to the US markets, major US indices ended lower yesterday and posted weekly losses dragged by technology shares. The Nasdaq Composite Index shed 1.4%, S&P 500 dipped 1%, and the Dow Jones Industrial Average slipped around 0.8%. For the week, the Nasdaq slid 2.9%, the S&P 500 declined by 1.6%, while the Dow fell 0.9%.
3: Aur Kolkata se hamare saath Animesh jud rahe hain. Animesh ji, karyakram mein aapka abhinandan. कृपया अपना सवाल।
4: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र।
3: गुड इवनिंग,
4: दिस अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता।
0: यस अनिमेश
4: सर, आई एम सुपर एनुएटेड मैन, शुड आई गो इन फॉर एनी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड फॉर पेंशन स्कीम, वुड इट बी रिस्क फ्री, और आई शुड फॉलो द जनरल रूल एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? थैंक यू सर।
0: Animesh, I think the best way for you should be that since you're retired, and you know, generally at the age of retirement, we do not recommend being very adventurous with your investments, you know. So you should not be going very aggressive. So investing directly in stock markets, unless you have complete knowledge and you are very, very research based, or you are under guidance of a SEBI registered finance professional, then maybe yes. But otherwise, if you use your own judgments and you've got limited time at hand, limited aptitude at hand, then I would suggest you take the mutual fund route. And incidentally, on Sundays, Akashwani and this very show, Market Mantra, a mutual fund expert comes, which guides you on, you know, what kind of investments and what's the duration of investment.
3: Bilkul.
0: So direct market depends on how much access you have to the things I mentioned, but mutual funds, yes, you can try, because there you can exit anytime, and you can keep a watch on how the fund has been performing.
1: Right, and ICICI Bank today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The bank's standalone net profit rose around 16% to 14,804.5 crore rupees on an annual basis. The bank's net interest income for the quarter grew by 12.7% to 24,384 crore rupees. The ICICI Bank's net

0: NPA ratio fell by 6 basis points, 2.35% on an annual basis.
1: एक्सिस बैंक ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अपने वित्तीय परिणाम साझा किए हैं। बैंक का शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर लगभग 23% बढ़कर 7,114 करोड़ रुपए हो गया है। इस तिमाही के लिए बैंक की शुद्ध ब्याज आय 8% से बढ़कर 14,646 करोड़ रुपए हो गई है। एक्सिस बैंक का कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात वार्षिक आधार पर 6 आधार अंक लुढ़ककर 0.39% रह गया है। और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। केशव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: सरद जी को नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे अभी जो विश्व में तेल की प्रॉब्लम चल रही है, हम हिंदुस्तान में टू व्हीलर अगर बैटरी वाला लेने जाते हैं तो टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसका कितना प्रभाव हो रहा है? और सुनने में ये भी आया कि चाइना की तरफ से जो बैटरियां बनती थी तो बैटरियां उन्होंने कंट्रोल कर दी है और पाबंदी लगा दी है, और आने वाले टाइम में क्या ये बैटरी वाली गाड़ियों में भी क्या प्रॉब्लम आने के चांसेज है, इसके लिए आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? धन्यवाद।
3: नहीं केशव, बैटरी में आगे इतनी प्रॉब्लम होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भारत में भी अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो छोटी छोटी कंपनीज भी अब टू व्हीलर्स बना रही हैं। हम लोग इस समय दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, नोएडा में मेरी जानकारी में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स अब टू व्हीलर्स के खुल रहे हैं। तो ये लोग लिथियम बैटरीज हम लोग वैसे तो हम चाइना से भी मंगाते हैं, पर अब भारत में भी इस पर बहुत काम चल रहा है। मुझे लगता है भविष्य का जो ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर होने वाला है वो बैटरी ओरिएंटेड होने वाला है, और जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल और क्रूड को लेकर अभी चिंताएं हैं दुनिया में, जो परिस्थिति है, नहीं मुझे नहीं लगता है केशव के आने, बल्कि आने वाले समय में अभी जो दिक्कतें हैं वो उल्टा रिजॉल्व हो जाएंगी, वो उनका निस्तारण हो जाएगा। और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप जो बैटरी के स्कूटर या कार लेना चाहते हैं आप ले, अब तो सरकार भी उसको बढ़ावा दे रही है। आप अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार तो उस पर इंसेंटिव भी दे रही है, टू व्हीलर्स पे भी है, कारों पर भी, या पुरानी कार लेकर आते हैं उसको आप डिस्कार्ड करते हैं तो उस पर भी इंसेंटिव है। तो ये आपको जो आ रही है वो टेम्परेरी होगी, तो मुझे लग रहा है आगे आपको ये नहीं आएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है।
0: Right, and our next caller is Gopal from Mumbai. Gopal. Gopal, can you hear us? All right. In the meanwhile, HDFC Bank as well today reported its financial results for Q1 FY27. The bank's standalone net profit rose 5% to around 19,060 crore rupees on an annual basis. The bank's net interest income for the quarter grew by 6.7% to 33,530 crore rupees. HDFC Bank's net non-performing asset ratio fell by 6 basis points to 0.41% on an annual basis.
1: और संजीव जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार सभी जनों को, मेरे तरफ से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम 1,00,000 रुपए का शेयर लेते हैं और उसे 1,20,000 में बेचते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट पे ही टैक्स लगेगा या फिर 1,00,000 पे लगेगा पूरे 1,25,000 पे?
3: संजीव, अगर आप मात्र 1,00,000 का खरीदते हैं और 1,20,000 का बेच देते हैं तो आपको मैं बता दूं कि 1,25,000 तक की इनकम टैक्स में इक्विटी शेयर्स बेचने पर एक एग्जेम्पशन है, एक विशेष छूट दी हुई है। तो अगर आप इसको एक उदाहरण के तौर पर पूछ रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि टैक्स तो खाली 20,000 पर लगेगा, और अगर आपने शॉर्ट टर्म बेचा है, लॉन्ग टर्म बेचा है तो 12.5% लगेगा, आपने शॉर्ट टर्म बेचा है तो उस पर 20% लगेगा। परंतु अगर खाली एक ही ट्रांजैक्शन आपका है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, तो 1,25,000 तक, जब तक आपका ये पूरा मुनाफा, ये सेल नहीं, पूरा मुनाफा आपका 1,25,000 तक का इसमें से माफ होता है। तो अगर आपकी खाली ट्रांजैक्शन है तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके 20,000 पे जीरो टैक्स लगेगा। देखिए, मैंने एक कदम और आगे बढ़ा के आपको बता दिया। जी,
0: एंड कोटक महिंद्रा बैंक्स स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट रोज अराउंड 26% ऑन एन एनुअल बेसिस टू 4,123 करोड़ रुपीज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल। द बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम for the quarter grew by 9% to 7,928 crore rupees. Kotak Mahindra Bank's net NPA ratio fell by 6 basis points, 2.27% on an annual basis.
1: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कल मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही का परिणाम जारी किया है। कंपनी की आय सालाना आधार पर 25% से अधिक बढ़कर करीब 311,850 करोड़ रुपया हो गई है। हर तिमाही के नतीजों के

0: आधार पर यह आय 4.3% बढ़ी है। कंपनी का शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 22.4% से घटकर 20,946 करोड़ रुपया रह गया है। और गोपाल मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, करके अपना सवाल
1: जी। नमस्कार मंत्री टीम को।
0: नमस्कार,
1: मेरे दो सवाल हैं जी। ये जो आरबीआई ने इंटरेस्ट ये रेट नहीं बढ़ाई, क्या उसकी मजबूरी थी क्या? जबकि महंगाई तो कमर तोड़ दी है, फूड इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गई है, उसकी मजबूरी थी? पहला सवाल ये है नहीं बढ़ाने का इंटरेस्ट। दूसरा सवाल ये है, फ्राइडे को आप देखिए इंडेक्स चली इतनी 1000 पॉइंट बीएसई और 275 एनएसई, एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 3000 डिक्लाइन था, 1000 एडवांस। पिछले दो साल से इक्विटी मार्केट की बहुत हालत खराब है, कई इक्विटीज तो वेंटिलेटर पे पहुंच गए हैं। तो ये इसके भी जिम्मेदार कौन है? एलसीबी जिम्मेदार है, बीएसई एनएसई जिम्मेदार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है या प्रोमोटर जिम्मेदार है?
2: गोपाल जी, आपका पहला सवाल आरबीआई रिपो रेट और इन्फ्लेशन से संबंधित है। अभी इन्फ्लेशन देखिए, आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है वो 2% से 6% का होता है, तो अभी जो सीपीआई के नंबर्स आए वो 4.38 के आए। अगर लगातार महंगाई सीपीआई जिसको हम कहते हैं वो लगातार ऊपर बनी रहती है तो फिर आरबीआई कहीं, इसको हम हॉकिश स्टैंस कहते हैं, आरबीआई अपना हॉकिश स्टैंस लेगा। पर अभी देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है गोपाल जी, आपको ध्यान रखना होगा कि वो जीडीपी की रफ्तार को लगाम देता है। तो आरबीआई जब तक नहीं बढ़ाता, जब तक उसको पूरी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यकीन नहीं हो जाता कि अब महंगाई को वाकई ही रोकना है, तो अगर ये लगातार आगे बढ़ता रहा तो आरबीआई को हो सकता है आरबीआई इस पर आगने वाली एमपीसीज में कॉल ले। दूसरा, आपने पूछा एडवांस डिक्लाइन ये दो साल से हुआ है, ना एनएससी जिम्मेवार है, ना बीएससी जिम्मेवार है, ना भारत सरकार जिम्मेवार है, ना सेबी जिम्मेवार है, ना कंपनी जिम्मेवार है। ये परिस्थितियां इस प्रकार की हैं। मार्केट देखिए, मार्केट डिमांड और सप्लाई पर चलता है गोपाल जी। आप भी खरीदते होंगे बेचते होंगे, लोग खरीदते बेचते हैं। अगर बीएससी एनएससी या भारत सरकार जिम्मेवार होने लग जाए तो फिर तो मार्केट को मार्केट नहीं कहेंगे, फिर तो उसको एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म कहेंगे। तो मार्केट को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं गोपाल जी, आपने देखा होगा उनके बहुत अच्छे। आप देखिए अभी जो आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो मुझे बताई, उसमें बैंकिंग के आप देखिए क्या रिटर्न उस दिन क्या उछला है। तो मुझे लगता है मार्केट में सेक्टर रोटेशन होती रहती है, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती रहती हैं, डिमांड सप्लाई बढ़ती रहती है, कंपनीज के रिजल्ट्स आते रहते हैं। मैं अगर मार्केट के उठने गिरने के कारण बताऊं तो मुझे पूरा का पूरा मार्केट मंत्रा का आधा घंटा सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने में लग जाएगा जी।
0: आगे बढ़ते हैं और मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो, गुड इवनिंग
0: जी।
3: मेरा सवाल है कि अमेरिका और ईरान का वॉर तो अभी कुछ अनिश्चितता से भरा हुआ है, कभी हॉर्मुज खुली होती है कभी नहीं होती है। तो ऐसे हालत में जो ऑयल कंपनीज है
2: जी,
3: इंडिया में जो है उसका जो ऑयल कंपनीज के शेयर लेना कितना अच्छा रहेगा, वो लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और आईटी सेक्टर में उसका क्या फर्क पड़ सकता है?
2: देखिए, ऑयल कंपनीज के शेयर्स अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कुछ दिन के लिए शायद दूर रहने की सलाह दूं, क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव क्रूड की प्राइसेस में आप देख ही रहे हैं बना हुआ है। पिछले कई ऊपर गया, फिर उसके बाद $71-72 आया, फिर $85-86 चल गया। अभी बारबल मंदीप जो सऊदी अरेबिया के पास है उसको कुछ बंद होने की खबरें आ रही हैं, हो सकता है अगर बंद हो जाए तो क्रूड और ऊपर जाए। तो मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आप मुझे बहुत सीनियर प्रश्नकर्ता हैं, आप बहुत पुराने वेटरन हैं, तो आपके लिए मुझे लग रहा है ऑयल कंपनी से आप दूर रह सकते हैं। आईटी कंपनीज भी काफी उतार चढ़ाव, अभी हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि आईटी कंपनीज में, पर आईटी कंपनीज में भी आप सिलेक्टेड कंपनीज में जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है, जिनका एआई थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जिनके एआई एप्लीकेशंस और एआई टूल्स जिस पे काम कर रहे हैं, जिसकी एआई रिसर्च अच्छी है, उन पर आप सिलेक्टिवली आप उसको चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आईटी सेक्टर ने काफी उतार चढ़ाव दिखाया है, अभी हम थोड़ी देर पहले उसकी काफी डिटेल में रत्नाकर जी चर्चा कर चुके हैं।
4: नेक्स्ट कॉलर इज आरपी उपाध्याय फ्रॉम दिल्ली।
5: नमस्कार कोल साहब।
2: नमस्कार उपाध्याय जी।
5: कोल साहब, एक एडवाइस लेनी थी कि मैं 70 इयर्स सीनियर सिटीजन हूँ, तो अब तक मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता था
2: जी,
5: इस साल 12 लाख के उससे मेरे पे टैक्स नहीं लग रहा, तो मुझे भरना चाहिए या नहीं?
2: अच्छा देखिए उपाध्याय जी, उपाध्याय जी ने शायद अपना रेडियो सेट ऑन किया हुआ था। अगर 12 लाख की वजह से आपका इनकम एग्जेम्प्ट हो रहा है, इसको पुराने एक्ट में 87A कहते थे, शायद उपाध्याय जी को वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, अगर उसकी वजह से हो रहा है तो फिर आपको भरना पड़ेगा। अगर आप बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से नीचे हैं, जैसे अब नए रिजीम में 4 लाख है, पुराने रिजीम में 2.5 लाख है, जिस व्यक्ति की

0: बेसिक एग्जेम्पशन से नीचे की इनकम है उसको भरना जरूरी नहीं है, परंतु अगर इस 87A के रिबेट की वजह से आपकी इनकम कम होती है तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको, 78 साल के हैं प्राची और निशित, और देखिए अभी भी वो कितने लॉ अवॉइडिंग है, उनको पूरी इस बात की चिंता है कि मेरी भले ही मेरा टैक्स नहीं है पर मुझे रिटर्न भरना चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत सारे युवाओं को उपाध्याय जी से सीखना चाहिए।
1: राइट,
2: और दिल्ली से हमारे साथ मुकेश जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स हैं और ग्रीन एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं
0: जी,
3: उनमें जैसा कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर की जो कंडीशन रेगुलर बन रही है जिसकी वजह से पावर के क्राइसिस हो रहे हैं
0: जी,
3: तो उस चीज को देखते हुए अभी इसमें जो इस रेट पे इन्वेस्टमेंट करा जाए तो मतलब एक क्वार्टर रुकने में मतलब क्या प्रॉफिटेबल होंगे वो। और दूसरा है सर, मेरा जो बैंकिंग सेक्टर्स के जो टॉप लीडर्स बैंक हैं उनमें क्या मतलब अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
0: देखिए पहले मैं आपके मुकेश जी बाद वाले सवाल का लेता हूं कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, अभी हमारे माननीय एंकर्स ने कुछ बैंकों के रिजल्ट्स भी पढ़े और बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर भारत का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप सिलेक्टिव बेसिस पे चाहे सरकारी बैंक हो चाहे निजी क्षेत्र के बैंक हो, आप उनको लंबे वक्त के लिए रख सकते हैं। आपका इनका पहला सवाल था कि रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के शेयर्स के लिए क्या एक क्वार्टर वेट करना चाहिए। मुझे लगता है मुकेश के अगर अच्छी कंपनी आपको मिल रही है ग्रीन एनर्जी में तो उसमें जितनी जल्दी आप उस बस में सवार हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लंबे वक्त के लिए यही फ्यूचर है। जैसा आप बात कर रहे हैं अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, अदरवाइज भी फॉसिल फ्यूल से हटके दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अगर आपके पास फंड्स हैं और आप पूरी रिसर्च कर रहे हैं तो आप इसको जल्दी भी ले लेंगे, परंतु कंपनी का चयन जो है वो बहुत ही चिंतन करके होना चाहिए।
2: बिल्कुल, दिल्ली से हमारे साथ संतोष जुड़ रहे हैं। संतोष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो
2: जी, अपना सवाल पूछिए।
4: हाँ नमस्कार कोहली जी।
0: नमस्कार संतोष जी।
4: हाँ मैं आपका फैन हूँ, मैं दिल्ली आपकी वीडियो भी देखता हूँ।
0: प्लेजर सर।
4: मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि मार्केट में इस साल में कैसा रहेगा, दिसंबर तक मार्केट कैसा रहेगा निफ्टी।
0: चलिए संतोष जी, गोल्ड की पहले बात कर लेते हैं। गोल्ड में मुझे लग रहा है इस समय गोल्ड $4,000 के आसपास है, भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 1,40,000-1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच में घूम रहा है। जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, मैं ये निश्चित और प्राची को भी जानकारी उनके लिए भी शायद सबके लिए काम की है, तो कि HSBC है, मॉर्गन स्टैनली है, JP, जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज जो इसको ट्रैक करती हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उन सबका कहना यह है कि वो सोना लंबे वक्त के लिए बहुत ही लाभदायक रह सकता है, परंतु शॉर्ट टर्म में क्योंकि ये जो क्राइसिस चल रही है, डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड्स है, इनकी वजह से उतार चढ़ाव जो आपको लगातार देख, हो सकता है यहां से और नीचे भी जाए, तो इसलिए लोगों को सलाह ये, शायद मैं होता तो ये करता कि मैं थोड़ा थोड़ा करके जब जब करेक्शन आती तो लेती। बाकी निवेश की सलाह तो जैसे हम शुरू में हमारे माननीय एंकर पढ़ते हैं कि आपको किसी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल से पूछना चाहिए, हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट आपने पूछा कैसी रहेगी, मार्केट इज एनीबडीज गेस। युद्ध पे नजर रखते हैं, देखिए सारी नजर गड़ा के रखिए वेस्ट एशिया पे, वहां से जो खबरें आती हैं उसके आधार पर मार्केट ऐसे नाच रही है जैसे सपेरे के आगे जो है बीन बजाता है तो सांप नाचता है, इस तरीके से नाच रही है जी।
1: राइट, एंड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अंडर मिशन Agaman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Sharaji, how do you see this? This is a really remarkable, you know, an achievement.
0: Well, this is indeed a big leap for the Indian space tech industry, because private startups, we've been talking for a very long time. And I think a private rocket being launched in India for the first time, I think this is a huge achievement, I would say. And this is very close to our Prime Minister's heart as well, because he wanted these space startups to come, which has so far been the domain of the government. A big, very, very laudable effort.
1: Right. And moving on to oil, the global crude oil prices rose around 16% this week. The surge was driven by an escalation in fighting between the US and Iran, as both sides traded retaliatory strikes. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude September futures surged 15.9% to settle at $88.10 per barrel. West Texas Intermediate crude August futures jumped 15%.

11:41 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए आप, स्वागत है आप सबका एक बार फिर प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत में। आपके साथ मैं विकास।

अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत, और इस आखिरी गीत के साथ मुझे यानी विकास को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचान नविदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राद रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसद के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देशभर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। जाने माने उद्योगपति रविकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी पुस्तक लीडिंग फ्रॉम द बैक टू अचीव इम्पॉसिबल की एक प्रति भी भेंट की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अनाउंसिंग द अवार्ड्स यस्टरडे इन न्यू दिल्ली, चेयरमैन ऑफ जूरी फीचर फिल्म जयराज सेड ममूटी एंड कार्तिक आर्यन हैव वन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन बेस्ट एक्टर कैटेगरी फॉर देयर मूवीज ब्रह्मयुगम एंड चंदू चैंपियन। ही सेड यामी गौतम विल बी गिवन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन द फिल्म आर्टिकल 370। चेयरमैन ऑफ जूरी नॉन फीचर फिल्म Asim Kumar Sinha said, Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Featuring Film Award. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastava. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book. Lok Sabha Speaker Om Birla has given approval for a separate seating in the House for the 20 rebel TMC MPs who have joined Nationalist Citizens Party of India. Mr. Birla also gave his approval to the merger of six Shiv Sena UBT MPs with the Shiv Sena led by Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. With the merger of the six MPs, the strength of the Shiv Sena has gone up to 13 from 7 in the lower house of parliament. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of the parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence on Monday and continue till the 13th of next month. During this session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In Gujarat, five people were killed and several others injured yesterday after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing processing unit on the Gramol Gatrad Road in Ahmedabad. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed deep grief over the loss of lives in the fire and prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Our correspondent reports that the fire has been brought under control. Union Home Minister Amit Shah has extended condolences over the tragic accident at a firecracker factory in Ahmedabad. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal at the URL results.digilocker.gov.in. In line with the recommendations

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। इसमें जो कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसका नाम है पहचान तो थी।

सुपरमार्केट के दरवाजे से ढेरों सामान से भरी ट्रॉली लेकर अंजू बाहर आ गई। जरा सा उसका ध्यान बटा और पता चला सामान सही ट्रॉली लिए गिर गई वो। अब वो क्या करे, बेटी के स्कूल से आने का समय हो रहा था और रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। घर उसका ज्यादा दूर नहीं था पर सामान बहुत ज्यादा खरीद लिया था।

सड़क के किनारे ट्रॉली लगाए खड़ी थी वो, और सड़क पर से सारे रिक्शा नदारद थे। इक्का दुक्का कार जैसे मुंह चढ़ाती हुई सर से निकल जाती और वो बेबस ही देखती रह जाती। अब रिक्शे के इंतजार में कब तक खड़ी रहेगी वो? घर का दरवाजा बंद देखकर उसकी बेटी रूही परेशान हो जाएगी। ये सोचकर अंजू ने जल्दी जल्दी ट्रॉली से सामान का थैला भरना शुरू कर दिया और भारी थैला उठाए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए चली जा रही थी। माथे से पसीना बहने लगा, पर इतनी मोहलत नहीं थी कि सामान नीचे रखकर रुमाल से चेहरा भी पोंछ ले।

0: हांफते हुए बढ़ी चली जा रही थी कि सिल्वर कलर की एक लंबी सी कार बिल्कुल उसके पास से गुजरी। वो थोड़ा चौंक कर किनारे खड़ी हो गई, पर कार उससे थोड़ा सा आगे जाकर रुक गई और कार की खिड़की से खूबसूरत सा चेहरा झांकने लगा। तुरंत ही उसे अंजू नाम की एक पुकार सुनाई दी। ये कैसा संयोग है, जरूर कोई पीछे से और महिला आ रही होगी, उसका भी नाम अंजू ही तो हो सकता है। वो असमंजस में इधर उधर देखती रही और आगे बढ़ती रही। कार के पास पहुंची ही थी कि वो खूबसूरत चेहरा कार से उतरकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया और फिर से उत्साह भरी वही आवाज आई।
1: अरे अरे अंजू, तुम अंजू ही हो ना? पहचान रही हो मुझे?
0: आप सॉरी,
1: मैं नमिता, मुझे कैसे भूल गई?
0: नमिता, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही, तुम तो बिल्कुल, मतलब तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो।
1: कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, और देखो मैंने तुम्हें झट से पहचान लिया, और मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझे भूल गई?
0: अरे इतनी बढ़िया कार से तुम उतरी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इस सिल्वर कार मेरे लिए रुकी है, तो मैं थोड़ा हैरान सी हो गई सच कहूँ तो।
1: अच्छा ये बताओ, कितने सालों से हो इस शहर में?
0: बहुत सालों से, जानती हो मैं तो शादी होकर सीधा यहीं आ गई थी। और तुम?
1: अरे मैं भी लगभग तब से ही यहाँ हूँ।
0: और आज मिल रहे हैं दोनों, देखो।
1: बताओ आज मिल रहे हैं।
0: नमिता और अंजू एक ही स्कूल में पढ़ती थी, पक्की सहेलियां थी, साथ बैठना, लंच करना, एक दूसरे के घर जाना, घंटों गप्पे मारना, फिल्में देखना, शरारते करना, सब कुछ साथ साथ में होता था। दोनों के पिता का ट्रांसफर हो गया और दोनों सहेलियां अलग अलग शहर में चली गईं और अलग अलग कॉलेज में पढ़ने लगी। कुछ समय बाद पत्रों का आना जाना भी खत्म हो गया और दोनों सहेलियां बिछड़ सी गईं। अब इतनी सारी बातें थी कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म।

0: तुमने ड्राइविंग कब से शुरू कर दी भाई?
1: बस सीख ली। अब यू कह सकते हैं कि समय अनुसार सारे काम अपने आप आ जाते हैं, है
0: अरे
1: ना?
0: वाह, क्या बात है! और कहाँ रहती हो? तुम्हारे पति क्या करते हैं?
1: मेरे हस्बैंड वैसे तो व्यापार करते हैं और ज्यादातर पता है अंजू विदेश दौरे पर रहते हैं, यहाँ
0: वो
1: कम
0: तो
1: ही
0: तुम्हारे
1: रहते
0: कपड़ों से दिख रहा
1: हैं।
0: है। और बच्चे?
1: और बच्चे, बस समझ लो कि बच्चे बड़े बड़े हो गए और अपनी अपनी दुनिया में।
0: अरे अच्छा है, मुझे देखो मेरे बच्चे। ओ, बच्चों के नाम पे याद आया, नमिता रूही आने वाली होगी स्कूल बस से। ओहो नमिता, वो परेशान हो रही होगी, मुझे अब चलना होगा। आना ना एक दिन, मैं तुम्हें एड्रेस बताऊंगी।
1: अरे तो तुम जा कहाँ रही हो अंजू? आओ ना मेरे साथ कार में बैठो ना, मैं
0: कार?
1: तुम्हें छोड़ दूंगी वहां तक। चलो ना, इसी बहाने रूही से मुलाकात भी हो जाएगी।
0: पर घर पास में ही है नमिता, मैं चली जाऊंगी।
1: ओहो, इतना फॉर्मल कब से हो गए अंजू? याद है मेरे टिफिन से भी मेरे गोभी के पराठे सारे तुम चट कर जाती थी और मुझे कुछ नहीं मिलता
0: और एक भी
1: था।
0: टुकड़ा नहीं
1: हाँ, याद आ
0: छोड़ती
1: गया
0: थी।
1: ना।
0: और तुम
1: आज
0: भी तो घर
1: की
0: चलकर कहती थी कि घर चलकर खाना चाची ने और बनाए होंगे, है ना? याद है?
1: हाँ बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं उन प्यारी प्यारी बातों को, उन प्यारी प्यारी यादों को। चलो चलो, अब कोई बात नहीं, आओ बैठो, गाड़ी में बैठो, चलो चलते हैं।
0: नमिता, ये बाएं ले लो, वो सामने है हमारे घर की बिल्डिंग।
1: अच्छा, वो वाला? ओ चलो, बस ये आखिरी टर्न है और ये आ गया तेरा
0: ओ, वो देखो रूही
1: घर।
0: खड़ी हुई है। ऐसा करती हूँ, मैं उसको लेकर आती हूँ और चलो।
1: हाँ बिल्कुल, अरे वाह, बहुत प्यारी लग रही है।
0: रूही गेट पर होंठ पिसूरे, आंखों में बड़े बड़े मोती लिए खड़ी थी। अंजू को कार से उतर कर देख के वो हैरान रह गई। ये आंटी कौन है, उसने पूछा। जब उसने पलट कर देखा तो नमिता उसके भारी भारी थैले उठाए लिए चली आ रही थी। उसने भागकर हाथों से थैला ले लिया और सोचने लगी, अब नमिता को घर चलने के लिए कहना होगा, पर घर तो सारा बिखरा हुआ है, सुबह से वक्त ही नहीं मिलता और अक्सर वो बेटे को बस स्टॉप पर छोड़कर आने के बाद ही घर संभालती है, और आज तो वो सुपरमार्केट चली गई थी। सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं। नमिता तो बहुत सलीके वाली लग रही है, क्या सोचेगी? अच्छा हो वो कह दे, अभी वो जल्दी में है, फिर कभी आएगी। अंजू फिर बहुत जिद करेगी कि उसे जरूर आना होगा और एक दिन सब कुछ व्यवस्थित करके ही बुलाएगी उसे। हाँ, पर अभी तो रस्म निभानी ही होगी, ये सोचकर अंजू बोली, नमिता चलो ना घर चलो, एक कप चाय तो पीकर जाओ।
1: हाँ हाँ जरूर, अब इतने सालों बाद मिले हैं तो फिर कैसे जा सकती हूँ ऐसे, और वो तुम्हारे हाथ की यमी वाली चाय। चलो चलते हैं।
0: नमिता, ये रहा मेरा छोटा सा घर। माफ करना, घर बहुत बिखरा हुआ है, और ये मत सोचना कि हमेशा ऐसा ही रहता है।
1: आप तुम मुझे सफाई मत दे अंजू, मैं तुम्हें शुरू से जानती हूँ, बहुत कामचोर थी तुम
0: अरे नहीं भाई।
1: और आज भी बिल्कुल वैसी ही हो। हाँ, नॉवल पढ़ती होगी बैठ के।
0: अरे नहीं, ये देखो यहाँ पर टॉवल और ये सब बच्चों ने कपड़े बिखेरे हुए हैं, जल्दी जल्दी मैं समेट लेती हूँ। नमिता तुम बैठो ना यहाँ पर।
1: अरे ठीक है ना अंजू, परेशान क्यों हो रही हूँ, मैं कोई गेस्ट थोड़ी ना हूँ यहाँ
0: वो तो
1: पर।
0: है।
1: भाई बच्चों वाला घर है तो बिखरा अच्छा ही लगता है। आओ बेटा, आओ रूही, मैं तुम्हारी टाई खोल दूँ। अंजू पहले इसे खाना दे देते हैं और फिर बाद में घर संभालती रहना, है ना? इसे भूख लगी होगी ना।
0: अंजू अब भी यही सोच रही है कि खाना भी तो इतना सादा सा बनाया है, बच्चों की पसंद वाला दाल चावल और भिंडी। खाने का समय हो रहा है, नमिता को खाने के लिए तो पूछना पड़ेगा। ओहो, वो किसी संडे को क्यों नहीं मिली? घर भी सजा संवरा रहता है और किचन भी भरा पूरा। नमिता के आधुनिक पहनावे और महंगी कार को देखकर अंजू को यकीन हो गया था कि वो बहुत ही अमीर है। अब ऐसा सादा खाना तो शायद ही उसे पसंद आए। अंजू के पति की इनकम तो अच्छी थी और बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। इस महंगे शहर में उसका अपना 2 कमरों का घर था, उसे कोई शिकायत नहीं थी, पर 2 बच्चों की देखभाल और घर बाहर संभालते वो थोड़ा खींच जाती थी। रूही को खाना देकर नमिता से खाने के लिए पूछ ही लिया और नमिता ने झट से हाँ कर दी। मैं ऐसा करती हूँ, नमिता कुछ तुम्हारा

0: स्पेशल सा बना लेती हूँ।
1: अरे इतनी अच्छी इतनी टेस्टी सब्जी है, और क्या बनाना चाहती हो? कॉम्प्लीमेंट दूँ क्या? कुछ और मत बनाओ, दाल चावल सब्जी, यही तो मेरे लिए सबसे अच्छा कंप्लीट मील है, पता है तुम्हें।
0: ठीक है, ये लो, साथ में दही, पापड़, अचार और सलाद भी रख दिया है। ठीक है,
1: हाँ बिल्कुल, अचार, आहा यम्मी।
0: सच बताना नमिता, तुम यूं ही तारीफ कर रही हो या वाकई तुम्हें ये सादा सा खाना अच्छा लग रहा है?
1: नहीं, सच में बहुत टेस्टी है ये खाना, और घर का बना खाना कितना अच्छा होता है, कितना स्वादिष्ट होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है अंजू? आज हम साथ साथ खा रहे
0: वो तो
1: हैं।
0: है। नमिता ने ऐसे चटकारे लेकर खाए जैसे जाने कितना स्वाद हो। अंजू को लगा वो उसका संकोच मिटाने के लिए इतनी तारीफ किए जा रही है। डोंगे के लिए हाथ बढ़ाते, सलाद लेते, नमिता के हाथों पर नजर पड़ी अंजू की, और अंजू ने अपनी उंगलियों की तरफ देखकर उन्हें समेट लिया। नमिता के कोमल हाथ बहुत सुंदर लग रहे थे, लंबे नाखून शेप में कटे थे और हल्के रंग की नेल पॉलिश लगी थी। अंजू तो कभी नेल पॉलिश लगा ही नहीं पाती, कभी लगा भी लिया तो उसी समय रूही या रोशन को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या कुछ गिरा देते हैं या फिर चोट लगा लेते हैं। सबके सोने के बाद कभी नेल पॉलिश लगाने की कोशिश भी करती है तो इतनी थकी हुई होती है कि हाथों में नेल पॉलिश की शीशी लिए हुए ही सो जाती है, और फिर होश भी नहीं रहता। अभी भी नाखूनों पर आधे उजड़े नेल पॉलिश बड़े भद्दे से लग रहे हैं। याद ही नहीं रहता कब उसने ध्यान से अपना चेहरा आईने में देखा हो। हमेशा भागम भाग लगी रहती है। अंजू सोच रही थी, दोनों की उम्र एक है पर कितनी अलग लग रही है नमिता।

नमिता उसके मन में उठते इन गुब्बारों से निरपेक्ष पुरानी बातें याद करने में लगी थी। वो स्कूल से लौटते हुए लंबा रास्ता चुनना कि घर जल्दी ना आए, डेस्क पर सर झुकाकर कागज में लिपटे कच्चे टिकोरे नमक के साथ खाना, वो किताबों के बीच रखकर बाल पॉकेट बुक्स पढ़ना, कॉरिडोर में टीचर्स के चाल की नकल करना और कभी कभी पकड़े जाने पर एक्टिंग करना कि चोट लगी है। नमिता की बातों में वो भी वर्तमान को भूल गई, स्कूल के दिनों में पहुंच गई। खाने के बाद भी सोफे पर जमी दोनों सहेलियां स्कूल मोहल्ले की बातें याद करके देर तक हंसती रहीं। रूही आराम से मौके का फायदा उठाकर टीवी देखती रही। शाम होने को आई तो रूही ने ही याद दिलाया कि रोशन के आने का वक्त हो गया है। नमिता साथ ही बस स्टॉप तक आई और रोशन को गोद में उठाकर बहुत प्यार किया, फिर आने का वायदा कर उससे आने का वायदा लेकर चली गई। नमिता के जाते ही अंशु बहुत अनमनी हो गई। दोनों सहेलियां एक साथ ही पढ़ती थी, घर का बैकग्राउंड भी एक सा था, पर आज दोनों की जिंदगी कितनी अलग है। नमिता यूं बिंदास, जहां मन होता है घूमती है। भाई बच्चे हॉस्टल में हैं और पति विदेश में है, पैसे हैं, गाड़ी है, जिधर मन हो चल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। रोकते टोकते तो उसके पति अवनीश भी नहीं है, पर वो क्या करे, दोनों बच्चों का स्कूल, उनके होमवर्क, उनकी ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, कराटे क्लास, फिर शॉपिंग, खाना बनाना, घर संभालना, देखरेख करना, मेहमान नवाजी, इन सब के बीच वो चक्कर घिन्नी से घूमती रहती है।

नई चप्पलें डब्बे में ही बंद रह जाती हैं और वो एक ही चप्पल को घसीटती रहती है। मजाक में नमिता ने भी कह दिया, जरूर नॉवल पढ़ती होगी। कितना शौक था उसे फिल्में देखने का, नॉवल पढ़ने का, पर अब ये सब किए हुए तो जैसे एक युग बीता, समय ही नहीं मिलता, बस बच्चों की कोर्स बुक ही पढ़ती रह जाती है।

0: अंजू के पति अवनीश ऑफिस से आए तो भी अंजू अपनी सोच में ही गुम थी। पति ने भी पूछा अंजू से, क्या तबीयत ठीक नहीं है? उसने टाल दिया, सब ठीक है। पर सबके सो जाने के बाद भी अंजू की आंखों में नींद कहाँ। बार बार नमिता का खिला खिला चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता, अपनी बुझी सी सूरत भी दिखाई देती और अंजू का मन और बुझ जाता। क्या हो गई है जिंदगी उसकी, सारा दिन काम काम और बच्चों में सर खपाना, सुकून के दो पल भी नहीं मिलते उसको। एक काम निपटाती भी नहीं है कि दूसरे काम का ख्याल दस्तक देने लगता है। पूरे दिन बस भागम भाग भागम भाग। बच्चों को भी हरदम डांटती रहती है। 10 साल और 8 साल के दोनों बच्चे शरारतें भी तो कितना करती है, वो सब समझती है, यही तो उम्र है उनकी शरारतें करने की। पर अंजू करे भी तो क्या, वो थक जाती है। आज नमिता ने गोद में बिठाकर कितना प्यार किया दोनों को और कितना खुश दिख रहे थे दोनों बच्चे, बार बार जिक्र कर रहे थे, आंटी ने इतना प्यार किया। अंजू को याद नहीं पड़ता उसने बच्चों को गोद में बिठाकर कब पुचकारा था। कुछ दिनों बाद नमिता अवनीश से मिलने आई, इस बार हल्के गुलाबी रंग के सलवार कुर्ते में और भी नाजुक लग रही थी, पर व्यवहार बहुत ही सहज था। अवनीश भी मिलकर बहुत खुश हुए। देर तक बातें चलती रहीं, फिर बोली, कल मैं अंजू को अपने साथ ले जाऊंगी, दरअसल वरुण टूर पर गए हैं, थोड़ा वक्त अंजू मेरे साथ रहेगी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जब ये कहा तो अवनीश हंस पड़े और उन्होंने इजाजत दे दी और बोला कि बच्चों की भी चिंता न करें और दोनों सहेलियां आराम से समय बिताएं। अगले दिन ठीक 3 बजे नमिता गाड़ी लेकर आ गई।
1: अंजू अंजू आ जाओ, नीचे आ जाओ जल्दी से, मैं आ गई, देखो घड़ी मिलाओ जल्दी से, 3 बज गए हैं, तैयार होना बिल्कुल।
0: चलो नमिता मैं आ गई हूँ, चले। नमिता के घर के बाहर ही दरवाजे के दोनों तरफ 2 प्लांट सजे थे, एक एक पत्ता ऐसे चमक रहा था जैसे अभी अभी धुले हों। बाहर से ही अंदाजा हो गया था कि घर का अंदर का रख रखाव कैसा होगा। घर के अंदर सब कुछ व्यवस्थित, सफेद रंग का सोफा, बीच में कलात्मक सी कांच की मेज और मेज पर सजे एक बाउल में रंग बिरंगे पत्थर, हर कोने में गमले में सुंदर प्लांट और प्लांट के नीचे मूर्तियां, सुंदर साफ चमकती दीवारें और उन पर लगी पेंटिंग्स पर गिरती हल्की सी रोशनी। अंजू को लगा कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। अंजू को नमिता ने बताया कि जब वरुण पहली बार इस घर को दिखाने लेकर आए थे तो ये घर उसको भी महल जैसा लगा था।

0: अंजू को बैठने के लिए कहकर नमिता शेल्फ में से एक फोटो उठा लाई। ये देखो, ये तो बड़ी प्यारी फोटो है। कौन है ये?
1: ये मेरे दोनों बेटे पराग और परिमल।
0: अरे वाह, कितने प्यारे बच्चे, एक दूसरे के गले में बाहें डालकर देखो कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं ना। फोटो दिखाती नमिता इतने प्यार से तस्वीरों पर हाथ

0: घेर रही थी, मानो वो तस्वीरें नहीं बच्चों का मुंह हो। अंजू के भीतर कुछ जोर का दरक गया। बहुत मिस करती है नमिता अपने बच्चों को, उसकी आंखों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई अंजू की। भरी हुई आंखें थी। नमिता भी हाथों में तस्वीर थामे बच्चों के चेहरों को एकटक देखते हुए कहीं खो सी गई। उसे उबारने के लिए अंजू ने ही जोर से कहा, अरे पानी तो पिला।
1: देखो मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, आके बातें करने लगी और पानी पूछना भी तुम्हें भूल गई, वो भी तुम्हें मांगना पड़ा। मैं आज भी वैसी ही हूँ, है ना। अभी लेकर आई, अभी लेकर आई। याद है अंजू, तू संकोच कर रही थी घर कितना बिखरा हुआ है, और यहाँ देख घर बिखेरने वाला कोई नहीं। पता है जानबूझ कर कभी कभी चीजों को इधर उधर बिखेर देते हैं कि हाँ बाद में कभी समेट लूंगी इन्हें, क्या बताऊं। चलो छोड़ो।
0: पर एक बात बताओ,
1: हाँ
0: बच्चों को हॉस्टल क्यों भेज दिया?
1: बस यूं समझ लो, वरुण का मन था बच्चे इंडिपेंडेंट बने, बड़े कैंपस वाले स्कूल में पढ़े और जहाँ सब कुछ हो, घुड़सवारी हो, तैराकी हो, सब कुछ सीख सके, पहाड़ों के बीच खुली जगह में स्कूल हो।
0: अच्छा,
1: वैसे अंजू मैं शिकायत तो नहीं कर रही, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है, पर पता नहीं क्यों सोचती हूँ इस अकेलेपन का क्या करूँ।
0: नमिता
1: छोड़ो अंजू, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। चल बता क्या खाएगी तू? उस दिन तेरे यहाँ जमाने के बाद दाल चावल सब्जी खाई और साथ में दही, क्या स्वाद था।
0: लेकिन ये बता, तू करती क्या है सारे दिन? मेरा मतलब है कि समय कैसे काटती है भाई? अगर ऐसी बात है तो तू कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती नमिता? मेरा मतलब है कि मुझे तो बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी।
1: तूने नौकरी की बात की है इसलिए बता दे रही हूँ। कभी किसी जरूरतमंद का हक मारूं ऐसा कभी सोचा ही नहीं, और जहां तक परिवार की बात है, नौकरी की जरूरत कहाँ है, है ना। जैसा मिला है बस ठीक है, समझौता कर लिया है अपनी जिंदगी से, बस यूं समझ लो अंजू। और नौकरी इसलिए भी नहीं कर सकती, जब बच्चे छुट्टियों में घर आते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा समय उन्हीं के साथ बिता लूं, ये समय बस यहीं रुक जाए और उनके साथ ये समय प्यार से बीत जाए, बस यूं समझ लो उनकी छुट्टियों का इंतजार रहता है मुझे।
0: पर उसके अलावा क्या करती हो नमिता
1: खाली वक्त में?
0: हाँ।
1: खाली समय में अनाथालय चली जाती हूँ या फिर ओल्ड एज होम चली जाती हूँ, बस ऐसे ही बच्चों के बीच और बुजुर्गों के साथ समय बीत जाता है।
0: अच्छा
1: लगता है वहां जाकर, तन्हाई दूर हो जाती है, बस यूं समझ लो।
0: ओ नमिता,
1: सच कहूं तो अकेले घर काट खाने को दौड़ता है, कम से कम यहाँ कुछ आवाजें तो सुन लेती हूँ।
0: अच्छा।
1: चलो छोड़ो, हटाओ।
0: अरे
1: कहाँ मैं क्या लेके बैठ जाती हूँ, बातों ही बातों में कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ।
0: पर नमिता, कभी तो किसी से कुछ शेयर भी तो कर सकती है, कुछ दोस्त सहेलियां।
1: चल छोड़, हटा अंजू, कहाँ सोच में डूब गई। कहने को तो बहुत सारे दोस्त हैं, पर वो कहाँ समझेंगे मेरे दर्द को। तू तो बचपन की सहेली है ना,
0: हाँ।
1: जानती है ना मुझे, बस इसीलिए तुमसे कहने को जी चाह रहा था। अच्छा चल बता क्या बनाओ तेरे लिए। चल किचन में चलते हैं दोनों, कुछ अच्छा सा बनाते हैं, प्याज के पकौड़े।

0: नमिता को किचन में काम करते देखकर लग नहीं रहा था कि उसे आदत है काम करने की।
1: अरे याद है नमिता तुझे? हाँ, पहले हम कितना चटकारे लेकर पकोड़े खाते थे और जरा सी मिर्च पड़ जाए तो बिल्कुल जल जाता था मुंह, पर फिर भी खाना नहीं छोड़ते थे और फिर भागकर, याद है वो कितना रंगीन सा शरबत पीते थे।
2: सच में वो बातें तो यूं समझ लो बस यादों में रह गई। चलो छोड़ो।
1: और अब तो हम सोच भी नहीं सकते कि उस ठेले से हम कैसे खा सकते थे, और हमें कुछ होता भी तो नहीं था नमिता, याद है?
2: और आज के बच्चों को देखो, कितना ख्याल रखा जाए फिर भी आए दिन बीमार हो जाते हैं। चल मेरी हेल्प कर किचन में, आ दोनों सहेलियां गप्पे मारेंगे।
1: तुझे किचन में काम करके देखकर मुझे लग रहा है अब तुझे काम की आदत बिल्कुल भी नहीं रही। हाँ, ऐसा कर, तू यहाँ बैठ, मैं तलती हूँ पकोड़े और तू उधर चाय बना, अदरक इलायची मत भूलना।
2: हाँ, वो स्वादिष्ट वाली चाय।
1: सच बताऊं, एक अरसे बाद इतनी निश्चिंत होकर मैं चाय पी रही हूँ। घर पर नमिता कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है और सच बताऊं मेरी चाय ठंडी हो जाती है।
2: अरे अब हम अक्सर मिला करेंगे और तुझे हमेशा ऐसे ही गर्मा गर्म इलायची और अदरक वाली चाय पिलाऊंगी।
0: प्लेट से पकौड़े खत्म होते रहे पर बातों की गगरी छलकी जा रही थी, फिर भी वैसी ही भरी हुई थी। नमिता अपने बच्चों की बातें, उनकी शरारतें, उनकी कामयाबी के बारे में बता रही थी। उसे ये बताते हुए जैसे वो बच्चों के पास ही पहुंच गई हो। नमिता का चेहरा ममता के उजास से दीप्त हो रहा था। अचानक नमिता ने घड़ी पर नजर डाली और भूली,
2: अरे मैं भूल गई, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
1: बच्चे? बेटों को फोन करना है नमिता।
2: अरे नहीं, बताया था ना तुम्हें, वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम कर रही हूँ, अनाथालय जालती हूँ, बस वही वो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
1: अच्छा, आज संडे वाले दिन?
2: आज संडे है ना, रोज की तरह सड़कों पे यूं जाम नहीं होता, बस आराम से गाड़ी निकल जाती है।
1: अच्छा, ये ट्रैफिक सिग्नल पर सामान बेचने वाले बच्चों के बारे में कह रही हो क्या?
2: हाँ, बस उन्हीं के साथ थोड़ा टाइम बिता लेती हूँ।
1: इनकी जिंदगी भी बहुत अजीब होती होगी, है ना?
2: हाँ, अरे मुझे बहुत सारा सामान भी उनके लिए लेना है। एक मिनट रुको, बस मैं अभी आई।
0: डाइनिंग टेबल पर एक सुंदर से बास्केट में जो फल रखे थे, नमिता ने वो भी थैले में डाल दिए। कई सारी चीजें डालती रही वो थैले में। अंजू चुपचाप सब देखती रही। रास्ते में नमिता ने बताया वो उन बच्चों को कहानी सुनाती है, साफ सुथरे रहने का तरीका बताती है। अंजू सोच रही थी, जिन चीजों को सब लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो छोटी छोटी चीजें इन बच्चों को बतानी पड़ती है। आखिर सड़क पर पलने वाले ये बच्चे कौन सी जिंदगी जीते हैं? मेन रोड से एक संकरे से रास्ते पर गाड़ी उतार ली नमिता ने। पास में ही एक पेड़ था, उसके नीचे चबूतरा सा बना हुआ था। किसी समय में वो साफ सुथरा तो रहा होगा, पर इस समय जगह जगह से प्लास्टर उखड़ आए थे और बीच बीच में घास भी उगाई थी। नमिता के गाड़ी खड़ी करते ही पता नहीं कहां से बच्चों का एक हुजूम आ गया और घेर लिया नमिता को। दीदी कहाँ थी आप, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। 12 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चे थे, कपड़े बदरंग, शायद धूप में घूमने से अपना रंग खो चुके थे, कहीं कहीं से फटे पर साफ थे। घुटनों तक की फ्रॉक पहने लड़की या निकर पहने लड़के थे। छोटे बच्चों में से ज्यादा के बाल उलझे हुए थे। अंजू को उनके बिल्कुल पास जाने में हिचक सी हो रही थी, पर नमिता ने एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था और सारे बच्चे एक साथ नमिता का अटेंशन चाह रहे थे, उसको घेर कर बैठे हुए थे। नमिता के जादू के पिटारे से चीजें निकलनी शुरू हो गई थी। उसने सबसे पहले चॉकलेट बांटे, फिर कंघी निकालकर उलझे बाल संवारे, लड़कियों के बालों में क्लिप लगा दिए और छोटा सा शीशा उन्हें पकड़ा दिया, नेल कटर से नाखून काटे, कोई चोट दिखाने लगा तो उसकी चोट पर मलहम भी लगाया और उसने बोतल से रखे पानी से उनके हाथ भी धो दिए। इसके बाद नमिता ने उन्हें कहानियां सुनानी शुरू कर दी, कृष्ण की, बाल लीलाओं की कहानी, बच्चे हंसते और सवाल भी पूछते। सबसे छोटी बच्ची को नमिता ने अपने पास बैठाया था। कहानी सुनाने के दौरान उस लड़की ने नमिता की गोद में अपना सर रख दिया और बेख्याली में नमिता उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अंजू ने आंखें फेर ली। नमिता को इस तरह बच्चों पर प्यार लुटाते देख उसका मन भीग गया। पता चल रहा था कितना मिस करती है वो अपने बेटों को, और उन्हें प्यार करने को तरसता मन इन बच्चों पर बिन बादल बरसात की तरह स्नेह बरसा रहा था। अंजू को ये देखकर बहुत सुकून मिला। अंजू हमेशा सोचा करती थी, जब बच्चे कॉलेज में चले जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, उसके पास ढेर सारा वक्त होगा और वो क्या करेगी। अब समाधान उसके सामने था, वो भी ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया करेगी। समाज ने इतना कुछ दिया है उसे, वो कुछ अंश तो लौटा सके। उधर नमिता अंजू की उपस्थिति भूल चुकी थी। अंजू को भी एकदम से अपने बच्चे याद आ गए। सारा दिन उनकी शैतानियों पर खींचती रहती है, पढ़ने के लिए डांटती है और कभी कभार सामान जगह पर रखने के लिए और शरारतें करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा डांटती है। जाने कब से उन्हें यूं पास बिठाकर कभी दुलराया नहीं। उसका मन हुआ कैसे भी उड़कर अभी बच्चों के पास चली जाए और उन्हें खूब प्यार करे। ऐसा करो नमिता, तुम यही रुको इन बच्चों के साथ।
2: हाँ जो सच, अब तो मेरी बस यही यही छोटी सी प्यारी सी दुनिया है। यहाँ आकर इतनी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है मानो बस पूरी जिंदगी ही मिल गई हो मुझे। इन्हीं में अपनी खुशी तलाशती रहती हूँ।
0: अंजू ने बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेरा। इस बार उसे कोई झिझक नहीं हुई। अभी ऑटो में ही बैठी थी कि घर से फोन आ गया। अवनीश बोले, कहाँ हो तुम? एक संडे की ही शाम को तो साथ बिताने को मिलती है और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। जानती हो बच्चे कितनी कितनी बार पूछ रहे हैं, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। मुस्कुराहट सी

गई अंजू के चेहरे पर। कभी दूसरा दिन होता तो खींच जाती। मैं जो अकेले शाम बिताती हूँ, ऑफिस से लौटने का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। एक दिन शाम अकेले बच्चों के साथ बितानी पड़ी तो बुरा लग गया। फिर उसने महसूस किया वो सब उसे मिस कर रहे हैं। बोली, बस आ ही तो रही हूँ, पहुंच रही हूँ बच्चों के पास, तुम सबके पास।

ये थी कहानी पहचान तो थी पहचाना नहीं, जिसे लिखा था रश्मि रविजा ने। और अब रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। मणिपुर में 6 नगा नागरिकों की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर लगातार चलाए गए अभियान के बाद ये गिरफ्तारियां की गई। संदिग्धों से अभी पूछताछ की जा रही है, जिससे मामले से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ रही है और इसमें शामिल अन्य लोग

क्यों मेरी तरह रातों को रहता है परेशान, क्यों मेरी तरह रातों को रहता है परेशान। ऐ चांद बता किससे तेरी आंख लड़ी है, ऐ चांद बता किससे तेरी आंख लड़ी है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान, आवाज है किशोर कुमार की।

रात उतर आई थी धीरे धीरे, मानो आकाश ने अपने प्राचीन इतिहास का एक और पृष्ठ खोल दिया हो। चांद, चांद आज किसी विजेता की भांति नहीं, एक विनम्र साधक की तरह नभ के मध्य विराजमान था। उसके उजले मुख पर युगों की यात्राओं का धैर्य था और अनगिन ऋतुओं की स्मृति। मैंने अपने मन से पूछा, तुझे इस चांद में ऐसा क्या दिखाई देता है? मन ने कहा, मुझे इसका प्रकाश नहीं, इसका संयम आकर्षित करता है। यह कभी सूर्य बनने का आग्रह नहीं करता, फिर भी असंख्य पथों का सहचर बन जाता है। रात मुस्कुराई। उसने चांद के चारों ओर नील विस्तार का ऐसा मंडल रचा जिसमें किसी को छोटा सिद्ध करने की कोई चेष्टा नहीं थी। वहां केवल संतुलन था और उसी संतुलन में सृष्टि का सौंदर्य निहित था। मन फिर भटकने लगा, कभी बीते वर्षों की तरह और कभी आने वाले दिनों की तरह। चांद से देखता रहा जैसे कोई अनुभवी ऋषि अधीर शिष्य की गति समझ रहा हो। तभी एक शीतल किरण धरती तक उतरी। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल इतना बताया जिसे स्वयं से मिलने का साहस मिल जाए। उसे संसार से शिकायत कम रह जाती है। मैंने देखा, रात किसी रिक्तता का नाम नहीं थी, वह तो विचारों की विशाल नदी थी जिसमें मन अपनी असंख्य आकृतियां देखता, टूटता, संवरता और अंततः अपने ही तट पर लौट जाता। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है तीन देवियां।

रात्रि ने जब दिशाओं के द्वार बंद किए, तब आकाश के मध्य एक उजला वृत्त धीरे धीरे खिल उठा। चांद किसी राज सिंहासन पर नहीं था, वह तो मानो अनंत की गोद में बैठा पृथ्वी का हाल पूछने आया अतिथि था। मेरा मन उसकी ओर बार बार देखता, फिर स्वयं में लौट आता। उसे लगा दूरी केवल कदमों की नहीं होती, कभी कभी विचार भी मनुष्य को अपने ही भीतर बहुत दूर तक ले जाते हैं। चांद ने कुछ कहा नहीं, फिर भी उसकी उजली आभा मन के बिखरे हुए कोनों तक पहुंच गई। तभी अनुभव हुआ, जिसे हम खोज कहते हैं वह बाहर से अधिक भीतर की यात्रा है। रात्रि समाप्त हुई, किंतु मन में एक प्रश्न जीवित रहा। यदि आकाश इतना

विस्तृत होकर अपने सभी रहस्यों को संजो सकता है, तो मनुष्य के हृदय क्षमा और करुणा के लिए क्यों संकीर्ण हो जाता है? और इसी प्रश्न के साथ एक नई सुबह जन्मी। अगला गीत, फिल्म का नाम है गाइड, आवाज है लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम, आवाज है किशोर कुमार और उषा खन्ना की।

एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पे मेरा आशियाना, मुसाफिर हूं मैं यारों, न घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, मुझे चलते जाना है। कितनी सुंदर पंक्ति है और कितनी गहरी बात है। बस इस गहरी बात में छुपे हुए छोटे से संदेश को हम कभी नहीं समझ पाते और हम बड़े प्रश्नों में, बड़े सवालों के हल ढूंढने में रह जाते हैं। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपा श्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी और उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्ते को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। अब तक इस यात्रा के दौरान 370,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। आवाज है कुमार शानू और अलका याग्निक की।

गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। अगला गीत, फिल्म का नाम है फिर कब मिलोगी, आवाज है मुकेश और लता की।

ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा गुजर।

आज दिन ने कई बार मुझसे अपने होने का हिसाब मांगा। घड़ी ने भी अपनी सुइयों से मेरी उलझनों को नापा, पर मैंने हर प्रश्न को धीरे से किनारे रख दिया, क्योंकि आज मैंने एक ही काम किया, सिर्फ तुम्हें याद किया। सिर्फ तुम्हें याद किया, ना कोई अधूरी सूची थी, ना कोई लक्ष्य का दबाव, ना ही दुनिया के तर्कों का शोर। बस तुम्हारी याद मेरे भीतर ऐसे उतरी जैसे किसी पुराने गीत की धुन बिना आवाज के भी मन में गूंजती रहती है। मैंने रसोई में उबलती चाय के साथ तुम्हारा नाम मिलाया और ये देखा कैसे एक साधारण स्वाद अचानक गहराई में बदल जाता है। मैंने किताब खोली पर अक्षरों के बीच तुम्हारा ही चेहरा उभर आया, जैसे हर शब्द तुम तक पहुंचने का कोई बहाना।

ढूंढ रहा हो। आंगन में आई धूप आज कुछ अलग थी, उसमें एक परिचित स्पर्श था, जैसे तुमने दूर रहकर भी मेरे दिन को थाम लिया हो। तुमने दूर रहकर भी मेरे दिन को थाम लिया हो। अगला गीत हेमलता की आवाज में, फिल्म का नाम है आँखियों के झरोखों से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है लेकिन, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि फिर मिलने के वादे के साथ आपसे विदा लिया जाए। पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद भारती होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास को और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं अभय जोधपुरकर और विकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कड़ू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्रात रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी है। इन 6 सांसदों के लिए विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाए गए 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे DigiLocker परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई। उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की चेतावनी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा एक बार फिर से शुरू की जाएगी। इस वर्ष यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और प्यार भरा मेरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

अभी आपने गीत सुना फिल्म आप आए बाहर आई से। दिलबर का साथ जिंदगी की सबसे खूबसूरत सौगात है। सच्चा प्यार हर धड़कन को मुस्कुराने की वजह दे जाता है।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम चल रहा है हम राही। जब प्रेम सच्चा होता है तो प्यार और विश्वास मिलकर हर कहानी को यादगार बना देते हैं।

प्यार में डूबा दिल हर पल अपने प्यार की खुशियों की दुआ करता है और सच्चा प्यार दिल को मासूम और जीवन को सुहाना बना देता है।

दिल की दीवानगी तभी सुंदर लगती है जब उसमें सम्मान और अपनापन हो। प्यार का एहसास हर पल को खास बना देता है।

रिश्ते तब और गहरे हो जाते हैं जब दोनों अपने दिल की बात प्यार से कहें। प्रेम का सबसे सुंदर संगीत आपसी समझ और विश्वास है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइए। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और

0: चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
1: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल्कि 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हैं। यह दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने ओएमआर शीट की जांच के संबंध में छात्रों और अभिभावकों के लिए एक सख्त परामर्श जारी किया है। एजेंसी ने कहा कि हाल ही में समीक्षा के लिए जमा की गई कई ओएमआर शीट नकली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनाई पाई गई, जिसके कारण सभी शिकायतों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। एनटीए ने कहा कि वह हर शिकायत की गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि उसने चेतावनी दी कि नकली या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर शिकायत करने वालों को गंभीर कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि सरकार का इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम E20 भारत की सबसे बड़ी जननीतिक सफलताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ी है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। E20 से विदेश से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम हुई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की चेतावनी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। इस समय ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने फ्रांस पर 4-3 से बढ़त बना रखी है। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन आज रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। आज फाइनल में सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म अनुराग से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है अरुणिमा और कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म किसी से ना कहना से आशा भोसले की आवाज़ में, गीतकार योगेश, संगीतकार पप्पी लहरी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त,

का तारा चमका, सबने बढ़कर उसका साथ दिया। गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

अभी आपने गीत सुना फिल्म सच्चाई से मोहम्मद रफी और मन्ना दे की आवाज में संगीतकार शंकर जयकिशन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है अरुणिमा।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म बसेरा से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म सदमा से सुरेश वाडकर की आवाज में गीतकार गुलजार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म लावा से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरटी बर्मन।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून सत्र कल से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी AI से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर

0: कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एनटीए के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा परिणाम को चुनौती देने के लिए फर्जी दस्तावेज या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट का इस्तेमाल करना गलत है, ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपने नतीजे डिजीलॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार सीबीएसई ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी और उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस साल 15 मई से 21 मई तक हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय डीआरआई ने देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके तहत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि सरकार का इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम E20 भारत की सबसे बड़ी जननैतिक सफलताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ी है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। E20 से विदेशों से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम हुई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महबश फातिमा। The government has convened an all-party meeting today ahead of the coming monsoon session of the parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislation are scheduled to be taken up for discussion and passage. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10th Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal. In line with the recommendations of the National Education Policy, CBSE had introduced 2 board examinations for Class 10th from this year. The main board examination was conducted from 17th February to 11th March, followed by the second board examination from 15th May to 21st May this year. CBSE said that overall pass

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। फूलों की तरह मुस्कुराकर और खुशियां बांटकर जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।